0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की। सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। मुख्य मुद्दों में नए महासचिव का चुनाव, जलवायु बदलाव और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम शामिल हैं। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात में 7% की गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार धूम्रपान करने वाली महिलाओं में गर्भधारण से जुड़ी परेशानी का खतरा 40% से अधिक हो सकता है। 7 युवा मर्शन अक्टूबर महीने में सिंगापुर में होने वाली स्टेम रेसिंग विश्व प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पहली बार है जब अफ्रीका इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। कृषि उद्योग मंत्रालय बीज और फलदार पौधे तैयार करने के लिए छोटे किसानों को बढ़ावा दे रहा है। पहली योजना से 27 किसान जुड़ेंगे, इसके लिए 8 मिलियन रुपए रखे गए हैं। विदेश स्तर पर यमन में लड़ाई के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के शरणार्थी शिविर में पना ली है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। अब बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। मौसम की जानकारी। पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर आज सुबह के दौरान रह रहकर बरसात होगी। शाम को देश के पश्चिम में बरसात जारी रहेगी, जगहों में बादल घिर रहेंगे। रात के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम खराब ही रहेगा और बादल घिर रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय के बाद सूर्यास्त।
1: यू आर लिसनिंग RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।
2: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो।

अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारहा हमद है उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की जिसने सारी कायनात को लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया, और हज़ारहा दुरूद व सलाम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बायस तख़लीक़े कायनात है। सामिने कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व।

0: का दुहु रबीउल थानी रबीउल शरीफ का महीना अपने पूरे आबोताब से जलवागर है। ये महीना ख़ास तौर पर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिनानी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ताहियात हम सबको औलिया अल्लाह से नस्बत उल्फत मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन दौरान प्रोग्राम जो बयान आपको हम गोश गुजार कराएंगे उसका उनवान है शान औलिया। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक की चंद आयत मुबारक की तलावत से करते हैं। बागौर अदब समात करके अपने कल्ब को ताजगी बख्शे।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بحق إن كنت قلته فقد علمت وإذ قال

بحق إن كنت قلته فقد علمته.

0: आपकी ज़िंदगी की स्टडी की जाए और फिर आपकी ज़िंदगी को फॉलो किया जाए तो ये बातें हमें मिल सकती हैं। आपकी हयात में मुसलसल मुजाहदा है, स्ट्रगल है, बहादुरी और दिलेरी है, सखावत है और बेपनाह सखावत है। आपने दुआ की थी, मौला मुझे अपने ख़जानों से इतना दे कि मैं वो तेरी राह में क़ुरबान करता रहूँ, खर्च करता रहूँ, ख़त्म ना हो। आपकी ये दुआ कबूल है। आज भी मौदा शरीफ में जो आपका लंगर खाना है वो चल रहा है और वो सदियों से चल रहा है। कभी वहाँ कोई अनाज या गल्ला या खाना ख़त्म नहीं होता और हज़ारों की तादाद में लोग उससे खाते हैं। फिर आपकी महफिल 11वीं शरीफ तो पूरी दुनिया में होती है। हर महीने सिर्फ उस महफिल से हज़ारों लोगों को, बल्कि मिलियंस बिलियंस कह लें, उन्हें नसीब होता है खाना। तो ये वो दरिया सखावत है आपका, जो आपके विसाल के बाद भी जारी है। वो दुआ की कबूलियत जो आपने दुआ अल्लाह से मांगी थी। हदीस पाक ये है, अन अनस रضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية ودلع الدين وغلبة الرجال। अनस रदी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ए अल्लाह यकीनन मैं आपसे आजजी से, बेबसी से, सुस्ती से, मुजदिल होने से, बुढ़ापे से, बुखल से पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह मैं अजाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह का तालिब हूँ, साहिल हूँ। और एक रिवायत में ये भी है कि कर्ज की शिद्दत से और लोगों के गलबा से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। हमारी ये दुआ अपने लिए और पूरी उम्मा के लिए है, अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।
1: सामीन, रबीउल थानी के मुतालिक अभी आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसा कादरी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया की ज़बानी सिलसिलावार बयान समात कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन थुम्मा आमीन।

0: अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना यकीनन अल्लाह तबारक व ताला को महबूब है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने से डरने और सादिकीन के साथ होने का हुक्म फरमाया है, ताकि लोग उसकी सोहबत में रहकर खुद भी सच्चे रास्ते पर गामजन रहें। अल्लाह ताला के नेक बंदों में से एक बंदा सरकार बगदाद हज़रत गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। सामीन, जैसे कि आगाज़ महफिल में हमने आपको बताया था कि आज शान औलिया मौजू पर बयान हम आपको गोश गुजार कराएंगे, आइए समात कीजिए ये इरफानी और फिक्र अंगेज़ बयान। मुकर्रर हैं सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब, बाग़र अदब समात कीजिए।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد صدق الله العظيم। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दीन की तरवीज व इशाअत के लिए किसी बंदे का इंतखाब और दोस्ती के लिए किसी बंदे का इंतखाब, ये रब की मर्जी की बात है, रब के फजल की बात है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इसीलिए इरशाद फरमाया, अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युरीद, जिसका मफहूम है अल्लाह जिसे चाहता है अपनी बारगाह का मुकर्रब बना देता है।

और जिसे चाहता है उसे अपनी बारगाह का रास्ता दिखा देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान को रास्ते पर चलते चलते मंजिल तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है, और चलते चलते कभी ऐसा भी होता है कि वो मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाता, और कभी ऐसा होता है कि वो चल नहीं रहा, बिस्तर पर सो रहा है। लेकिन रब की निगाहें रहमत उस पर पड़ जाती है, और जब वो बिस्तर से उठता है तो परवरदिगार का मुकर्रब बंदा बन चुका होता है। ये रब की बारगाह का करम और रब की बारगाह से इनायत जिस किसी को हो जाए। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह में क्यों जाते हो, अल्लाह के वली के आस्थानों पर क्यों हाजिर होते हो, और अल्लाह के वलियों से मिलने जाने की क्या जरूरत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त की बारगाह में जाना और उनसे मुलाकात के जज्बे की नीयत से जाना, यह बहुत बड़ी इबादत है। हदीस मुबारका में मौजूद है जिसका मफहूम है कि एक बंदा घर से चला एक अल्लाह के वली से मिलने के लिए, रब्बे कदीर जल्ला जलालहू ने रास्ते में एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया। फरिश्ते, मेरे इस बंदे से सवाल पूछो, ये मेरे दोस्त से मिलने क्यों जा रहा है। फरिश्ते ने उस बंदे को रोका, दरियाफ्त फरमाया, तू फला बंदे से मिलने क्यों जा रहा है। वो अर्ज करता है, मैं सिर्फ इसलिए मिलने जा रहा हूं कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। फरिश्ता सवाल पूछता है, क्या तुझे कोई माली गर्ज़ो गायत है। वो जाने वाला कहता है, नहीं। क्या तेरी कोई रिश्तेदारी है उसके साथ। वो बंदा कहता है, नहीं। क्या तेरी कोई हाजत है उसके पास। वो कहता है, नहीं। वो फरिश्ता रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ करीम, ये बंदा जो जा रहा है इसकी कोई दुनियावी गर्ज़ो गायत उस तेरे बंदे से मिलने के लिए नहीं है। रब फरमाएगा, फरिश्ते पूछो तो फिर जा क्यों रहा है। अल्लाह अकबर। फरिश्ता जब उससे सवाल करता है तो वो जवाब में सिर्फ इतना अर्ज करता है, बस इसलिए मिलने जा रहा हूं कि ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह इससे मोहब्बत फरमाता है, इसलिए मैं इससे मिलने जा रहा हूं। रब्बे कदीर फरिश्ते से हुक्म देता है, फरिश्ते मेरे इस बंदे से कह दे कि मेरे दोस्त से मिलने जाने की गर्ज से मैं इसे भी अपना दोस्त बना रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए। अभी वो बंदा अल्लाह के वली के करीब पहुंचा भी नहीं, उनकी बारगाह में फैज भी हासिल करने नहीं पहुंचा, रास्ते ही में है, और परवरदिगार ने अपने दोस्त के करीब जाने के सबब से उसे अपना मकबूल बना लिया। आप अंदाजा लगाइए, इससे अल्लाह के वली की बारगाह में जाना या अल्लाह के वली के आस्थानों पर जाना या अल्लाह के वली से मुलाकात के लिए जाना, यह कितना बड़ा अज्र है और कितनी बड़ी बरकत की बात है। लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के रोके से क्या हो। जमाने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना रोका जा रहा है इतने जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। और यहां एक बात और बता दूं, अल्लाह के वली से दोस्ती का फायदा। फरमाया गया, अगर कोई शख्स गुनहगार है, सियाहकार है, खताकार है, और वो इस दुनिया से कुछ कर गया, अब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अचानक कोई अल्लाह के वली आ गए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, जिसकी नमाज जनाजा अल्लाह के वली पढ़ा देंगे, अल्लाह ताला उस गुनहगार की बख्शिश फरमा देगा। और यह फरमाया गया, अगर इस दुनिया से कुछ करने वाले अल्लाह के नेक बंदे और उस अल्लाह के वली की नमाज जनाजा के अंदर कोई गुनहगार शरीक हो गया तो अल्लाह अपने वली के सदके में गुनहगार की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह के वली, आप सोचो, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। खौफ और गम के सिलसिले में आप समझे, खौफ का ताल्लुक फ्यूचर से है, मुस्तकबिल से है, और गम का ताल्लुक माजी से है, पास्ट से। आदमी माजी की कोई बात सोचता है तो उसे गम होता है, माजी की कोई बात सोचता है तो उसे अफसोस होता है। मिसाल के तौर पर इंसान को गम कब होता है, जब उसका माल चोरी हो गया,
अब माल चोरी हो गया वो गम का शिकार हो गया, अब माल चोरी हो जाने का खौफ ये मुस्तकबिल की बात है। आपके पास माल है, पैसा आपके पास पड़ा है, अब आपके दिल में यह खौफ तो पैदा हो सकता है कि कोई आकर चोरी ना कर ले, लेकिन अगर कोई चोरी कर गया तो अब आपको खौफ नहीं होगा बल्कि माल के चले जाने का क्या होगा, गम। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से और गम का ताल्लुक माजी से। अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उन्हें कभी दुनिया की किसी चीज का गम नहीं होता। और क्यों गम नहीं होता, आप तारीख उठा करके देखें कि अल्लाह के वली दुनिया की मता को, दुनिया की सारी चीजों को और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह की राह में लग जाते हैं तो ये दुनिया की सारी चीजें जो अपनी तन से, अपनी जिंदगी से दुनिया की मोहब्बत को जो निकाल देते हैं, मालो सर की जो मोहब्बत को निकाल देते हैं, तो इन सारी चीजों के चले जाने का उन्हें कोई गम नहीं होता। और मुस्तकबिल के सिलसिले में, मुस्तकबिल के सिलसिले में यह है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, उसका कोई खौफ उनको नहीं होता। हमारा और आपका हाल यह है कि कल के मुतालिक सोचते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं, मुस्तकबिल के मुतालिक सोचते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं, फसाद के मुतालिक सोचते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं, माल के चले जाने के मुतालिक सोचते हैं तो खौफजदा होते हैं, प्याज का दाम बढ़ रहा है इंसान खौफजदा होता नजर आ रहा है, और तंगी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान खौफजदा होता है। लेकिन अल्लाह के वली की शान यह होती है कि ना उन्हें मुस्तकबिल का कोई खौफ है ना माजी का कोई गम है, इसलिए कि उन्होंने इन चीजों से दिल नहीं लगाया, उन्होंने दिल लगाया है तो अहकमुल हाकिमीन से दिल लगाया। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम से मौजजात का सुदूर होता, वो इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए कभी मौजजे दिखाया करते, और परवरदिगार ने अपने दोस्तों को यह ताकत अता फरमाई कि वो इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए करामतें दिखाते हैं। तो औलिया से करामतों का जहूर होता है। किसी एक अल्लाह के वली से किसी ने पूछा कि ये ताज्जुब की बात है कि आप जो चाहते हैं वैसा हो जाता है, आप लब हिलाते हैं काम बन जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है। अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाते हैं हमने लब जब भी हिलाए तो दीन की खातिर हिलाए, अल्लाह की रजा की खातिर हिलाए। और इसी के साथ ये भी समझ लो कि हमको तो पूरा यकीन, पूछा गया कि आपको इतना यकीन कैसे होता है कि जो कुछ आप कहेंगे बात सही होगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह अकबर, फरमाते वजह यह है कि जिस रब की जिंदगी भर इबादत की हो, जिस रब की जिंदगी भर बातें मानी हो, तो हमको इतना तो यकीन है कि जिसकी जिंदगी भर बात माने हैं वो हमारी बात कैसे ठुकराएगा। अरे दोस्त कभी दोस्त की बातों को टालता है, अरे हम तो इसलिए उसको पुकारते हैं कि उसी के दीन को आम करना है। आज देखें मामूली तकलीफ आई लोग दाढ़ी निकाल देते हैं, मामूली तकलीफ आई लोग नमाजें छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, एक अल्लाह के वली नमाज के लिए तशरीफ ले गए, रात की तारीकी में दरियाए दजला के किनारे अपने मुरीद के साथ इबादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, जैसे ही वुजू करते हैं आवाज आती है तू जिंदगी भर सजदे कर, तेरा एक सज्दा में कबूल नहीं किया। मुरीद भी सुन लेता है, मुरीद भी सुन लेता है, अर्ज करता है हुजूर अब नमाज पढ़ करके क्या फायदा जब सजदे ही कबूल नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, क्या जवाब दिया उन्होंने। इरशाद फरमाते हैं बेटे खुदा के दर के अलावा कोई और दर हो जहां सर झुकाया जा सकता हो तो तू मुझे बता तो मैं उसके दर पर सज्दा करूं। जब उसी की बारगाह में सर झुकाना है तो हमारा काम सर झुकाना है, वो क्या कह रहा है उसकी तरफ हमें तवज्जो थोड़ी देना है, हम तो बंदे हैं, आका क्या कह रहा है नहीं देखना, हमें तो गुलामी करते चला जाना है। अल्लाह को ये अदा पसंद आई और रब ने फरमाया सुन तेरे जितने सजदे पहले के थे और जितने सजदे बाद के होंगे मैंने जा सबको कबूल कर लिया। याद रखें, इन चीजों का ख्याल रखें। लोग मामूली तकलीफों के अंदर खुदा को छोड़ देते, भूल जाते हैं और अनाप शनाप जबान से जो जुमले निकलने शुरू हो जाते, नहीं इसके अलावा कोई देने वाला है, इसकी जमीन के अलावा किसी और जमीन पर आप चल सकते हो, उसके आसमान के अलावा कोई और साहिबान है, जब नहीं, और जीना भी इसी जमीन पर है, खाना भी उसी का रिस्क है और पीना उसी का अता करदा पानी है, जिंदगी उसी की अता करदा है, फिर उसको छोड़कर हम जाए तो कहां जाए। तो अब वो जिस हाल में रखे,

0: इसीलिए अल्लाह ने हमको नौकर नहीं बनाया, बंदा बनाया है। फलसफा हमने नहीं समझा, इसको समझने की जरूरत है। हम क्या नौकर समझते, बस पांच वक्त की नमाज पढ़ लिए ड्यूटी फिनिश, तो ऐसा नहीं है। हम अल्लाह के नौकर नहीं है भाई। नौकर के लिए तो ड्यूटी का टाइम फिक्स होता है, लेकिन गुलाम के लिए कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता। गुलाम तो सो रहा है तब भी गुलाम की हैसियत से, जाग रहा है तो भी गुलाम की हैसियत से, खा रहा है तब भी गुलाम की हैसियत से, और पी रहा है तब भी गुलाम की हैसियत से। बल्कि यह कहा जाए तो बेजा ना होगा, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, सारी मर्जी आका ही की हुआ करती है। आका खिलाए तो खा ले, आका पिलाए तो पी ले, आका सुलाए तो सो जाए, आका चलाए तो चले। बंदे की गुलाम की मर्जी कुछ नहीं होती। और यह बात अगर समझ में आ गई तो मैं समझता हूं कि इंसान की सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। हमको बंदा बनकर जीना है। और औलिया किराम का हाल यही होता, वो तो बंदा बनकर जीते थे और हम नौकर बनकर के जी रहे हैं। जिस दिन यह बात जहन में आ गई कि हम तो बंदे हैं और बंदे का काम अपनी मर्जी का नहीं होता, अपने मौला की मर्जी का होता है। इसलिए ऐ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने सराहत के साथ फरमाया, मन आदली वलीयन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब। रब्बे कदीर का इरशाद गिरामी है, हदीस कुदसी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी रखे मैं उसको ऐलान जंग देता हूं। अल्लाह अगर किसी के लिए ऐलान जंग फरमाए तो उसकी क्या हैसियत होगी, वो रब के मुकाबले में कहां टिक सकेगा। अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो, अल्लाह के नबियों से दोस्ती करो, अल्लाह के मुकर्रब बंदों से दोस्ती करो, जिनसे रब ने दोस्ती का हुक्म दिया उनसे दोस्ती करो। अरे आपको मालूम कयामत के दिन अल्लाह अज्ज वजल इरशाद फरमाएगा। आज एक हदीस शरीफ में लिख रहा था और जब यह हदीस शरीफ पर पहुंचा जिसमें रब की यह निदा, अल्लाह अकबर, रब कदीर इरशाद फरमाएगा, कहां गए वो बंदे जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और फिर इरशाद फरमाएगा, बुलाओ उनको, आज के दिन मेरे साए में उन्हीं खुश नसीबों को जगह अदा की जाएगी। कि सरकार ने फरमाया, मन अहब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फकद इस्तकमल ईमान। जो अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती करे, अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी करे, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दे, अल्लाह के लिए किसी को मना करे, बस उसका ईमान मुकम्मल हो गया।
1: शान औलिया रहमतुल्लाह अलैहि। सामीन, ये बयान अभी आप समाप्त कर रहे थे सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी की ज़बानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा।

हज़रत सैदना शेख अब्दुल्क़ादिर जिनानी क़ुतब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बंदा है और अल्लाह ही की मिल्कियत में है। उसकी किसी चीज़ पर अपना हक जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका अदब करना चाहिए, क्योंकि उसके तमाम काम सही व दुरुस्त होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कामों को मुकद्दम समझना चाहिए।

हज़रत गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, बंदे का शजर ईमानी उसकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा करता है। शजर ईमानी की परवरिश ज़रूरी है, हमेशा उसकी आबियारी करते रहो, उसे नेक आमाल की खाद देते रहो ताकि उसके फल फूलें और मेवे बरकरार रहें। अगर ये मेवे और फल गिर जाएंगे तो शजर ईमानी वीरान हो जाएगा और अहले सरवत के ईमान का दरख्त हिफाजत के बग़ैर कमज़ोर है। सामीन, सबाल खैर प्रोग्राम का मुकर्रा वक्त यहाँ पर अख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करते हैं कि इसे आपने पसंद फरमाया। अगली मुलाकात तक अनवर को रुख्सत की इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।

निश्चलानंद मंदार मकरंद नी नामं मधुर नी रूपं मधुर नी सरस श्रृंगार केळि मधुराति मधुरं स्वामी।

पहला समझी लेवानू के ए पण कईक महत्वनो ने इम्पोर्टेंट हसे कारण के नानी अमस्ती पेन बे रुपियानी पेन पण एक मोटो चेक लखवानू काम करे छे। तो चालो एनी साथे आपणे गुजराती गीतोनी मजा मारता आगळ वधीने सुंदर मजाना आगलू गीत लई लिया अरविंद बारोटना अवाजमां लेवामां आवेलू एल्बमनुं नाम छे कांटो वाग्यो काळजी।

शक्ति। मंगलवार 22 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, सुमिता की ओर से सादर वंदन स्वीकार करें। आप सबका स्वागत हम करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और नया दिन अपने आप में एक नए अवसर के समान होता है, एक नए जीवन के समान होता है। तो ईश्वर के चरणों में एक कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद समर्पित करते हुए आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। मन में यही कामना लिए कि ईश्वर सदैव हमारा मार्गदर्शन करे और सदैव हमारा साथ दे।

चले विघ्नों के हर्ता श्री गणेश के नाम से कार्यक्रम का आरंभ हमने किया। श्रोताओं, अभी मानो हम एक ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पर चारों ओर लोग भक्ति कर रहे हैं, लोग चारों ओर ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। और ईश्वरीय शक्ति जो होती है वो हम मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि कभी कभार हमारे आसपास हमारी जिम्मेदारियों के चलते, हमारे जीवन के चलते काफ़ी नकारात्मक भाव हमें घेर लेते हैं। ऐसे में ये ईश्वरीय शक्ति ही है जो हमें इन नकारात्मक भावों से दूर रखती है और हमारे जीवन को सकारात्मकता प्रदान करती है। कहते हैं ना, इसलिए जब भी समय मिले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जब भी समय मिले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, समय मिले तो धार्मिक स्थलों पर हमें जाना चाहिए, ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है, और जब मन में सकारात्मकता होती है तो हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है, हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारे कर्म अपने आप सकारात्मक होते हैं, और अच्छे कर्मों का फल तो सदा अच्छा ही होता है।

कहते हैं ईश्वर की जय जयकार हमें तब नहीं करना चाहिए जब हमें जीवन में कुछ प्राप्त हो रहा हो या जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का नाम तभी भी लेना चाहिए जब हम कठिन परिस्थितियों से व्यतीत हो रहे हो। ऐसा होता है कि हम अपनी आप को ईश्वर से तब जोड़ते हैं जब गहन दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं। कभी कभार हम सुख में उस परमपिता परमेश्वर को पूरी तरह ही भूल जाते हैं।

कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि हमारे हर श्वास पर ईश्वर का नाम होना चाहिए, क्योंकि यही तो है हमारे जीवनदाता। इन्हीं की वजह से तो ये सुंदर जीवन हमें मिला है, और ईश्वर की कृपा हमें नहीं मिलेगी तो जीवन कैसे चलेगा हमारा।

श्रद्धा का पाठ पढ़ाते हैं, अपने स्वामी अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं, और किस तरह से जो है शांत रहकर भी जो है हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं, जीवन में शांत होना, जीवन में स्थिरता बनाए रखना कितना आवश्यक होता है, हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं। तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, और इस समय भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का श्रोताओं। और भक्ति में शक्ति जो कार्यक्रम है ये चलता है हर रोज़ रेडियो मनोरंजन पर दिन के पौने 11 बजे से दिन के 11:30 बजे के बीच।

0: शक्ति।
1: जी हाँ, हर कार्य में सफलता मिलती है, हर कार्य संपन्न होता है, हर एक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है जो ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है, जो ईश्वर से जुड़ जाता है, जो ईश्वर से अपना नाता जोड़ लेता है। और हम भी यहाँ पर ईश्वर से जुड़ रहे हैं भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के अंतर्गत। मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस भक्ति गीत को हम जोड़ रहे हैं।

और श्रोताओ, इसी के साथ भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आप सभी ने इतने प्रेम से आज भी हमारा साथ दिया, धन्यवाद। 11:30 बजे आप चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे, जिनकी प्रस्तुति में हमारी आपकी भेंट दोबारा होगी 12 बजे। सुहाना सफ़र इस कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर।

sing so they

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार
4: नमस्कार 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। शगुस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शगुसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफल और एड मिलीबैंड के बीच होने वाली बैठक का भी स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। नए महासचिव का चुनाव जलवायु परिवर्तन और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। यातायात बल्कि आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है। गवातुमंगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच फ्रांस तक पहुंच गई है। फिसी ने वहां एक व्यक्ति का फोन जांचा। रिकॉर्डिंग की सच्चाई और इसमें सुनाई देने वाली आवाजों को पहचानने की पहचान अभी साबित नहीं हुई है। जापान में तूफान के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लापता बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ आई। करीब 45,000 घरों की बिजली गुल है और कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तूफान अब जापान के पूर्वी तट से दूर जा रहा है लेकिन भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। क्लेफोन नंबर वन फिनिक्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद रफीक लुटन इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दोपहर बाद दो बजे उनके बेटे मोहम्मद सलमान लुटन के मकान फिनिक्स से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए फिनिक्स की रजाक मोहम्मद मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
5: Your news on MBC Play and MBC.MU.
6: You're listening to RM3 Radio Man.

ट्यूसडे 22 सितंबर रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और यहाँ पर एक बार फिर हम आप सबकी के साथ जुड़ चुके हैं सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम को लेकर। और अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हम आपके साथ साथ रहने वाले हैं। सो कैसे हैं आप सभी? और ये जो ट्यूसडे का दिन है, आई होप अच्छे से बीत रहा होगा। दोपहर का वक्त है, ऐसे में बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं, खूबसूरत गानों की फरमाइश करते हैं, डेडिकेशन करते हैं। तो बस तैयार हो जाइए इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन 4028070। इवन यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन 5250600 पर। थोड़ी देर में विल ट्राई कि हम जो है हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं आज के इस सुहाना सफ़र की, वक्त फिल्म के इस गाने के साथ।

0: सफर।
1: चलिए, जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू होता है वैसे ही आपकी फरमाइशों का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। सो ऑन रेडियो मनोरंजन यू आर लिसनिंग टू सुहाना सफर। हर ट्यूसडेज की तरह मैं सुमी आप सभी का साथ दे रही हूँ। लंच टाइम है, लंच करते करते खाना खाते खाते हमारा साथ दे रहे हैं। आप सभी को बोना पेची शुभ आहार हम कहेंगे। और चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते सुमी जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। वीना जी नोवेल फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही है कि अगर हो सके तो कर्तव्य फिल्म का गाना हो जाए। बिल्कुल ज़रूर आपके लिए इस गाने को हम चलाएँगे, आपकी ओर से, खास कर आपके हबी देव के लिए और जितने भी सुनने वाले इस समय हमारा साथ दे रहे हैं ये गाना उनके लिए भी।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए गानों के सिलेक्शन को आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी फरमाइश है कि क्या कहे। गुड आफ्टरनून, यहाँ पर वैंकूवर कनाडा से किरण पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि दिल भर जानी चली हवा मस्तानी, ये जो गाना यहाँ चला तो कहा कि ये हवा कनाडा तक पहुँच गई। बहुत बहुत शुक्रिया किरण पुरी जी। देन वी हैव जी जी लाल, नरेंद्र कुमार, निंदी कलाराम कारीगर वैंकूवर कनाडा से हमेशा हमारे सभी प्रोग्रामों में जुड़ते हैं। व्हाट्सएप पर तो आपका मैसेज हमें मिलता ही है, साथ ही जब हम टिकटॉक लाइव करते हैं वहाँ पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए गानों को एंजॉय कर रहे हैं अभी के लिए, ये अगला तराना आपके नाम हम

0: सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर सुहाना सफर ये प्रोग्राम दोपहर के 12:36 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो होते हैं वो इस समय काम करते हैं, लेकिन काम करते करते भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सो शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए सुमी और रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में हम जो है आपका साथ दे रहे हैं। एंड चलिए अगला गाना जो होगा वो होगा किशोर दा की आवाज़ में तुम इतनी खूबसूरत हो। ये गाना माधुरी जी आपके नाम हम करते हैं और उन सभी के लिए जो इस गाने को पसंद करते हैं। चलिए इस समय मिस्टर एंड मिसेस सिंह लंदन से हमारा साथ दे रहे हैं। बाय द वे जो गाना आपने मांगा वो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं इसे आपके नाम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। और चलिए इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी हैं, तो कोई डेडिकेशन है, कोई फरमाइश है, ऑब्वियसली आप हमारे साथ जो है इसे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें मिल रहे हैं ऑन 5250-6200 पर। अभी के लिए हो जाए ये खूबसूरत सा तराना आप सभी लवली लिसनर्स और हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम।

0: सुहाना सफर।
1: यस सर, दिस इज़ सुहाना सफ़र रेडियो मनोरंजन पर। और चलिए, यहाँ पर मानिता जी फ्रांस से हमारा साथ दे रही है। राम राम सुमी जी, राम राम आपको भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मानिता जी, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। हो सके तो प्लीज़ प्रेम पुजारी का गाना हो जाए। बिल्कुल, प्रेम पुजारी का ये जो गाना है, आपकी ओर से सेंट जूलिया के आपके पूरे परिवार के नाम, खासकर आपके मामा सुमंती के लिए, आपके बहनों के नाम भी है, आरती, सचिता, बबीता, रेखा, भाई है सत्यम, भाभी है उषा, थैंक यू सो मच। और ये गाना आपकी ओर से हमारे तमाम सुनने वालों के नाम। और यहाँ पर इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, सो बहुत सारे डेडिकेशंस यहाँ पर भी आ रहे हैं। रोजेस शवीना हमारा साथ दे रही है, परी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुष्का की ओर से अगला गाना उनके हस्बैंड के नाम, एंड देन वी हैव ज्योति, जेवीना एंड माधुरी जी। हेलो माधुरी जी। ऑलराइट, परी जी यहाँ पर कह रही है लंच हो गया। आप बता रही है लंच हो गया या आप मुझे पूछ रही है कि हमारा लंच हुआ या नहीं? चलिए, हमारा लंच तो नहीं हुआ, थोड़ी देर में होगा। एंड सायरा बानू जी, गुड आफ्टरनून आपको, खूबसूरत गानों के लिए, लवली सॉन्ग, ओके थैंक यू गानों को पसंद करने के लिए। चलिए, अगला जो तराना है सायरा बानू जी, आपके नाम और अब्दुल के नाम हम करते हैं। कविता जी, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। हेलो, विशिंग नताशा एंड अविनाश हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सभी कजिन्स, सभी बहनों और सभी ब्रदर इन लॉस की ओर से। और राइट नताशा जी एंड अविनाश जी, आप दोनों को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सभी गुली परिवार की ओर से। और चलिए, यहाँ पर प्रेम पुजारी का ये गाना चल पड़ा, किशोर दा और लता जी की आवाजों में।
2: आ जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर खूबसूरत गानों के साथ आपकी प्यार भरी बातें, आपके डेडिकेशन यहाँ पर जुड़ रहे हैं और देखते ही देखते दोपहर के 12:48 ऑलरेडी हो चुके हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान बिहारी जी, हमेशा हमारा साथ देते हैं हमारे सभी प्रोग्रामों में। और अगला गाना ज्ञान जी आपकी ओर से, आपके फ्रेंड सुनील के नाम। देन वी हैव शीतल, रानी, बामा, संजीव, सभी बड़े ही प्यार से सुन रहे है और यही गाना आपकी ओर से हमारे RM3 के सभी लिसनर्स के लिए। एंड सभी बिहारी परिवार के नाम, राजा साहब फिल्म का ये तराना है और इस समय लीना अरविंद रोशनवा से हमारे साथ जुड़े हैं। रमज़ान है, आशा है, सूज जी हमेशा की तरह फ्रांस से हमारा साथ दे रहे हैं। देन वी हैव मिंटा सुल्तान, ज्योति जी की ओर से अगला गाना जाता है दलतमन फैमिली के नाम। देन वी हैव दयाल फैमिली, जुदोई परिवार, लालमन परिवार और नीलांबर परिवार के नाम। किरण जी हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ कनेक्टेड है और कनाडा से हमें सुन रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे टिकटॉक पर हमारा साथ दे रहे हैं और अनुष्का

गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड केविन के लिए और चलिए यहां पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है जेवीना जी जो गाना आपने मांगा जैसे कि हमने आपको बताया कि वो 90s का तराना है जो इस प्रोग्राम में तो हम शामिल नहीं कर पाएंगे लेकिन जिस दिन हम दिलों की आवाज करेंगे बेशक उस दिन हम इसे ज़रूर आपके लिए चलाएंगे तो चलिए जितने भी लिसनर्स और फॉलोअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अभी के लिए लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में ये गाना चल पड़ा

0: सुहाना सफर।
1: चलिए पुराने गानों के शौकीन है और सुहाना सफर इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जवीना जी ने कहा, कि अगर कोई नहीं, सुल्ताना जी ने कहा सॉरी, कि मुकेश जी का अगर कोई गाना हो तो बिल्कुल अगला जो गाना है वो मुकेश साहब और आशा जी की आवाज़ों में है। और यही गाना जाएगा परी के नाम, ट्विंकल के नाम। ईशा, सविता, अनीता जी, आपने एक मैसेज किया था आप कोई गाना सुनना चाहती है लेकिन आपका मैसेज हमें समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा भेजने की कोशिश कीजिए। निज़ाम बहादुर जी, यही गाना आपके लिए भी। विनीता जी, नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर यू। और चलिए इसी गाने के साथ हम जो है बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गानों को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस आशा जी, थैंक यू सो मच आशा जी आपके मैसेज के लिए। एनीमैक्स, थैंक यू प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, गानों को पसंद करने के लिए। अगला गाना आपके लिए भी हम चलाएंगे। एंड रॉय राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। कविता जी, अच्छा लगा जानकर के आप ठीक हैं, नमस्कार रॉय आपको। गंगाराम जी, थैंक यू, जो गाना आपने मांगा थोड़ी देर में हम इसे चलाने की कोशिश करेंगे। और इस अगले गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं 1 बजे के समाचार की ओर। मिलते हैं हम आपसे सुहाना सफ़र के दूसरे घंटे में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: एक बज चुका है, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आशिता नमस्कार।
2: नमस्कार नीतू, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसे सरकार ने एक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बातचीत बताया है। कल दोपहर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नम ने फोन पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बातचीत के केंद्र में जाहिर तौर पर शागुस का मुद्दा भी रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। बयान के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वे अमेरिका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए समझौते को आखिरकार मंजूरी दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिटेन के लिए प्राथमिकता रणनीतिक जेगोगौसिया सैन्य अड्डे पर सैन्य गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बनी हुई है। वहीं डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने लंदन के समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने शागो समुदाय के लिए जिस मुद्दे को उन्होंने एक दर्दनाक अध्याय बताया है उसे हमेशा के लिए समाप्त करने की अपनी कोशिश में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना की। दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में होने वाली आगामी मुलाकात का भी स्वागत किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। इस दौरान मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल और उनके ब्रिटिश समकक्ष एड मिलीबैंड के बीच मुलाकात होगी। बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए अनुभवों को साझा करना। रुवांडा के SOS चिल्ड्रंस विलेज का एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के लिए मॉरिशस में है। इस दौरान SOS चिल्ड्रंस विलेज बोबासैं में उसका स्वागत किया गया। इस दौरे का मकसद स्थानीय स्तर पर शुरू की गई उन पहलों को समझना है जो बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ SOS गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह एक AI फोर्स बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक AI 100 नियुक्त करेंगे। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब तेजी से उभरती इस टेक्निक के संभावित खतरों को लेकर लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने बताया कि उनका प्रशासन AI उद्योग की ग्रोथ को किसी भी तरह बाधित या रोकने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने उन मांगों को भी खारिज किया जिनमें बेहतर सुरक्षा उपाय तैयार होने तक AI के विकास को धीमा करने की बात कही जा रही है। और उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्रिया सिबिगा ने सोमवार को यूरोपीय संघ की प्रतिबद्ध सूची से दो रूसी अरबपतियों के नाम हटाने के फैसले को अस्वीकार बताया। इससे पहले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों ने कारोबारी अलीशा उस्मानोव और मिकाइल फ्रीडमैन पर लगे प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी, बशर्ते यूरोपीय संघ की कोई भी सरकार इस फैसले पर आपत्ति न जताए। दिन भर की घटनाओं का पूरा घटनाक्रम जानने के लिए उन्होंने कहा कि उनके अन्य खबरों के साथ जुड़ना होगा, तभी वो ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। और इसी के साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। अब हम बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। बालिसों रोजबेल में 90 साल की

0: 90 years old की श्रीमती सुपामा दोरासामी, श्रीमती सुपामा दोरासामी पैदाश नाम पायानी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमारो एट 10 AM। क्लेफो नंबर एक फिनिक्स में 77 साल के के जनाब मोहम्मद रफीक लुतन, जिन्हें रफीक के नाम से बुगजादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके बेटे सलमान लुतन के मकान क्लेफो नंबर एक फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए राजाक मोहम्मद मस्जिद ली जाएगी, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: सुहाना सफर के सेकंड आवर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। दोपहर के 1:05 ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 बजे तक चलने वाला है ये प्रोग्राम। अभी तक अपनी फरमाइशें, अपने रिक्वेस्ट या अपने डेडिकेशन हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर। साथ ही इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव है, आप वहाँ पर भी हमारा साथ दे सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये दोपहर का वक्त अच्छे से बीत रहा होगा। अच्छे अच्छे गाने तो यहाँ पर हम चला ही रहे हैं, वो भी आपकी फरमाइश पर। और आज है 22nd of September और आज जो है रंजीता कौर, ये बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिन्होंने लेट 70s के सालों में काफ़ी फिल्में की हैं। आज उनका जन्मदिन है। अगर आप लोगों को याद होगा अखियों के झरोखे इस फिल्म में ये एक्ट्रेस नज़र आई थी और अखियों के झरोखे इस फिल्म का ये जो टाइटल ट्रैक है ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है। इसके अलावा ये नज़र आई थी 1976 की फिल्म लैला मजनू में और साथ ही पति पत्नी और वो जो नज़र जो रिलीज़ हुई थी 1978। और रंजीता जी जो है 70 इयर्स की हो चुकी है और जो है इन्होंने काफ़ी कम फिल्में की है लेकिन कुछ फिल्में जो है काफ़ी पॉपुलर रही है जैसे कि अखियों के झरोखे। इस फिल्म में ये सचिन के साथ नजर आई थी पर जो है इन्होंने 90 के सालों में भी कुछ एकाध फिल्मों में काम किया और 15 सालों के बाद उन्होंने अपना कमबैक किया अनजाने इस फिल्म से जो साल 2005 में आई। वहीं पर ये नज़र आई थी 2008 में जिंदगी तेरे नाम इसमें। अभी के लिए ये जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं अखियों के झरोखे इस फिल्म का ट्रैक है ये और इस गाने की जो फरमाइश है यहाँ पर हमें आई थी यहाँ पर हमारे लिए मतलब आई थी विमल जी की ओर से। विमल के नाम, करिश्मा के नाम, मेधा के नाम, विहव, शहनाज, कुणाल, सुधीर, नालिनी, स्वस्ति, शैली सभी इस समय काम करते करते गानों को एंजॉय कर रहे हैं, लंच का मज़ा उठा रहे हैं और कह रहे कि ये गाना हो जाए शैली के नाम जो थोड़ी थोड़ी एक्ट्रेस रंजीता के जैसे दिखती है। तो चलिए खास कर ये गाना किशन जी की ओर से इनके सभी कलीग्स के नाम और इनके सभी दोस्तों के नाम और रंजीता जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए ये गाना जो है इनके सभी फैंस की ओर से।

0: सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर। चलिए सुहाना सफर है और उम्मीद करते हैं इन गानों को सुनते सुनते आपका ये जो टाइम है ये भी बहुत अच्छे से कट रहा होगा। अभी के लिए अगला गाना रॉय आपके नाम हम करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले शायद गाइड फिल्म के गाने की बात की थी, तो गाइड फिल्म का तराना किशोरदा की आवाज़ में गाता रहे मेरा दिल आपके लिए हम चलाएंगे। एंड यहाँ पर अशोक जी हमारा साथ दे रहे हैं, गाना जाता है बाबी की ओर से साधना फुकिया के नाम। इंदिरा जी हमारा साथ दे रही है। देन वी हैव मोनिका शर्मा, सविता, शोभा, निशा राम प्रसाद जी हमारे साथ कनेक्टेड है, शारदा है, एनटीआर है, गिरवर जी है और रॉकस्टार। इंदिरा जी की ओर से अगला गाना श्याम जी के नाम हम करेंगे। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्ताक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, है ना। और चलिए मनीषा जी आपका प्यार हमें मिल रहा है इसके लिए शुक्रिया। देन वी हैव आसिया बुदन इटली से हमारे साथ जुड़ी है। रिया बुदन जी भी हमारा साथ दे रहे

ही है कल्याणी हरि जी, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है। चलिए गानों को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे में चल पड़ा ये अगला तराना गाइड फिल्म से लिया गया आप सभी के नाम।

0: ना सफर खाना सफर।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि इन गानों को आप भी गा रहे होंगे और गुनगुना रहे होंगे, और ऐसा है ना कि बैकग्राउंड में अच्छे गाने चलते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, और अगर मूड किसी वजह से ख़राब हो तो वो भी ठीक हो जाता है ना। चलिए ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। शोर फिल्म का ये सदाबहार गाना लता जी और मुकेश जी की आवाज़ों में। अभी किसी ने हमसे कहा था मुकेश जी का कोई गाना अगर हो सके तो। चलिए एक प्यार का नगमा है ये गाना मुकेश साहब के सभी फैंस के नाम, खासकर डेजी जी आपकी ओर से गाना जाता है करिश्मा और स्वीटी के लिए। आई थिंक स्वीटी था या श्वेता था, स्वीटी था। तो चलिए आप के नाम है इस गाने को हम करते हैं। फिरोज जी और नसरीन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो ये गाना आप लोगों के लिए। योगिता जी हमारा साथ दे रही है, दीवा गर्ल काफ़ी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ी है तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। निशी की ओर से अगला गाना जाता है उनके हस्बैंड विक्रम के नाम, और साथ में वदीश है, विधान है, सभी दर्शन परिवार जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। सुबी जी बहुत खुश हो गई, उनके पसंदीदा गाना उन्हें रेडियो मॉरिशस पर भी सवेरे सुनने का मौका मिला और रेडियो मनोरंजन पर भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुबी जी, आप रेडियो मॉरिशस हो या रेडियो मनोरंजन हो हमेशा हमारा साथ देते हैं। एंड देन वी हैव विमला इंदु जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगला गाना किरण जी की ओर से जाता है मिस्टर एंड मिसेस सुशील विच के नाम, जो जलंधर इंडिया से शायद हमें सुन रहे हैं या शायद टिकटॉक के जरिए हमें देख रहे हैं। जैसे भी आप हमारा साथ दे रहे हैं आपके इस प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। एंड वी हैव काताना किरण, ओके आई होप मैं आपका नाम ठीक से ले रही हूँ। और चलिए गानों को आप पसंद कर रहे हैं, आपके डेडिकेशंस पूरे हो रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे में अगला गाना अनसुया जी आपके नाम हम करते हैं, जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सभी रामा परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज हमारी पूरी टीम की ओर से। जितने सुनने वाले, जितने लिसनर्स, जितने फॉलोअर्स आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और चलिए अगला गाना आप सभी के लिए चल पड़ा।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। न जाने इन गानों में कितनी कहानियाँ हम सुनते हैं, कितने किस्से हम सुनते हैं, और कोई कोई गाना तो ऐसा लगता है कहीं हमारी ज़िंदगी की कहानी ही तो नहीं है ये, है ना? शायद इसलिए ये गाने हमारे दिल के इतने करीब है। चलिए ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। प्रेम नगर फिल्म का जो अगला तराना होगा, किशोर दा की आवाज़ में ये लाल रंग जाता है। रॉक गंगाराम जी, आपके लिए आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, और यही गाना आपकी ओर से अशोक शुकवंती जानव जाइंसू और धनी धरवी और आपके सभी गंगाराम परिवार के नाम हम करेंगे। रोशन टेलर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी हैव सचिन कुमार, उमिला जी अगला गाना आपकी ओर से आपकी प्यारी बेटी सलूजा की ओर से आपके नाम। करुणा जी हमारा साथ दे रही है। करुणा जी जो गाना आपने कहा थोड़ी देर में, इसके लिए इसे हम आपके लिए ज़रूर चलाएंगे। एंड कोमल जी ने कहा हो सके तो ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना चला देना। और राइट, मौका मिला तो इसे भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। दिनेश गोपी जी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। शानन जी आपने पूछा कि अगला गाना कौन सा होगा। अगला गाना हम आपके लिए चला ही देते हैं, आप सुनेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा अगला गाना कौन सा होगा। राजेंद्र रघुबर जी हमारा साथ दे रहे हैं। रेशमा जी थैंक यू गानों को पसंद करने के लिए। रेखा जी हम बिल्कुल ठीक है।

उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। और चलिए यहाँ पर रेखा जी रुश्ते से हमारे साथ जुड़ी है, थोड़ा सा टाइम अभी मिला है सुमी जी। ऑल राइट, चलिए अच्छा लगा मानिता जी। व्हाट्सएप हो या टिकटॉक लाइव हो, आप हमेशा हमारा साथ देती है। संजना जी फ्रांस से हमारा साथ दे रही है, कह रही अगला गाना हो जाए बेलिया लिखा है, रोज बेल लिखा है, सभी रामचंद परिवार के नाम। ऑल राइट, चलिए एंड इन

0: वेलकम हम करते हैं। ऑलराइट रेखा जी, अगला गाना आपकी ओर से आपकी बेटी आंशी के लिए। एंड चलिए ये गाना बस चल पड़ा किशोरदा की आवाज में।
1: लाल रंग

0: सुहाना सफर।
1: चलिए इस सफर को आप सभी बड़े एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है आपके मैसेजेस से, आपकी बातों से जो यहाँ पर आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जेवीना ने कहा था हो सके तो निकाह फिल्म का कोई गाना हो जाए। निकाह फिल्म का ये जो अगला तराना है सलमा आगा जी की आवाज़ में, आप सभी के नाम करते हैं ऐसे सलमा आगा जी की आवाज़ में काफ़ी गाने हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। निकाह फिल्म का ये तराना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो ये गाना आपके लिए हम करते हैं। माला जी इस समय हमारा साथ दे रही है आपके प्यार भरे साथ के लिए। माला जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये अगला तराना आपके लिए हम चलाएंगे।

एंड रोशनी जी गाना जाता है आपकी ओर से कामिनी के नाम। मिर्सा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी हैव नौशाद दीदी माँ की ओर से अगला गाना उनके हस्बैंड रमेश के नाम। कोशिश करेंगे हेमंत कुमार जी की आवाज़ में नम्रता जी इस गाने को चलाने की मौका मिला तो, और जितने भी हमारे फॉलोवर्स हमारे इस लाइव को शेयर कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर इस गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: ना सफर, हाँ ना सफर।
1: और चलिए बस कुछ ही मिनटों में हमारा ये जो प्रोग्राम है ख़त्म भी हो जाएगा। दो घंटों का ये सफ़र आप लोगों के साथ जुड़कर इन गानों को

आप लोगों के लिए चलाते हुए, इन गानों को सुनते हुए, आप लोगों से बातें करते करते कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये जो तराना है, मौसम मस्ताना है, जाता है यहाँ पर करुणा जी आपके नाम, मधुबाला जी भी हमारा साथ दे रही है, वी हैव देवांश, रेखा, कौशिक, रोजी, वेदना, श्याम, जय, अंश बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं। साकुन जी अगला गाना आपके लिए हम करेंगे, ठीक है। अशरफ जी भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो आपके भी ऐसे साथ के लिए शुक्रिया। और चलिए ऐसे में ये गाना यहाँ पर आप सभी के लिए चल पड़ा, सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये तरह।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए यकीनन ज़िंदगी खूबसूरत और भी हो जाती है जब अपने होते हैं, जब ज़िंदगी में दोस्त होते हैं, जब जिनसे हम दिल की बात कह पाए बेझिझक होकर, जो है सामने वाले जो है हमारी बातों को समझ पाए, हमारे एहसासों को समझ पाए। 1:50 ऑलरेडी यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है माला के नाम, जो कटरबोन से हमारा साथ दे रही है। ये गाना उनके ओर से उनके सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: और चलिए कब इन गानों को सुनते सुनते सुहाना सफर इस प्रोग्राम का सफर खत्म होने को चला पता ही नहीं चला। चलिए पर इतना प्यार बरसाने के लिए शुक्रिया और इतने खूबसूरत डेडिकेशंस आपके हमें मिले, इतनी प्यार भरी बातें। दो घंटों का ये सफ़र कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। जाते जाते काला पत्थर फिल्म का ये तराना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं, साथ ही हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम जिन्होंने टिकटॉक लाइव में इतने प्यार से हमारा साथ दिया। और इसी गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात खत्म हो जाएगी। 2 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी प्रोग्राम, उनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। हैव अ लवली लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से।

0: अंशदा आगे स्टूडियो में उनसे मिलते जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस राष्ट्रीय कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चार दिनों की एक कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया है। इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत प्रस्तावित तंत्रों पर चर्चा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस पहल को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दड़ाफों को फनी का समर्थन प्राप्त है। इसे सरकार ने एक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बातचीत बताया है। कल दोपहर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नाम ने फोन पर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। बातचीत के केंद्र में जाहिर तौर पर शागुस का मुद्दा भी रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। बयान के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वे अमरीका के साथ मिलकर 22 मई 2025 को हुए समझौते को आखिरकार मंजूरी दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने लंदन के समर्थन का स्वागत किया। उन्होंने शागु समुदाय के लिए जिस मुद्दे को उन्होंने एक दर्दनाक अध्याय बताया है उसे हमेशा के लिए समाप्त करने की अपनी कोशिश में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना की। दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में होने वाली आगामी मुलाकात का भी स्वागत किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। इस दौरान मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल और उनके ब्रिटिश समकक्ष एड मिलीबान के बीच मुलाकात होगी। बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए अनुभवों को साझा करना। रुवांडा के SOS चिल्ड्रंस विलेज का एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के लिए मॉरिशस में है। इस दौरान SOS चिल्ड्रंस विलेज बुबासे में उनका स्वागत किया गया। इस दौरे का मकसद स्थानीय स्तर पर शुरू की गई उन पहलों को समझना है जो बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ SOS गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिगा ने सोमवार को यूरोपीय संघ की प्रतिबद्ध सूची से 2 रूसी अरबपतियों के नाम हटाने के फैसले को अस्वीकार किया है। इससे पहले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजदूतों ने कारोबारी अलीशा उस्मानोव और मिकाइल फ्रीडमैन पर लगे प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई थी, बशर्ते यूरोपीय संघ की कोई भी सरकार इस फैसले पर आपत्ति न जताए। दिन भर की जो घटनाएं हैं उनके बारे में वो ज्यादा विस्तार से बताएंगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Udaan ki kahani, Udaan ki kahani. सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। रेडियो मनोरंजन पर मैं हूँ रत्ना, आ पहुँची हूँ आज एक नई और उड़ान की कहानी को लेकर। और उड़ान की कहानी महिलाओं की कहानी, सशक्त महिलाओं की कहानी। जितनी भी महिलाएं हैं किस प्रकार से इस समाज में अपना योगदान दे रही हैं जीवन के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, और साथ ही साथ उनका जो योगदान है वो बिल्कुल सराहनीय है और कॉन्ट्रीब्यूटेड है हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए। और ये आज भी हमारे साथ जुड़ेंगी एक ऐसी महिला जिन्होंने बैरिस्टर एट लॉ किया है, और पल्लवी अंशकास, शायद आपने नाम सुना होगा, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। वैसे आज अपने प्रोफेशन को लेकर बिल्कुल इतनी कह सकते हैं कि सीरियस है कि आज सच में वो आप उनके कपड़ों के साथ ही देख सकती हैं। आज वो सीधी कोर्ट से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। बिल्कुल आइए स्वागत करते हैं पल्लवी जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार रत्ना जी,
4: और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपको इस सटायर में देखकर, क्योंकि सच में देखा जाए तो हमने कई बार देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या तो फिर कोर्ट के बाहर से जब गुजरते हैं तब महिलाओं को हम ऐसे अटायर में देखते हैं, पर आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी है पल्लवी।

0: जी तो आज हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकाला, थैंक यू सो मच।
1: यू वेलकम, थैंक यू आपका, मैं मुझे करना चाहिए, आपने मुझे ये मौका दिया
0: जी बिल्कुल,
1: कि आज मैं इधर हूँ, मैं आपसे और सबसे बात भी कर पा रही हूँ।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आज बिल्कुल आज हम ज़रूर जानना चाहेंगे, आप वकालत के पेशे को बिलोंग करती हैं, तो इस पेशे में आप कितने सालों से हैं?
1: अभी लगभग 3 साल होने को है, एंड ऑफ सितंबर में। मैंने मॉरिशस में मॉरिशस के मैं भर्ती हुई हूँ सितंबर 2023 में, जो अभी तक 3 साल होने को है। मतलब टाइम वाइज थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी एनरिचिंग।
0: बिल्कुल, हर दिन एक नया चैलेंज आपके सामने रहा होगा,
1: हर दिन।
0: और आपने शिक्षा, अपनी जो लॉ की शिक्षा है वो कहाँ से ली है?
1: मैंने शुरुआत तो मॉरिशस से की है, LLB मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में की, फिर उसके बाद मैंने यूक्लान से एक डिप्लोमा की डिग्री ली है, उसके बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल स्टडीज यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में मैंने पूरा किया है, फिर उसके बाद मैं मॉरिशस फिर से वापस आई, एक साल मैंने इंटर्नशिप किया, और फिर उसके बाद मैंने हम
0: बोलते हैं
1: कॉल टू द बॉ, वो सितंबर 2023 में मैंने किया।
0: ओके, तो जैसे आपने शुरू में जब अपने जैसे ही आपने अपनी जो पढ़ाई फिनिश की और आपने सोचा कि अब मुझे लॉ के साइड में जाना है, आपको किसी ने इंस्पायर किया था कि आप एक बैरिस्टर बने?
1: इंस्पिरेशन, हाँ जी, वो मेरे पापा हैं।
0: हाँ,
1: वो मैं जब से छोटी हूँ तब से ही वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप ये प्रोफेशन करो या फिर वो प्रोफेशन करो, उन्होंने हमेशा मुझे चॉइस दिया है कि आप अपना डिसीजन खुद लो, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है कि पढ़ते रहो। एक डिग्री ख़त्म हुई तो उन्होंने बोला कि तो दूसरी करो, दूसरी ख़त्म हुई तो उन्होंने बोला कि तो तीसरी करो, मतलब पढ़ते रहो,
0: ऑन गोइंग रखो
1: कि जब मतलब तब तक तो फिर सिर्फ प्रोफेशनल स्टडीज ही बाकी था।
0: बिल्कुल,
1: तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया और थैंक टू गॉड मैं पास हुई, और वही रहे हैं मेरे इंस्पिरेशन, और ऊपर से वो ठहरे एक सीनियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर है मॉरिशस प्रिजंस में, तो हमेशा से जब से छोटी हूँ तो जब से मैंने देखा है कि डिसिप्लिन मतलब वो हमेशा
0: कानून को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, बहुत
1: बिल्कुल तो हम उसी एटमोसफियर में पले बड़े हैं, जहाँ पे हमको सिखाया गया है कि जीवन में हमेशा कानून के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं चलोगे तो फिर पापा बताते हैं कि उदाहरण में
0: क्या फिर क्या होता है।
1: क्या होता
0: बिल्कुल
1: है,
0: मैं समझती हूँ हर पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए उनकी जो प्रेरणा होती है, भले कहते हैं ना, कई हमारे समाज में ऐसे कई सारे माता पिता हैं जो खुद नहीं पढ़े लिखे होंगे, पर अपने बच्चों को उन्होंने हमेशा उस स्तर पर देखा है। कई सारे घरों में ऐसा होगा कि पापा डॉक्टर नहीं बने, पर अपने बच्चों को उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसी ऐसी डिग्रियाँ दिलवाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। माता पिता दोनों का योगदान अपने बच्चों के भविष्य में बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसकी कोई गिनती हम नहीं कर सकते। तो जब आपने भी वकील बनने के लिए जब आपने शुरू किया एज अ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए?
1: एज अ स्टूडेंट पहले तो ट्रांजिशन ही बहुत अलग था, क्योंकि जैसे हमने कॉलेज में पढ़ा है, हमने सीखा है कि कैसे पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, और जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो बहुत अंतर था। वो बाद में पता चला धीरे धीरे, जब हमने कोर्स शुरू किया, फिर टेस्ट आए, असाइनमेंट्स आई, एग्ज़ाम्स आए, फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये तो अलग ही दुनिया है, और इधर अगर आपने परिश्रम नहीं किया, आपने अपना मतलब योगदान अपनी तरफ से नहीं डाला, तो फिर आप फिर पीछे छूट जाएंगे, और ये ठहरा बहुत कम्पिटिटिव एरिया था वो। तो फिर मुझे याद है, और अगर मैंने पढ़ाई मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में 2014 से लेकर 2017 तक की थी, तो अगर बाय चांस कोई भी जो लाइब्रेरियन ये प्रोग्राम सुन रहा है, वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि मैं

0: पहली इंसान थी मतलब स्टूडेंट जब कोर्स नहीं होता था तो शुरू मतलब जैसे लाइब्रेरी खुलती थी
1: हाँ हाँ.
0: तो मैं जाती थी और जब लाइब्रेरी बंद होती थी उससे आधे घंटे पहले ही मैं तब तक उधर ही बैठी थी. अपना पूरा मैंने समय ज्यादातर उधर ही बिताई है.
1: यानी ज्यादातर आपने अपने बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका जो सैक्रिफाइस था फैमिली को टाइम ना देकर आपने अपने पढ़ाई को उस टाइम. और बिल्कुल ये सही भी है क्योंकि हम कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य उसमें जो वो बच्चे जो होते हैं जो बढ़ रहे होते हैं पढ़ाई कर रहे होते हैं खासकर तो उसमें आपका डेडिकेशन होना चाहिए आपके और पढ़ाई के बीच में और कोई ना आए. और आपने वही किया जिसका फल आप देख पा रहे हैं. तो मैं समझती हूँ कि आपने क्योंकि सही जिस तरह से आपने कहा कि जैसे ही स्कूल लाइफ ख़त्म होती है और आप यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर करते हो आपको लगता है कि भाई जैसे हम फिल्मों में ना कि मस्ती करना पार्टी करना बच्चों मतलब कॉलेज में जाना क्लास बंक करना ये बिल्कुल नहीं है. वहां जाकर आपको सब कुछ सेल्फ लर्निंग करना होता है जहां पर टीचर्स सिर्फ आएंगे आपको समझा कर चले जाते हैं बाकी का काम आपको करना होता है. तो ये सबसे मुश्किल होता है और यहीं पर आपकी जो कह सकते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को देते हैं अपना टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए ये बिल्कुल साबित होता है. और जब आप यहाँ से फिर यूके गए पढ़ने के लिए तो क्या आप पहली बार देश से बाहर थी और एज अ स्टूडेंट आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहा वहाँ ऑल अलोन आप बिना परिवार के वहाँ पर कितने टाइम तक रुकी वहाँ के चैलेंजेस कैसे थे?
0: हाँ मुझे बहुत खुशी है ये सब चैलेंजेस पे बात करने के लिए क्योंकि वो तो अपने आप में ही एक उसमें ही एक कहानी है. तो जो आपने मुझे पहला प्रश्न पूछा मैं उसका जवाब देती हूँ. पहले वो मेरी पहली बार नहीं थी जहाँ पे मैं देश छोड़कर जा रही थी. उससे पहले मैं ट्रैवलिंग के लिए जाती थी टूरिज्म के लिए
1: घूमने के लिए
0: दो तीन हफ्ते मैक्सिमम
1: वैकेशन बिल्कुल
0: फिर वापस. लेकिन वो पहली बार थी जहाँ पे मैं इतने दिनों के लिए एक अनजान शहर नहीं बल्कि एक पूरा मतलब देश ही
1: बिल्कुल
0: वहाँ पे जा रही थी अकेले. और जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी घर में आप जो बेटियां हैं थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी लाडली रहती हैं. तो मैं अपने घर में ऐसी ही थी. तो जहाँ पे मैंने ज़्यादा मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी अकेले ज़्यादा काम करने के लिए भी नहीं दिया. हमेशा उनका फोकस ये था कि आप पढ़ाई करो काम करने के लिए हम हैं. तो जब मैं वहाँ पर गई थी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने पापा से मम्मी से पूछ रही थी तो मैं मैनेज कैसे करूँगी मैं मुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता. तो फिर मुझे याद है मेरे पापा ने मुझे बोला था कि एक इंसान को जब भूख लगती है तो वो कुछ भी बनाए वो अच्छा ही वो बनता है
1: बिल्कुल.
0: और सच में जब मैं गई हूँ मैं फ़ोन करती थी घर पे कि ये कैसे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं लेकिन जब भी मैंने बनाया हमेशा अच्छा ही बना और सबको खिलाया भी. तो ये तो रही मतलब ऐसे. लेकिन पढ़ाई के टाइम पे हमको ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था. जैसे मैंने बोला इधर ही शुरू हो गया था मुझे पता था कि आगे का रास्ता कैसा मतलब बहुत मुश्किल होने वाला है. तो वहाँ पे फिर टाइम डिफरेंस का भी था इशू और ऊपर से ठंड तो मतलब शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल था. मतलब बहुत
1: आपका ड्यूरेशन वहाँ कितने सालों तक आप रही?
0: नॉर्मली ये एक साल का कोर्स था.
1: अच्छा.
0: लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब मैं वहाँ पे थी 3 महीने के बाद कोविड आ गया. तो फिर हम मतलब पूरी तरह से फंसे हुए थे
1: बिल्कुल.
0: फिर हमने जैसे तैसे कर किया मैंने मतलब जब मेरी यूनिवर्सिटी बंद थी तो फिर मैंने फ्लाइट लिया मैं मॉरिशस वापस आई क्योंकि मुझे डर था क्योंकि पता नहीं चल रहा था
1: ये कितने समय तक रहेगा.
0: सुनने को ये भी मिल रहा था कि मतलब कितने डेथ थे और जो हम सब अपने अपने अलग अलग देश में अटके हुए थे
1: बिल्कुल.
0: और जो अपने माँ बाप के मतलब उनके फ्यूनरल तक में नहीं जा पाए थे
1: बिल्कुल.
0: तो ये डर मुझे मतलब खाए जा रहा था
1: बिल्कुल.
0: तो जैसे मुझे मौका मिला तो मैंने फ्लाइट ली मैं मॉरिशस वापस आई और जिस दिन मैं मॉरिशस में आई उस दिन मॉरिशस का जो फोन चेयर रहता है वो बंद हुआ.
1: यानी लकी कि आप पहुंच गई उसके बाद सारे एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया
0: गया. फिर उसके मतलब

0: जब मैं आई थी तो मार्च का महीना था, फिर नवंबर तक मैं रही थी और मेरे सारे एग्जाम्स रुके हुए थे. फिर मुझे बाद में फिर से जाना पड़ा नवंबर में. तो हमने उसका मतलब ये हमने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किया था कि और एक साल हमको फिर से जाना पड़ेगा. लेकिन मैं गई, भगवान की मतलब
1: कृपा से, हाँ जी, हाँ
0: सब
1: जी.
0: कुछ ठीक रहा
1: जी, जी.
0: और वो ख़त्म करके फिर मैंने, क्योंकि ये कोविड का जो मतलब ये पीरियड था,
1: हाँ.
0: हम सब के लिए एक सबक था.
1: बिल्कुल.
0: तो जैसे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मुझे पता चला मैं पास हो गई, मैं तुरंत वापस अपनी फैमिली के पास आ गई.
1: यानी आपने वो एक्चुअली जिया, वो टाइम जिया और आपने देखा कि घर से दूर, फैमिली से दूर आसान नहीं होता है. और खासकर जब आप एक लड़की हैं तो आई बिलीव हर लड़की के मन में अपने माता पिता के लिए जो फीलिंग्स है वो एक अलग लेवल की होती है. तो ऐसा लगता है कि जितना हो सके हम अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और खासकर जब कोविड का समय आया था, वो एक ऐसा क्रूशियल पीरियड था जहाँ पर बहुत सारे घरों में ऐसे भी देखने को मिले कि ना बच्चों ने माता पिता के चेहरे देखे, ना माता पिता ने बच्चों के चेहरे देखे. तो ये कहीं ना कहीं हमें कहते हैं एक जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई से बिल्कुल वाकिफ करवाता है जी. तो आपका वो एक ऐसा चैलेंज पीरियड आपने बताया कि पढ़ाई तो ठीक है, चलो कर लिया आपने, पर जो चैलेंज आपने अभी भी बताया, बहुत सारे लोग ऐसे में से सच में गुजरे हैं. चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं उड़ान की कहानी में. आज हमारे साथ जुड़ी है पल्लवी अंचगास, जो बैरिस्टर एट लॉ है, और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के कार्यक्रम में हम खुलासा करेंगे. एक लेते हैं गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: उड़ान की कहानी। जी हाँ, आपको ये भी बताते चले, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीक पर इस वक्त सहयोग मिल रहा है काविश का। हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है दीपशिका और हमारे प्रोड्यूसर निज़ाम हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, रेडियो मनोरंजन की लहरों पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम में आज हमारे साथ है बैरिस्टर एट लॉ पल्लवी अंशगाज, जो एक ना केवल एक बैरिस्टर है पर साथ साथ एक लेक्चरर भी है। इतनी कम उम्र में उन्होंने लेक्चर्स भी बिल्कुल इस प्रोफेशन को भी चुना है। इसके बारे में अभी थोड़ी ही देर में जानेंगे, पर उससे पहले ज़रूर जानते हैं पल्लवी से कि पल्लवी जी, आपने जब अपना पहला केस आपको जब मिला था, किस तरह से आपको पहला केस मिला और आपका जो आपने किस तरह से उस पर अमल किया, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा?
3: जो मुझे याद है, जो मेरा पहला केस मिला, जो ट्रायल तक गया, क्योंकि शुरू में ऐसे भी मतलब सिचुएशंस आते थे जहाँ पे हमको किसी को, एक दोस्त को या फिर एक सीनियर को रिप्लेस भी करना पड़ता था, लेकिन जो मेरा पहला केस जहाँ पे हमको फाइट करना था, वो एक बुज़ुर्ग दादी जी की एक मतलब एक केस इशू था। तो फिर मतलब उनका एक फ़ोन आया था कि मतलब उनके ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। तो फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस था एक, तो फिर हम गए। मुझे मतलब अभी तक मुझे वो याद है क्योंकि वो मेरा पहला केस था अकेले, जहाँ पे मुझे पूरी तैयारी अकेली करना पड़ा। तो मैं मिली थी उनसे, बहुत एज में थी वो। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि क्या क्या हो रहा है और उनको क्या चाहिए, कौन सी मदद चाहिए कानून से, कोर्ट से। फिर मैंने पूरा उनका इंस्ट्रक्शंस लिया, फिर हम गए और उसी दिन हमने पूरा केस ख़त्म भी किया। तो
2: एक ही हियरिंग में?
3: एक ही हियरिंग में।
2: ओके,
3: तो वो इसीलिए मुझे बहुत याद है। और ऊपर से वो थ्योरी, क्योंकि हम कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमने ये प्रोफेशन क्यों चुना, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि हाँ, ये प्रोफेशन ऑफ कोर्स सभी लोग काम करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशन ये एक ज़रिया था किसी की मदद भी करने के लिए।
2: सही बात।
3: और असली मायने में वो था जहाँ पे मतलब एक दादी आई, उन्होंने बताया, ठीक से बात की, मैंने भी पूरी मतलब ईमानदारी से केस लिया और वो भी कंप्लीट किया एक ही हियरिंग में।
2: और मतलब वो केस जीती, आप जीत गई थी वो केस?
3: वो एक सेटलमेंट पे आई थी जहाँ पे मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स ने एक अंडरटेकिंग भी लिया था कोर्ट में कि वो आइंदा उनको परेशान
2: नहीं करेंगे। तो एक तरह से म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ, बट देखा जाए तो सकारात्मक। और उस दिन आपका रिएक्शन कैसा था, मतलब आपको शाम को कैसा फील हो रहा था?
3: बहुत संतुष्टि, मतलब मैं बहुत संतुष्ट थी कि किसी ने मतलब ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ कि किसी ने आपको अप्रोच किया, वो भी एज में ज़्यादातर, मतलब क्योंकि कभी कभी केस किसी ना किसी रीज़न के लिए वो पोस्टपोन होता है।
2: जी,
3: वो नहीं बोलेंगे कि वो मतलब ऐसे ही पोस्टपोन होता है, कभी कभी प्रोसीजरल वाइज या फिर कुछ ना कुछ एक रीज़न
2: होता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसे फॉलो करने पड़ते हैं।
3: हाँ जी,
2: बिल्कुल।
3: तो फिर मैं सोच ही रही थी कि अगर मतलब बहुत आना जाना रहेगा उस दादी का अभी कोर्ट में, तो कैसे मैनेज करेगी, और ऊपर से उनको डिपोन भी करना चाहिए कोर्ट में, उनको मतलब बात भी करना चाहिए। वो तो ठीक है क्योंकि जब कोई सच बता रहा है, बोल रहा है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन वो एज में थी तो मुझे डर था कि वो फिर से मतलब बार बार
2: उनको कहीं मायूसी ना झेलनी पड़े. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं. और जैसे पल्लवी जी ने बताया कि कानून की कार्रवाइयाँ, कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी होती है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है. कई बार लोग नाखुश भी हो जाते हैं, पर जैसे कानून कहते हैं ना कि हमेशा किसी के भी पक्ष में वो निष्पक्ष होकर अपनी राय देता है. और इसीलिए बिल्कुल ये बहुत बहुत सेंसिटिव, बहुत संजीदा मामला होता है. और बिल्कुल कई सारे हमारे लोग हैं, कई सारी हमारी महिलाएं हैं जो इस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं. और अब तक हमारी जितनी भी इस मंच पर जितनी भी महिलाएं जो कानून को लेकर, कानून के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हम तक कही, उन्होंने भी यही कहा था कहीं ना कहीं कि इस प्रोफेशन को चुनने का मकसद उनका शायद यही था कि वो लोगों की बातों को कानून के माध्यम से उन्हें ठीक से पहुंचा सके. कई बार होता है कि कानून की कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको बहुत मुश्किल होती है. तो जैसे आप अभी तक जितने भी केसेस आपने लिए हैं, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और क्या ऐसा भी कभी हुआ है? क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहकर बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंस होता है, और एक ऐसे प्रोफेशन में रहना जहाँ पर हर रोज़ मुझे लगता है आप आए दिन इन सारी चीज़ों का सामना करती होंगी, तो चैलेंज कैसे फेस करती हैं आप?
3: तो रत्ना जी, पहले तो चैलेंज, जैसे आपने बोला कि ये एक पुरुष प्रधान
2: समाज
3: है,
2: बिल्कुल
3: समाज है, और ऊपर से जो काम मैं करती हूँ वो
2: कुछ ज़्यादा ही है.
3: मैं मना नहीं करूँगी, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में, और जो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, तो बहुत से लोग उनको मतलब वो एक मेल वकील के पास जाना पसंद करते हैं. उनको लगता है अभी तक कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव, काबिल नहीं है, नहीं बोलूंगी, लेकिन ज्यादा मतलब सेंसिटिव में भी मतलब हमसे वो
2: काम नहीं कर पाएंगे
3: जी. लेकिन वो बहुत गलत है. मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं उल्टा मेरे केस में मेरे बहुत से पुरुष क्लाइंट्स हैं, जो मतलब आज मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: तो ऐसे भी है, ठीक है, हम जवान हैं और हम ऊपर से ठहरी महिलाएं, लेकिन हमारा क्या योगदान है उस जो विचार है वो विचार को बदलने के लिए?
2: बिल्कुल.
3: तो हमको क्या करना चाहिए? हमको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ, जो एक एक केस होता है पूरा उसका प्रिपरेशन करना होता है, उसकी मतलब पूरा जो बोलते हैं, पहले बोलते थे कि ऐसे मॉरिशियन लैंग्वेज में बोलते हैं कि माउस लीव ला, मतलब उस पुस्तक को मतलब ऐसे लिटरली बोलते हैं खा जाओ. तो ऐसा ही है कि आप अपने ब्रीफ को, अपने केस को बाय हार्ट आपको जानना है कि क्या है उसमें, ताकि जब भी कोई भी इशू हो रहा है, उसका जिक्र हो रहा है अदालत में, हमको पता होना चाहिए कि उसका समाधान क्या है, या फिर हम उस पर कुछ ना कुछ हमारा ओपिनियन या अपने जो हमारे क्लाइंट हैं उनके फेवर में बात कर सकें या फिर फाइट्स कर सकें लीगली.
2: बिल्कुल.
3: तो फिर ऐसे अगर हम ये जरिया मतलब अपनाएंगे तो फिर हम अपने ही काम में सफल होंगे.
2: बिल्कुल.
3: और अगर हमने एक कार्य में ऐसी सफलता प्राप्त की तो धीरे धीरे, जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो पुरुष है, अगर मैंने उनको सेटिस्फैक्शन प्रदान किया उनके केस में, तो वो भी जाकर मेरा जिक्र किसी और के.
2: बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कहते हैं ना कि नाम इसी तरह से आगे बढ़ता है, और अपने का आपका काम आपके लिए बोलता है. जब आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं आपका नाम समाज में होता है.
3: होता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे आपने बताया कि आप एक

0: इस जुरियों मैं पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ एक यूनिवर्सिटी में जो मेरा विषय है मेरी स्पेशलिटी तो लॉ है तो मैं लॉ पर आती हूँ
1: तो वहाँ पर भी जैसे मतलब आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं
0: वहाँ पे मतलब चैलेंजेस इन द सेंस कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो भी बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके बहुत प्रश्न होते हैं और ज़्यादातर जब वो बात कर रही हैं तो अपना मतलब खुद का सिचुएशन सामने रख के बोलते हैं कि अगर उनके साथ फॉर एग्जांपल अभी मैं लेबलों की का मॉड्यूल टीच कर रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनके साथ उनकी जो प्रोफेशन में उनकी प्रोफेशन में उनके साथ जो जो मतलब हाथ से हो रहे हैं समस्याएं हैं तो फिर वो उनके हिसाब से मतलब प्रश्न पूछते हैं तो मैं चैलेंज नहीं बोलूँगी लेकिन बहुत मतलब बहुत एक सीरियस काम है वो क्योंकि हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले हमको ये भी यकीन ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं
1: सही
0: तो हम पहले पढ़ते हैं फिर उनको पढ़ाते हैं
1: बिल्कुल सही क्योंकि मैं समझती हूँ टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो भी एक तरह से एक अलग ही प्रोफेशन है क्योंकि आई बिलीव जहाँ पर आप आए दिन केसेस लड़ती हैं केस कोर्ट में वहाँ पर आपने एक और ऐसा प्रोफेशन लिया है जो टीचिंग का है जहाँ पर आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपोज रखना है बहुत ज़्यादा शांत रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर एक मतलब जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको सिखाना उनको समझाना और उससे पहले खुद को समझना यानी आसान नहीं है इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके उनको इस प्रोफेशन को भी आगे ले जाना अगेन बहुत आसान बहुत बहुत ही चैलेंजिंग काम है बिल्कुल जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना केवल एक बैरिस्टर एट लॉ पर साथ ही साथ एक लेक्चरर के साथ भी तो जी हाँ आज के समय में महिलाएं जो हैं वो मल्टीटास्किंग है और हम इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते क्योंकि मैं समझती हूँ हर एक इंसान के अंदर आज मल्टी टैलेंटेड होना ये एक कह सकते हैं कि क्वालिटी अगर आप में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हो यानी आपको अगर आगे बढ़ना है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना है तो आपको मल्टी टैलेंटेड तो होना ही पड़ेगा चलिए लेते हैं एक और गीत का ब्रेक आते हैं थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी जो बहुत ही दिलचस्प कहानी है पल्लवी जी की कहानी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे थोड़ी ही देर में

0: की कहानी, उड़ान की कहानी। जी हाँ, उड़ान की कहानी। और आज हमारे सामने एक ऐसी सशक्त नारी है जो सच में दो ऐसे प्रोफेशन को हैंडल करती हैं, ना केवल हैंडल करती हैं, बहुत अच्छी तरह हैंडल करती हैं, और साथ ही साथ वो चैलेंजेस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि आसान नहीं होता एक समाज में अपनी जगह तो चलिए कायम हो ही जाती है आपके काम को लेकर, पर आप एक ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़ी हैं जहाँ पर हर एक केस अपने आप में एक नई कहानी, और ऐसी नई कहानी के साथ आपको हर वो कोशिश करनी है जहाँ पर आप अपने क्लाइंट को बिल्कुल न्याय दिला सकें। और यहाँ पर बिल्कुल पल्लवी जी हमारे साथ है। तो पल्लवी, आपके साथ कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ आपको बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं और फिर अब आप उसको स्टडी कैसे करती हैं, उसके लिए समय कैसे निकाल पाती हैं?
1: हाँ जी रत्ना जी, ये तो मतलब हमारा रोज़ का ऐसा मतलब ये सिलसिला तो जारी रहता है
0: जी,
1: कि ज़्यादातर एक ही दिन में हमारा मतलब हमारे 2-3 केसेस फिक्स रहते हैं। समय के साथ साथ वो बढ़ता जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जब मैं मतलब थोड़ी सी और यंग थी आतबाव, तो मतलब दाढ़ी ज़्यादा भरा नहीं था। फिर बाद में धीरे धीरे जब मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता गया और काम भी अच्छा मतलब
0: चलने लगा,
1: जब हम डिलीवर करते हैं ना, तो सेटिस्फैक्शन जब हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को
0: तो रिकमेंडेशन आती है। बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो फिर एक दिन में कभी कभी 2-3 केसेस रहते हैं, और कभी कभी ये 2-3 केसेस 2-3 अदालतों में बढ़ता है।
0: ओके।
1: मान लीजिए कि पहला केस जो है वो फिक्स हुआ है फ्लाक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में।
0: ओके।
1: दूसरा केस ऑफ कोर्स वो हमारे और अदालत के मतलब हमारे शेड्यूल को देखकर हम एक टाइम फिक्स करते
0: होती
1: हैं
0: जी।
1: फॉर एग्जांपल 11 बजे मैं पाम प्रीमिसेस के कोर्ट में हूँ,
0: हाँ।
1: या फिर 1 बजे मुझे पोर्टलिस पहुँचना पड़ता है, तो ये भागा दौड़ी की जिंदगी हमारा मतलब हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है
0: जी जी।
1: तो फिर ये मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर मैं जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, कोर्ट मतलब इधर के कोर्ट, फिर वो कोर्ट, फिर अगर ये एक इंक्वायरी मिल जाएगी या फिर आप कहीं और जा रही हो एक प्रोफेशनल वर्क के लिए, तो पूरा दिन ऐसे बीत जाता है, अनलाइक कोई जो मतलब ऑफिस का काम कर रहा है
0: जी।
1: तो फिर हमको टाइम किधर मिलता है बैठ कर, हमको टाइम चाहिए, समय चाहिए कि वो जो हमारा
0: ब्रीफ है उसे स्टडी कर पाओ। बिल्कुल।
1: तो फिर वो टाइम कभी कभी दिन में नहीं मिलता, फिर रात को जब शाम को हम घर पहुंच रहे हैं तो फिर समय निकालना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम कोर्ट में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, फिर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे।
0: सही बात।
1: और ऊपर से जो हमारा जो हम गुड नेम गुड विल जो हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे,
0: वो अचीव नहीं कर पाओगे,
1: नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो जैसे कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर की जिंदगी में भी उनकी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड होती है पेशेंट्स के लिए, बिल्कुल उसी तरह से मैं समझ पा रही हूँ कि वकीलों की भी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स के लिए डेडिकेटेड होती है। जैसे आप बता रहे हो कि पूरा दिन जिस तरह से भागा दौड़ी में निकलता है, फिर आपको शाम को आप चाहो ना चाहो आपको वो टाइम डेडिकेटेड
1: करना ही पड़ता है। कभी कभी सिर्फ 3-4 घंटे का ही मतलब हम समय मिलता है सोने के लिए, क्योंकि हम पूरी रात चली जाती है केस को स्टडी करने के लिए। और फिर जो हमारी फैमिली लाइफ है वो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है।
0: ऑफ कोर्स मैं समझ पा रही हूं।

0: हमारी जो हमारी पेशे में मैं ये तो मैं बता सकती हूँ और मेरे जो कलीग्स हैं वो भी बता सकते हैं कि हमारी प्रोफेशन में वीकेंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती. सैटरडे, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, दिन हो या फिर शाम,
1: या फिर पब्लिक हॉलीडेज हो,
0: पब्लिक हॉलीडेज
1: जिस दिन कोर्ट बंद होता है, पर मैं समझती हूँ उस दिन भी आपको बैठकर
0: काम करना पड़ता है
1: क्योंकि ये एक अपना खुद का प्रोफेशन है जहाँ पर आपको बैठकर बहुत सारी. और जैसे अभी ब्रीफिंग सेशन के टाइम भी हम बात कर रहे थे तो जैसे पल्लवी जी ने बताया कि हर केस अपने आप में एक अलग कहानी. और कई बार ऐसा हुआ है पल्लवी जी कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाए कि दो स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम पैरेलल चल रही हैं, तो आप उनको कैसे मतलब डिफरेंशिएट करती हैं?
0: फिर मैं अपने क्लाइंट्स को ढूंढती हूँ, उनकी शक्ल मुझे याद है क्योंकि मैं हमेशा जाने कोर्ट जाने से पहले उनसे प्रॉपर ब्रीफिंग करती हूँ, उनसे मिलती हूँ. तो ऐसा नहीं होता क्योंकि नाम से तो आपको पता चल जाएगा.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन उसके लिए भी हमको मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है.
1: बिल्कुल.
0: कि ताकि हमको मतलब एक केस के फैक्ट्स को ओवरलैप नहीं करे.
1: सही बात.
0: इसलिए मैंने मतलब शुरुआत में ये बोला था कि हमको अपने केसेस को स्टडी करना चाहिए पूरी तरह से. तो फिर अगर हम फुली प्रिपेयर्ड हैं तो ऐसी गलतियाँ नहीं हो पाती.
1: क्या पल्लवी जी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कभी हार का भी सामना किया है?
0: हाँ जी रत्ना जी, हर एक वकील के जीवन में तो
1: हार जीत
0: तो चलती रहती.
1: बिल्कुल.
0: है बिल्कुल. तो ऐसा ही अभी फिलहाल मतलब रिसेंटली एक केस था, एक असाइजेस केस था जहाँ पे हमने हार का सामना करना पड़ा.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन हम सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे. दो हफ्ते तक ये केस चला और इन दो हफ्तों में रत्ना जी मुझे ठीक से याद है शायद ही मैंने 3 घंटे मैं 3 घंटे तक सोई हूँ हर रोज़. और उससे पहले ऑफकोर्स केस प्रिपेयर करना ये भी चल रहा था. फिर हम बहुत मायूस हुए थे. लेकिन मायूस तो हुए क्योंकि हम सब इंसान ही हैं.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन एक संतुष्टि थी कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया. पूरा जो था हम सब ने सब किया. तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जो किया मतलब
1: जो बन पड़ता था
0: मैंने सब किया.
1: आपने सब किया. तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मतलब आपने जब मान लीजिए आपको क्या याद है वो पहला अनुभव जब आपने हार का सामना किया, क्या ये आपको साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है लंबे समय तक?
0: करता तो है क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि ये जो प्रोफेशन है सिर्फ हम जैसे बोलते हैं ना जो गुनहगार हैं या फिर अक्यूज्ड हैं, सस्पेक्ट हैं, लोगों को लगता है कि हम सिर्फ उनको, क्योंकि मैं तो डिफेंस काउंसल हूँ तो उनको लगता है कि हम सिर्फ जो गुनहगार हैं उनकी मदद कर रहे हैं, जो सच नहीं है. क्योंकि हम बहुत से लोग विक्टिम्स को भी मतलब अपना जो तजुर्बा है हम उनको भी उनकी भी मदद करते हैं. मान लीजिए कि अगर एक बुज़ुर्ग की मतलब उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो हम उनके साथ जाते हैं पुलिस स्टेशन, हम डिक्लारेशन में असिस्ट करते हैं. तो जो विक्टिम्स हैं वह हम उनको भी अपना पूरा योगदान देते हैं. तो फिर ये जो काम है जैसे आपने बोला तो
1: आसान नहीं, मतलब आप दोनों तरफ का देखकर, दोनों तरफ का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस के लिए आप हैं यहाँ पर, किसी को भी विक्टिम को भी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ.
0: तो फिर अगर आप देख अब अगर उनके साथ फिर कुछ गलत हो जाता है तो फिर ज़्यादा वो मतलब हमको अफेक्ट करते हैं. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ एक बुज़ुर्ग की कहानी, वो रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि किसी ने मतलब एक बुज़ुर्ग को किसी ने मारा और हमने उसको एकम्पनी किया एक डिक्लारेशन देने के लिए. लेकिन जैसे आपने खुद बोला कि प्रोटोकॉल्स होता है तो कभी कभी थोड़ा सा समय बीत जाता है,
1: ज़्यादा लग जाता है.
0: तो फिर पुलिस को एक्शन लेने में थोड़ा सा जो समय लेता
1: वो लेना पड़ता मतलब है, हो जाता है. हाँ.
0: तो उस लैप्स ऑफ टाइम में इधर जो हमारे क्लाइंट्स को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको देखकर फिर हमको बहुत दुख होता है क्योंकि उसमें हमारे हाथ बंधे हैं, जहाँ तक हम हो सके हम करते हैं, हम वकील का काम है वो

0: असिस्ट करना हमने किया, फिर बाकी का काम वो तो पुलिस फिर मैं उस केस में अपना जांच पड़ताल करेगी और उसके हिसाब से फिर डीपीपी का एडवाइस भी लेगी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन फिर हमारे क्लाइंट्स को फिर वो बहुत थोड़े परेशानी होती
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वो थोड़े जैसे नाखुश होने लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल होप खो बैठते हैं
0: क्योंकि मेरे जो मैं बोल रही हूँ मेरे केस में वो एक जो बुजुर्ग आदमी है उनको मार पड़ी है, तो मतलब वो पहले ही फिजिकली बहुत दुखी है, फिर ऊपर से फिर वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: जिसमें टाइम लग रहा है और जिसने उनको मारा है वो वहीं पे पास में रहते हैं,
1: तो ये उनको और रोज उनको देखना उनके सामने से गुजरना बिल्कुल एक तरह से एक ऐसा माहौल और उनके लिए सेफ्टी बनाए रखना सिक्योरिटी बनाए रखना, आप 24 घंटे उनके साथ तो नहीं रह पाएंगे, पर बिल्कुल ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना जल्द से जल्द उनको न्याय दिलवाना आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा जो संविधान है उसके मद्देनजर रखते हुए हमें कानून को
0: थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए,
1: बहुत बहुत धैर्य रखना चाहिए। क्या पल्लवी जी कभी ऐसा भी हुआ है कि मान लीजिए आपने जिस क्लाइंट का केस हाथ में लिया अब वो हार गया, और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आकर आप पर बरस पड़ा हो कि आपने क्या कर दिया, आपने तो मेरा केस हार दिया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, ऐसा कभी हुआ है?
0: रश्मिदना जी अभी तक तो नहीं हुआ नहीं, और उम्मीद करते हैं कि होगा भी नहीं
1: बिल्कुल, भगवान ना करे कभी ऐसा हो क्योंकि मैं समझती हूँ ईमानदारी के साथ आप अपना काम करती हैं और ऊपर वाला बिल्कुल आपको बहुत हिम्मत दे। और पल्लवी जी आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं, यहाँ पर आपके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, खासकर जब आप संविधान के इतने करीब है, कानून के साथ इतनी करीबी से आपने देखा है, तो जैसे आज के समाज में अभी आप देख रही हैं कि जिस तरह से जब आपने ज्वाइन किया और अब इतने सालों के बाद 3-4 साल के बाद आपको लगता है कि कानून में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं?
0: हाँ जी रत्ना जी, मैं जब से मैं इस प्रोफेशन में से जुड़ी हूँ मैंने तो देखा है कि जो हमारे अभी के जो अटर्नी जनरल हैं वे भी बहुत मतलब पॉजिटिव परिवर्तन ला रहे हैं, नए कानून ला रहे हैं। मैं मुझे पता है मैं बुज़ुर्ग की बात ही कर रही थी तो उसके ही हिसाब से जाएंगी, तो प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्सन्स जो एक्ट उन्होंने अमेंड किया था पिछली बार, अब नहीं बोल रही हूँ, तो जो तब उन्होंने वो उसमें जो परिवर्तन लाए थे उसके अंदर बहुत ही लोगों को प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है और अभी भी ये जारी है, जो प्रोटेक्शन है जो वल्नरेबल पर्सन्स हैं, एल्डरली पर्सन हमारे बुज़ुर्ग हैं या फिर हमारी महिलाएं हैं
1: जो डोमेस्टिक वायलेंसेस का जैसे शिकार
0: होते
1: हैं बिल्कुल,
0: तो उनमें भी उन कानूनों में भी अभी परिवर्तन
1: लाया जा रहा है बिल्कुल, मतलब बहुत काम किया जा रहा है और बिल्कुल हमारी जो देश की जनता है उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसके लिए बिल्कुल हमारा जो संविधान है इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर पल्लवी जी आपका जो सफ़र रहा है वह फैसले तो फिलहाल अभी शुरू हुआ है और बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा से आप और आगे बढ़ें क्योंकि आपने वो सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी है और ये आपको आगे तक लेके जाएगी। और जैसे आज हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितनी भी महिलाएं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं वो इंस्पायर हों, तो आप जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी जो भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, ना केवल लेडीज़ मैं समझती हूँ जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको आप अपनी तरह से क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों के लिए आपको मेंटली तैयार होना है?
0: तो पहले तो जैसे हमने बात की, ये जो प्रोफेशन है इसमें बहुत कंपटीशन है और आसान बिल्कुल नहीं है, बैलेंस करना पड़ता है अपने पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को, तो ये कठिन रहता है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ हमको पता चल जाता है कि किन चीज़ों को कैसे संभाल सकते हैं। तो फिर जो जितनी भी महिलाएं हैं जो ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहती हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप मतलब हौसला लेकर

0: पढ़ते जाओ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उल्टा हमारे इस प्रोफेशन में बहुत से लेडीज हैं, बहुत से महिलाएं
1: जुड़ रही हैं, बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी, सिर्फ मैं डोमिनेटेड नहीं बोलूंगी, हो टू एन एक्सटेंट है, लेकिन जहाँ पर मतलब अब जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत महिलाएं भी ज्वाइन कर रही हैं इन प्रोफेशन को।
1: बिल्कुल, और जैसे आपने बताया कि जितना आप पढ़ लिख कर, जितना आप अपने आप को गैदर्ड रखेंगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगी, उतना ये इस प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा।
0: हाँ जी, अपना मतलब पूरी ईमानदारी से अपना केस संभालो, लेकिन उससे पहले जहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती।
1: सही,
0: अभी तक हम भी कभी, हम पहले सोचते थे कि अभी हमारी पढ़ाई चल रही है,
1: डिग्री ले ली तो मतलब पढ़ाई फिनिश हो गई,
0: हो गई। हाँ। एक बार हमने कॉल टू द बॉ, मतलब हम हो गए, हम वकील, हमने वकील की, मतलब कॉल टू द बॉ का क्या मतलब है, शपथ लेना एज ए लॉयर। तो हमने, अगर हम, हमारे दिमाग में ये था कि वो हमने ले लिया, हमने कर दिया, तो हमारा सपना पूरा हो गया, या फिर टू एन एक्सटेंट
1: मतलब पढ़ाई बंद, अचीवमेंट थी, अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है।
0: उल्टा, हाँ। उल्टा, जब से आप मतलब आपने वो शपथ ली है, उसके बाद जो जो एक एक केस आया है या फिर मिलता है, वो उसमें ही एक मतलब पढ़ाई है, उस वही एक मॉड्यूल है। क्योंकि हमको तो मतलब जैसे हमने बात की, एक एक केस में अलग अलग अपने खुद के फैक्ट्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके हिसाब से हमको भी उनके एक्ट्स ढूंढना पड़ता है, उनका कानून ढूंढना पड़ता है, रेगुलेशंस, केस लॉस, तो वो सब पढ़ना पड़ता है, फिर जाकर हम वो केस मतलब प्रिपेयर कर
1: पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो फिर ये जो है, इस प्रोफेशन में कभी भी पढ़ना खत्म, पढ़ाई खत्म नहीं होती।
1: और मैं समझती हूँ हर एक ऐसा जो हाई लेवल का प्रोफेशन है, खासकर जैसे अब मान लिया आपका प्रोफेशन है या फिर डॉक्टर का ही प्रोफेशन ले लीजिए, तो उनको भी हर एक दिन के लिए अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है, हर एक चीज़ों को लेकर अपने आप को काम करते रहना है, तब जाकर कहीं ना कहीं आप इस मुकाम पर अपने आप को टिका सकते हैं। और आप जिस तरह से बता रही कि हर एक केस में अलग कहानी छुपी होती है, हर एक केस अपने आप से बिल्कुल ही अलग होता है, बिल्कुल ही अनूठा होता है। और जैसे आपने कहा कि ये प्रोफेशन जब आप बन जाते हैं बैरिस्टर एट लॉ, उस दिन से आपकी पढ़ाई, रियल पढ़ाई शुरू होती है। और तब आप ऑन फील्ड काम करते हैं, यानी जो भी आपने किताब में पढ़ा है अब उसको आपको प्रैक्टिस में लेना है। और मैं समझती हूँ वो एक अलग ही,
0: वो बहुत अलग है,
1: वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने जो किताब में पढ़ा है वो तो ठीक है, पर जो जिंदगी आपको तब पढ़ाती है वो बहुत ही अद्भुत होता है। और बिल्कुल आज हमारे इस कार्यक्रम में, वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड ये कार्यक्रम है, तो आप एक महिला हैं पल्लवी जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट ये शब्द आपके लिए क्या मायने रखता है?
0: वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए सिर्फ इक्वालिटी नहीं है। एक महिला को अगर आपने वो सपोर्ट दिया जहाँ पे वो अपना खुद का डिसीजन ले सके, वो अपने सपनों को साकार कर सके, उनको सेफ दिलवा सके कि हाँ वो अपनी आवाज़ उठा सके, अगर उन्होंने
1: वॉइस आउट कर सके, बिल्कुल,
0: तो वो मेरे लिए वुमन एम्पावरमेंट है।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आज, अभी भी आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत विकास कर चुका है, पर फिर भी कई घरों में, कई फैमिलीज़ में आज तक महिलाओं के ओपिनियंस को मान नहीं दिया जाता, उनके डिसीजंस को मान नहीं दिया जाता, उनको काम करने की अनुमति नहीं दी जाती, वो क्या करती हैं, क्या कहती हैं, ये मायने नहीं दिया जाता। तो मैं समझती हूँ अभी भी बहुत काम करना बाकी है, तो ज़रूर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितनी भी महिलाएँ इस कार्यक्रम को सुन रही हैं अपना कंट्रीब्यूशन, और जैसे आज कानून, आज संविधान में भी कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को वो हक देती है। कई बार हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार, कई सारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती चली जा रही हैं और वॉइस आउट नहीं कर पाती हैं। तो जैसे पल्लवी जी ने कहा कि वॉइस आउट करना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर बनती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये समाज जितना हम दबते हैं उतना वो हमें दबाता है। तो बिल्कुल ये नहीं करना है, और आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। और उड़ान की कहानी में बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति तक लगभग हम आ पहुँचे हैं। जाते जाते पल्लवी जी, हमारे ऑडियंसेस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?

0: मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा कानून की मतलब कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए.
1: बिल्कुल
0: और जो जैसे रोज़ नए नए आपने आपने जैसे बताया कि हमारे जो कानून है उसमें बहुत बदलाव आती जा रही है, तो हमेशा हमको अपडेटेड होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि कानून में कौन से बदलाव आ रहे हैं. और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरेंस ऑफ द
1: बिल्कुल
0: लॉ, सो
1: बिल्कुल
0: आपको पता है, तो इट्स
1: बिल्कुल.
0: नॉट एन एक्सक्यूज़.
1: हाँ जी
0: सो अगर आपको बाई चांस अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आपने गाड़ी मतलब
1: हाँ, स्पीड
0: स्पीड
1: लिमिट.
0: लिमिट से ज़्यादा थोड़ा सा
1: हाँ
0: चला रही हैं
1: हाँ
0: और अगर आपको एक पुलिस वाले ने रोक दिया, तो आप ये नहीं बता सकते मुझे नहीं पता था कि इधर मुझे 60 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब
1: हाँ
0: से गाड़ी चलानी चाहिए
1: जी
0: थी.
1: जी
0: ये नहीं, ये कोर्ट
1: अलाउड
0: में.
1: नहीं है.
0: हाँ
1: और ये
0: जी.
1: हम नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, ये कोई बहाना नहीं चलेगा. कानून सभी के लिए बराबर है.
0: बराबर है
1: बिल्कुल
0: और इसलिए हमको हमेशा कानून के मतलब
1: दायरे में रहना
0: दायरे
1: है.
0: में रहना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए.
1: बिल्कुल
0: जैसे कि और जाने से पहले और एक जो हमारा जो बदलाव आया है, और बदलाव नहीं बोलूँगी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है एक कानून जो ड्रंक ड्राइविंग का है.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो अगर आप अब तो टॉलरेंस लेवल तो 0 है,
1: हाँ
0: तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो 1% या फिर 0.1% भी मतलब
1: आप
0: आप
1: ड्रिंक
0: अगर अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो गाड़ी मत चलाइए.
1: बेटर बेटर उस दिन आप ना करें. जो ड्रिंक जिसने जिन्होंने ड्रिंक नहीं किया, या तो फिर कहते हैं ना, आज सभी लोग सभी के घरों में दो दो तीन तीन ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोग हैं, और हो सके तो बिल्कुल आप एक जन या दो जन ऐसे रखें जो जिन्होंने ड्रिंक ना किया
0: ना
1: हो
0: किया हो.
1: ड्राइव किए करें. बिल्कुल आप सुरक्षित रहें, क्योंकि संविधान हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी
0: सुरक्षा
1: सुरक्षा
0: के
1: के लिए
0: लिए.
1: बनाए गए हैं. और बिल्कुल पल्लवी जी आज हमारे साथ जुड़ी. पल्लवी जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच.
0: थैंक्स टू
1: और
0: यू.
1: बिल्कुल हमारी जो टेक्निकल टीम है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, टेक्निक पर हमारा साथ दे रहे हैं कविश, साथ है निज़ाम जी हमारे प्रोड्यूसर, और प्रोडक्शन असिस्टेंट है दीपशिका. उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे. हमारे जितने श्रोताओं ने बहुत ही प्यार से इस कार्यक्रम को सुना, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे. फिर मिलेंगे एक नई उड़ान की कहानी के साथ. तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को.

0: मिलते हैं अर्षिता से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, और श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। समुद्री संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और अवैध मछली

0: पकड़ने पर अधिक प्रभावी तरीके से रोक लगाना, यही वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। एल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में जहाज़ों की निगरानी दूर से और रियल टाइम में की जाती है। इसमें जहाज़ों की लोकेशन के साथ साथ उनकी पकड़ पर भी नज़र रखी जाती है। हालांकि इन नियमों को लेकर मछुआरों में पूरी सहमति नहीं है। कुछ मछुआरे इनसे जुड़ी पाबंदियों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जता रहे हैं। इन चिंताओं को दूर करने और इस डिजिटल बदलाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही नियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। चीन के 77वें गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह 1 अक्टूबर को होंगे। मॉरिशस में हालांकि इन समारोहों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। हिन फो ली क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्टलिस में इस मौके को खास अंदाज में मनाया। इस अवसर पर चीनी संस्कृति से सजी एक विशेष शाम का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती और मैत्री का संदेश भी दिया गया। मॉरिशस राष्ट्रीय कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 दिनों की एक कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया है। इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत प्रस्तावित तंत्रों पर चर्चा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस पहल को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला फ्रांकोफोनी का समर्थन प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिथुआनिया के प्रधानमंत्री ने बताया है कि रूस से संभावित खतरे को देखते हुए उनके देश ने इवैक्यूएशन की योजनाएं तैयार कर ली हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर लिथुआनिया पर हमला होता है तो उनका देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा। प्रधानमंत्री माइडाउगस सिंकेविचिस ने यह भी कहा है कि लिथुआनिया के लोग रूस की ओर से खुद को लगातार खतरे में महसूस करते हैं। इसकी एक वजह देश के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का प्रवेश भी है। उन्होंने कहा कि अगर लिथुआनिया पर हमला हुआ तो वे जवाब देंगे और वे मुकाबला करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अलग अलग संभावित परिस्थितियों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि बुजुर्ग नागरिकों को शहरों से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालने और ट्रैफिक जाम से बचने की योजना भी बनाई गई है। लिथुआनिया नेटो का सदस्य है और उसकी सीमा रूस के कैलिनीग्राद क्षेत्र से लगती है। और उन्होंने ये भी कहा कि वे ठोस खतरों का सामना कर रहे हैं। ये रोज़ाना नहीं होता है, लेकिन वे इनका अनुभव कर रहे हैं और ये उनके लिए वास्तविकता है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: On MBC Play and MBC.mu.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं और M3.

22 सितंबर आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा ये जो कार्यक्रम है इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं MBC प्ले ऐप पर भी। और आपको ये भी याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है वो होगा आज ही दोपहर की 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम का आरंभ हम करते हैं। आप सभी को बता दें कि पिछले सप्ताह जो है हिंदी दिवस मनाया गया, और हिंदी दिवस अपने आप में हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सभी जानते हैं, खासकर जो हिंदी इस भाषा से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि भाषा गई तो संस्कृति गई, तो भाषा को बनाए रखना, भाषा पर किस तरह से कार्य हो रहा है और इस भाषा का भविष्य क्या है, इन सभी विषयों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर राज शेखर जी जुड़ चुके हैं ICCR 6

0: है, लेखक है, कहानीकार है और साथ ही जो है हम कह सकते हैं हमारे सहयोगी भी है, क्योंकि हमारे रेडियो पर भी ये कार्यक्रम करते हैं हर सप्ताह
1: कहानी।
0: तो बहुत बहुत स्वागत है राजशेखर जी आपका, नमस्कार आपको,
1: आपका आभार।
0: और चलिए हिंदी की बात करते हैं तो हमारे सभी जो जितने श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं सबकी रुचि बढ़ जाती है, क्योंकि ये भाषा है ही अपने आप में जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या था?
1: जी, सर्वप्रथम मैं अपने दर्शक और श्रोतागण को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, उससे पहले जो है मैं जाना चाहूँगा कि क्यों हुई।
0: अच्छा,
1: पृष्ठभूमि पर हम जब जाते हैं, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के लिए विचार बहुत जरूरी थे आंदोलन के लिए, उसी तरह से आप देखेंगे कि मॉरिशस में भी जब 1901 में गांधी जी आए तो उन्होंने शिक्षा की बात की थी, जिसका कि व्यापक प्रभाव जो है यहाँ के जो है राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। उसके अलावा भारत में तो उनकी भूमिका अहम रही ही। तो जब वे भारत में आए तो उन्होंने पहली बार महसूस किया, केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि उस समय और भी जितने महापुरुष थे जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनके दिमाग में आया कि अंग्रेज जो हैं अंग्रेजी भाषा के साथ हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं
0: जी।
1: तो कोई एक भाषा प्रतिनिधि भाषा के रूप में होनी चाहिए जिसके मार्फत हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। जिस तरह से आज मोदी जी पूरे विश्व में हिंदी के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वही समस्या आज़ादी से पहले हमारे महापुरुषों के सामने भी थी
0: जी।
1: वही समस्या जो है आप देखेंगे कि मॉरिशस के जो महापुरुष थे, जो हमारे प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री रहे और जो राष्ट्रपिता रहे सर शिव सागर राम गुलाम जी, उनके सामने भी तो ये लोग दूरदृष्टि वाले लोग थे। तो उन्होंने देखा कि हमें यदि एक लंबी लड़ाई लड़नी है तो एक अपनी भाषा, क्योंकि अपनी भाषा इसलिए कि उसमें हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी संस्कृति है और संस्कृति का एक लंबा इतिहास है जिस पर कि हम गौरव कर सकते हैं। तो जब हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के साथ जब किसी के सामने मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो उनकी नींव को हिला देते हैं। तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहले यह महसूस किया कि गांधी जी तो गुजराती, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, उसी तरह आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक
0: तो मराठी
1: थे, लाला लाजपत राय पंजाबी उनकी भाषा थी, और ऐसे बहुत सारे मतलब चाहे वो पश्चिम बंगाल के रहे हों जिनकी मातृभाषा बंगाली थी, उन लोगों ने कहा कि नहीं हिंदी जो है एक संपर्क भाषा है तो संपर्क भाषा के रूप में हम आंदोलन करेंगे और पूरे भारतवर्ष में करेंगे। तो उससे जो है हिंदी का महत्व जो है बढ़ा, और हिंदी चूंकि इसलिए बढ़ा कि जिसे हम हिंदी कहते हैं वो कभी हिंदुस्तानी भाषा होती थी और हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा बोलते
0: थे। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा
1: है ना। तो वहाँ जो था वो दो संप्रदाय को जोड़ने वाली भाषा है, यानी एक संप्रदाय से हम आंदोलन नहीं कर रहे थे, हम दोनों लोग मिलकर आंदोलन कर रहे थे। तो हिंदी का महत्व जो है इस रूप में काफी बढ़ा। और जब देश आजाद हुआ तो बात यह हुई कि क्यों ना हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम स्थापित कर दें, घोषणा कर दें। तो संविधान सभा के सामने जो है यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समिति बैठी, 3 साल तक जो है गहन जो है इस पर चर्चा हुई, निष्कर्ष यह हुआ कि हिंदी भाषा जो है अभी विकसित उस तरह से नहीं हो पाई है, यानी सभी राज्य अभी तैयार नहीं हैं कि हिंदी में जो है कार्य कर सके। लेकिन चूंकि वह समय जो था वह समय 14 सितंबर 1949 था जबकि ये बात हुई कि क्यों ना हम हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा के रूप में हम ये करें। और 15 साल के बाद जब सभी राज्य जो है तैयार हो जाएंगे तो फिर हम हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा हम दे सकते हैं। लेकिन वो किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, लेकिन लगातार हिंदी पर बात जो है होती रही। और फिर आप देखेंगे कि 1953 में सेम जो यही जो दिवस है 14 सितंबर पूरे भारत में।

0: जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, और उस समय से हिंदी मनाने की शुरुआत जो है हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत होती है
1: जी।
0: उसका उद्देश्य यह रहा हिंदी दिवस मनाने के लिए कि लोगों को जागरूक कर सकें। देखिए हिंदी जो है कई भाषाओं की जो है प्रतिनिधि भाषा के रूप में है, उसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं जो बोलियां हैं, केवल हिंदी का विकास जो है किसी एक भाषा से नहीं हुआ। और मेरा मानना है कि जब हम मॉरिशस के भी संदर्भ में हम देखते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारे पूर्वज 1834 में, उससे पहले भी आए हैं लेकिन उसके सब बाद जब आना शुरू हुए गिरमिटिया के रूप में, तो मुझे लगता है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं 1850, तो मैं जब दोनों देश की तुलना करता हूँ तो पूरा मॉरिशस देश जो है वो हिंदी भाषा के साथ ही विकसित हो रहा है। यानी हिंदी भाषा तो विकसित हो ही रही है, साथ ही साथ जो है हमारी संस्कृति भी उसके साथ विकसित हो रही है। चाहे वो गंगा तालाब की यात्रा ही क्यों ना हो, यदि किसी को यह लगता है कि हमारी संस्कृति कैसी है और हम हिंदी भाषा कैसी है, तो उनको जो है महाशिवरात्रि में एक बार पैदल गंगा तालाब की यात्रा करनी चाहिए, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हिंदी भाषा और संस्कृति भारत से बाहर पूरे विश्व में कहीं प्रतिष्ठा जो है पाई है तो वो मॉरिशस से।
1: और अभी जितने भी हम हमारे धार्मिक पर्वों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा तो उससे जुड़ ही जाती है। अभी हमने गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया गया, जिस तरह से शिवरात्रि एक समय था एक जो है इतना जो है पॉपुलैरिटी गेन किया कि इस बड़े स्तर पर मनाई जाती है। आज गणेश उत्सव भी उतने ही बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है देश के कोने कोने में, और लोग देखने के लिए आते कि किस तरह से मनाया जाता है
0: इसे? जी बिल्कुल, देखेंगे कि जो भी हमारे भारतीय पर्व त्योहार हैं, अब हम देखिए जितनी भारतीय भाषाएं हैं उसमें सभी शब्द जो है एक दूसरी भाषा के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक भाषा है तो उसमें हिंदी भाषा के शब्द नहीं होंगे, या तमिल तेलुगु है तो उसमें भी हिंदी है या संस्कृत भाषा के शब्द, सभी भाषाएं कहीं ना कहीं मिलती
1: एक दूसरे से
0: खाती हैं, और कुछ ना कुछ लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि
1: नहीं समझते।
0: अब तो AI का जमाना है और इंटरनेट की दुनिया में जो है सभी भाषाएं बहुत करीब आ रही हैं, और हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और सभी भाषाओं के रचनाकारों से भी हम परिचित होते हैं, ऐसा है नहीं है। ये है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पर्व त्योहार है, चूंकि क्या है कि आपने जब इस कार्यक्रम की भी शुरुआत की तो आपने एक बात कही कि भाषा गई तो संस्कृति गई
1: जी।
0: जो कि यहाँ पर जो हिंदी प्रचारणी सभा है वहाँ का मुख्य जो है स्लोगन भी है, तो आप देखेंगे कि ये बात एकदम 100% सही है कि भाषा गई तो संस्कृति गई, यानी ये हमारी पहचान की बात है। और यदि हमारी प्रतिष्ठा है तो इसी कारण से है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को बचाने में कामयाब रहे हैं
1: जी।
0: और यही हमारी पहचान है
1: जी।
0: जब हम पर्व त्योहार की बात करते हैं, रीति रिवाज की बात करते हैं, या नृत्य की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो हमारे पर्व त्योहार या शादी समारोह हो, कुछ भी हो, वह न संगीत के बिना पूरा होगा न नृत्य के बिना पूरा होगा। और संगीत नृत्य में जो है हमारी
1: भाषा आ ही जाती है। हम मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं कहीं ना कहीं भाषा ही तो है,
0: बिल्कुल बिल्कुल वो हमारी जो है भाषा है। एक बहुत ही अपने दर्शक को जो है मॉरिशस के बारे में ही एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा जो ऐतिहासिक तथ्य है। जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रहलाद रामशरण जी हैं जो इतिहासकार हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि 1948 से पहले यहाँ पर केवल 12,000 ही मतदाता थे।
1: अच्छा
0: जी। और वे जो मतदाता थे वे केवल वही थे जो अंग्रेजी और फ्रेंच जानते थे या उनके पास बहुत पैसा था
1: जी।
0: तो फिर पहली बार जो है यह निर्णय हुआ जब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ थे उनके कारण जो वे आंदोलन कर रहे थे, तो पहली बार यह निर्णय हुआ कि जो भी साक्षात्कार करना जानेगा, जो भी साइन कर सकता है अपनी भाषा में, उन लोगों को जो है वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, मत देने का अधिकार मिल जाएगा। तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि 1948 में जो है मतदाता की जो संख्या है लगभग 72,000 के आसपास पहुंच गई, 12,000 से
1: 12,000।

0: से, तो देखिए कितना।
1: और उसमें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दीदी निभाया तो बैठका ने निभाया
0: जी।
1: रातों रात लोगों ने जो है हस्ताक्षर करना
0: सीखा,
1: हिंदी में ही नहीं, तमिल,
0: तेलुगु,
1: अपनी भाषाओं में। और उसी का चमत्कार है कि आज मॉरिशस देश जो है हिंद महासागर में चमक रहा है, एक ऐसे देश के रूप में जहाँ सांस्कृतिक एकता है, सामाजिक एकता है, सद्भावना है, एक लोगों के बीच प्यार है, मोहब्बत है। तो भाषा जो है, कबीरदास बोलते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो भाषा का एक दूसरे से द्वेष नहीं होता और भाषा किसी खास संप्रदाय की भी नहीं होती। भाषा वही अच्छी है जो दूसरे का दिल जीते। और हिंदी भाषा ने जो है पूरे विश्व को प्रेम के सूत्र से बांधने का काम किया है।
0: ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आज का विषय इतना दिलचस्प है, पिछले सप्ताह हम इसे करना चाह रहे थे लेकिन काफ़ी पर्व वगैरह आ गए थे तो इस विषय को नहीं लेकर आ पाए थे, लेकिन आज हमें मौका मिला तो हमने सोचा हिंदी दिवस पर बेशक हम चर्चा करेंगे। 4028085 है नंबर हमारा, अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी के प्रति आपका जो प्रेम है उस पर कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचारों को बांटना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राजशेखर जी, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो अपने आप में ये भाषा बहुत आगे निकल गई है ना
1: जी।
0: इसमें ऑब्वियसली जो भी लोग हिंदी को लेकर कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मतलब कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी लेवल तक हिंदी हिंदी, तो अब जो है कहाँ तक पहुँच गई है। और उसके अलावा जो है फिल्मों का बोले, गानों का बोले, फिर जितने कहानीकार हैं, लेखक हैं, सबका अपना अपना बड़ा योगदान है। और ख़ासकर मॉरिशस के संदर्भ में बात करें तो आप तो पढ़ाते हैं इस विषय को, तो आप किस तरह से जो है छात्रों में रुचि देखते हैं हिंदी के प्रति?
1: देखिए, आपने कई सवाल एक साथ आपने पूछ लिए हैं तो मैं धीरे धीरे सभी सवाल का जवाब देता हूँ। हिंदी का विकास जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम आप देखिए कि हिंदी कभी हिंदवी, कभी हिंदुस्तानी
0: जी,
1: कभी उर्दू, फिर हिंदी, कभी खड़ी बोली, तो कई नामों से जो है
0: जानी गई है।
1: आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो बाजार के कारण हुआ है।
0: जैसे कैसे, मतलब के?
1: जब कई जगह के लोग जब बाजार में आते हैं, अपने सामान को बेचते हैं या आदान प्रदान करते हैं, संवादों का आदान प्रदान होता है, तो एक भाषा विकसित होती है। इस पर बहुत शोध हुए हैं, तो हिंदी का निर्माण उसी रूप में हुआ।
0: अच्छा,
1: ठीक है। धीरे धीरे हिंदी आंदोलन की भाषा बनी। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पूरे विश्व की वही भाषा, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। ठीक है, भारत धीरे धीरे, आप तो जान रहे हैं, कई बार हम पांचवी अर्थव्यवस्था हैं, कभी अभी चौथी बाई पहुंचे थे, हमारा लक्ष्य अभी तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का। जैसे जैसे भारत, खास करके आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत होगी, हमारी हिंदी भाषा उसी तरह से महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। एक तो यह है। दूसरी बात जो है कि बाजार से ही जुड़ी हुई जो बात है वह है मनोरंजन
0: जी।
1: ठीक है, यानी जो बिकता है वही अच्छा है। तो सब लोगों को आजकल जो है, चाहे वो पेय पदार्थ हो या गेम हो, कुछ भी हो, उनको हिंदी में बेचना अच्छा लग रहा है क्योंकि हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है
0: जी।
1: ठीक है, तो हिंदी जो है धीरे धीरे बाजार के कारण और भी ज़्यादा भाषा विकसित हो रही है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, हिंदी में इतने अच्छे अच्छे लेखक हुए, जैसे भारत में प्रेमचंद हुए, तो मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत हुए
0: जी।
1: ठीक है, अब आप सोचिए प्रेमचंद की जो कहानियां हैं या जो उनकी रचनाएं हैं उनका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है
0: जी।
1: लगभग 65-70 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसी तरह से अभिमन्यु अनंत की रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। और यदि प्रेमचंद ने नहीं लिखा होता, वो तो आज़ादी से पहले के थे, अभिमन्यु अनंत भी आज़ादी से पहले से के रचनाकार रहे हैं, तो हिंदी के माध्यम से उन्होंने अपने दुख दर्द को सभी लोगों के साथ साझा किया है। ठीक है, अभी मुझे

0: एक संस्कृत के प्रोफेसर हैं गुरु विश्वानंद, ठीक है, कल वे लोग आपस में जो है भोजपुरी में बात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने कहा कि भोजपुरी में बात करने में जो मिठास है वह दूसरी भाषा में नहीं मिलती, ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भाषा दिल के करीब है उसमें जो बोलने का तरीका है,
1: जो आपके भाव है,
0: जो भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं
1: जी,
0: वे वह हम अच्छे से प्रकट कर
1: मतलब
0: सकते
1: कि
0: हैं।
1: अपनी भाषा यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। शायद हर कोई जो सुन रहा है अगर वो हिंदी भाषी नहीं है वो भी इस बात से सहमत हो रहा होगा, क्योंकि जब भावनाओं को व्यक्त करने की बात आती है वो अपनी भाषा में हो तो उसे हम और अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं।
0: जी, और जब आपने मॉरिशस के लेखक की बात की तो आप देखेंगे कि मॉरिशस में हिंदी एक अलग ढंग से विकसित हुई, और यही कारण है कि यहाँ पर लोक भाषा भी विकसित हुई है, लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक कथाएं भी अलग ढंग से विकसित हुई हैं। आपको पता ही है कि हमारे प्रहलाद राम शरण जी ने जो है लोक कथाओं का जो है संकलन किया, उन्होंने लिखा
1: जी।
0: जो भी उन्होंने अपने दादी नानी या जो भी बुजुर्ग लोगों से सुना उन्होंने लिखा, और वे जो कथाएं हैं बहुत ही दिलचस्प कथाएं हैं। मुड़िया पहाड़ पर है, सिंह पहाड़ कई है, परी तालाब पर है, बहुत सारी कथाएं जो पढ़ेंगे तो बहुत ही रोमांचक कथाएं हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो हम मैंने अभी अभिमन्यु अनंत के बारे में बात की ही, रामदेव धुरंधर जी हैं, फिर आप लालदेव अंचराज जी हैं, हमारे जगा सिंह जी हैं, सब ये आदरणीय हैं जिन्होंने, और हेमराज सुंदर जी हैं जो कविता के क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त जो है कई नाम हैं, हमारे धनराज शंभू जी हैं, और अभी सोमनाथ जी हैं जो यंग जनरेशन है। उसी तरह से महिला लेखिका की बात यदि आप करेंगे तो कल्पना लाल जी हैं, हमारे बाला अरुण जी हैं, इसी तरह से और भी कई हैं, सुमति जी हैं, तो बहुत सारे आपको जो है यहाँ पर लेखक और लेखिकाएं हैं जिन्होंने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, मॉरिशस के साहित्य को बनाया है, ठीक है, और ये मॉरिशस के हिंदी साहित्य का निर्माण किया है, हिंदी साहित्य का ही निर्माण नहीं किया। जबकि आप देखेंगे कि गीत गवाई का संकलन जो है हमारे जो है सरिता बुद्धू जी ने किया भोजपुरी में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उसी तरह से उन्होंने जो है विवाह पर भी जो है कन्यादान और इस तरह की जो है भारी भरकम पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें पूरे भारतीय समाज में शादी के जो रीति रिवाज हैं उसका वर्णन है, चाहे किसी भी भाषा में ये जो पद्धतियां की जाती हैं। तो ये सब मॉरिशस को कहीं ना कहीं साहित्य के क्षेत्र में अमर करता है। ये सब कालजयी रचनाएं हैं जो पूरे संसार को इनसे परिचित होना चाहिए। और आप देखेंगे कि भारत का जो दुख है वही मॉरिशस का भी दुख रहा है, इसीलिए हम दोनों देश एक दूसरे के दुख को महसूस करते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। इसीलिए भारत और मॉरिशस एक परिवार है, और हम परिवार के सदस्य हैं, हम दुख में भी शामिल हैं, सुख में भी शामिल हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद ने बहुत ही एक सुंदर पंक्ति कही है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत हिल को सूल। इतनी मैंने अपनी भाषा में जो मिठास है वही हमारी अपनी पहचान है।
1: जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अपनी पहचान को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक होता है। 4028085 नंबर हमारा, यदि आप में से कोई आज के इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। अभी के लिए एक छोटे से गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हिंदी दिवस मनाया गया, ऐसे हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को खासकर भारत के संक्षेप में मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इस हिंदी दिवस को जो है विश्व भर में मनाया जाता है। उसके अलावा जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो हिंदी को लेकर आप सोचेंगे तो साल में दो बार जो है बड़ी बड़ी गतिविधियों का आयोजन होता है और बहुत से कार्य होते हैं इस पर। और अभी के लिए अगर हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर राजशेखर जी, तो किस तरह से हिंदी को लेकर जो है मॉरिशस में प्रचार प्रसार हो रहा है, कितनी सारी संस्थाएं हैं, हम विश्व हिंदी सचिवालय की बात करें, हिंदी स्पीकिंग यूनियन की बात करें, हिंदी प्रचारणी सभा की बात करें, और अन्य संस्थाएँ जो इस भाषा को लेकर कार्य कर रही हैं।
1: जी बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था नहीं कहेंगे उनको कहेंगे व्यवस्था
0: जी,
1: वह है बैठका
0: जी।
1: ठीक है, और बैठका जो है जब यहाँ पर हमारे पूर्वज आए, और जो हमारे पूर्वज आए थे आपको पता होगा कि वे गन्ना की खेती करने के एक्सपर्ट थे। ठीक है, यानी एक विधा में वे बहुत ही उनको महारत हासिल था, और गन्ने के खेत को बनाना, फिर उसमें मिठास बोना, फिर उसकी फसल को पूरे विश्व तक पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात थी। और उसमें जो उनका दुख छुपा था वो कहीं न कहीं अपनी भाषा में वह दुख था। तो जब बैठका में आते थे तो वहाँ पर रामायण पाठ हो रहा है, संतों की वाणी सुनाए जा रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो कई लोगों को फिर लगा कि कुछ लोग जानते थे हिंदी, हस्तलिखित रामायण लेकर आए थे, कैथी भाषा में लिखित रामायण भी लेकर आए थे। अभी भी आप देखेंगे कि MGI के यदि आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पे हस्तलिखित रामायण कैथी भाषा में है। तो जब इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो उसमें दुखी दुख नजर आता है, और उस दुख का यदि कोई गवाह है तो वो है बैठका। लोगों ने महसूस किया कि क्यों ना हम अब हिंदी पढ़ना सीखें, जो हम रामायण सुनते हैं तो हम रामायण खुद पढ़ें। तो आप देखेंगे कि रामायण लोगों ने पढ़ना शुरू किया, वहाँ से हिंदी की यात्रा प्रारंभ हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और बैठका की तो थी ही। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आर्य सभा है, आर्य सभा ने एक व्यक्ति थे जिनको कि सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में मिली थी, किसी ने दिया किसी ग्वाले को, उनको उसका कोई मतलब उनके लिए प्रयोग नहीं था, यूज नहीं था, तो उन्होंने और किसी विद्वान को दे दिया, और वहाँ से जो है एक क्रांति की शुरुआत होती है कि जो हमारे जो वेद हैं, जो वेद ग्रंथ हैं, जो वैदिक परंपरा है, जब वह एक पुस्तक केवल हिंदी में लिखी हुई, हम कहते भी हैं कई बार कि भारत में विश्व की चर्चा होती है कि सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है, जो हिंदी है, वह बहुत ही अच्छी हिंदी है, और वहीं से हिंदी की शुरुआत भी कई बार मानते हैं लोग प्रमाणिक और परिष्कृत हिंदी के रूप में। तो आप देखिए कि हिंदी में लिखी हुई एक पुस्तक ने जो है क्रांति का काम किया, और

0: वेद के जो अच्छे विचार हैं वे पूरे मॉरिशस में जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ
1: जी।
0: ये देखिए कि हिंदी की ताकत
1: बिल्कुल
0: है ना। फिर आप देखेंगे कि हिंदी प्रचारणी सभा, तो हिंदी प्रचारणी सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, और वहाँ पर एक जो है पुस्तक थी दुर्गा पत्रिका, 1936 में निकली थी, बाद में उसको 3 खंड में संकलित भी किया हमारे गोयनका जी और भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के सहयोग से वह पत्रिका बनी, हस्तलिखित पत्रिका, बहुत ही अच्छी पत्रिका है। तो उसमें आप देखेंगे कि लोग गुमनाम से जो है अपना नाम छुपा के गुमनाम रूप से कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, या कुछ संदेश लिख रहे हैं, या लेख लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, अपने दुख दर्द को व्यक्त कर रहे हैं, वो भी हस्तलिखित है। उसमें पढ़ेंगे, उसमें कुछ शर्तें भी हैं कि ये किताब जो है आपको जहाँ जहाँ पत्रिका जा रही है तुरंत पढ़कर आगे बढ़ाना है। बताइए कितनी मेहनत की बात
1: जी,
0: है ठीक है। तो जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत के साथ अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का जो है प्रयास किया है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं
1: जी,
0: ठीक है जी। फिर आगे यदि और आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे रामायण सेंटर है, पूरे विश्व के कोने कोने में रामायण के अच्छे विचार को स्थापित करने में इस रामायण सेंटर का बहुत बड़ा योगदान रहा। कहीं भी 6,000 से ज़्यादा पुस्तकें रामायण पर, अलग अलग भाषाओं की जो पुस्तकें हैं वो ये कहीं भी नहीं है
1: जी,
0: यहीं पर है
1: बिल्कुल। और उसके अलावा अन्य कई संस्थाएं हैं
0: जी, आप फिर देखेंगे कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन है, अभी अंजलि चिंतामणि जी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करा रहे हैं, उससे पहले भी जो है बहुत महती भूमिका रही है। और फिर आप विश्व हिंदी सचिवालय है, जिनका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में जो है हिंदी का जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ाना है।
1: चलिए एक श्रोता है हमारे साथ, उनसे हम मिलते हैं। और आज हम पिछले सप्ताह जो हिंदी दिवस मनाया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार।
2: नमस्ते सुमी जी।
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है।
2: राजशेखर जी को भी नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: बहुत अच्छा लगा, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
1: धन्यवाद।
2: वैसे तो मैं हिंदी ज्यादा तक पढ़ा नहीं हूँ, प्राइमरी स्कूल में हिंदी पढ़ा है
1: जी,
2: लेकिन मैं गीतों के माध्यम से इंडियन फिल्म जो है जो गायक है
1: जी,
2: मैं ज्यादा हिंदी बोल सकता हूँ
1: जी।
0: जी, आप बहुत अच्छी हिंदी
2: कोई भी मिलते हैं, या नेपाली या बंगला, तो हम उनसे हिंदी में, कभी कभी वो लोग वो बोल नहीं सकते क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम उनका मदद करते हैं हिंदी के माध्यम से
1: जी जी जी,
2: अपने लैंग्वेज से
1: जी।
2: तो कभी कभी सोचते हैं कि हम उनसे ज्यादा हिंदी में बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं, थोड़ा अपना नाम याद दिला दीजिए।
2: मैं से उदय भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ उदय जी, जी जी, बहुत धन्यवाद उदय जी आपके इन विचारों के लिए।
2: मैं आपने फोन दिया, कोई फोन नहीं कर रहा है, मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं फोन लगा दूं।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल उदय जी ने जो बात छेड़ी है वो सही है। बहुत से हमारे रेडियो पर जितने श्रोता जुड़ते हैं या MBC TV जो देखते हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो हमारे रेडियो पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो गाने चलाए जाते हैं, जो फिल्में वो देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, उनसे जो है हिंदी के बारे में जो है उनकी रुचि बढ़ी, और ऐसे जाकर जो है हिंदी उन्हें सीखना या समझना उन्हें शुरू किया
0: जी।
1: तो कहीं ना कहीं MBC का भी अपने आप में हिंदी को लेकर बहुत बड़ा योगदान है,
0: बहुत बड़ा उत्कृष्ट योगदान है। और देखिए मॉरिशस एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे अलग अलग भाषा के बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, और वे बच्चे मुझसे हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। उन बच्चों ने कभी भी हिंदी में लिखा नहीं है, वे हिंदी पढ़ना नहीं जानते। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि अरे कैसे ये, तो कहते अरे मैं तो देखता हूँ फिल्म, देखता हूँ हिंदी फिल्म, देखता हूँ शाहरुख खान की फिल्म, देखता हूँ सलमान।

0: खान की फिल्म देखता
1: हूं। इस पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पर इतने साल हो गए, आपने क्रियोल नहीं सीखी या फ्रेंच नहीं सीखी। मैं कहा जब भी व्यक्ति को पता चलता है सामने वाले को कि हम भारत से हैं, तो वो सामने से ही आपसे हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभार आपको अन्य भाषाओं समझ में तो आती है, लेकिन बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ही आपसे हिंदी में बात करना शुरू कर देता है।
0: और सबसे आपको बड़ा, मुझे कई ऐसे बच्चे मिले और यंग जनरेशन भी, कि जैसे मान लीजिए मराठी भाषी है, तेलुगु भाषी है, तमिल भाषी है, ठीक है, वे हिंदी में बात कर रहे हैं
1: जी।
0: मैं आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने किसी कक्षा में बैठकर हिंदी सीखी नहीं, बैठका भी नहीं जाते हैं। बहुत अच्छी हिंदी जो है बोल लेते हैं। हमारे महात्मा गांधी संस्थान में एक प्रवासी जी हैं, तेलुगु की प्राध्यापिका हैं, बहुत अच्छा हिंदी, अच्छी हिंदी बोलती हैं, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं और भोजपुरी भी बोलती हैं, भोजपुरी में कविता भी लिखती हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो बड़ा सुखद एहसास होता है कि एक ऐसा माहौल है जहाँ पर हिंदी का इतना विकास हो रहा है और लोग मनोरंजन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, पर्व त्योहार में जो गीत संगीत का प्रयोग होता है उसके माध्यम से, या आजकल टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या कोई भी रील्स बनाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो है हिंदी फिल्मों के चलते हैं, या भक्ति के गीत जो हैं वे सब चलते हैं, तो बड़ा ही अच्छा।
1: उसके अलावा आपने अगर अभी सोशल मीडिया की बात की, तो बहुत सारे लोग अब अपनी भाषाओं में रील्स बनाना या व्लॉग बनाना शुरू किया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो सिर्फ अंग्रेजी में हम देखते थे, लोग बनाते थे, नहीं, लोग अब हम सभी भाषाओं को यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि लोग अब अपनी भाषा के जो है शायद महत्व को समझ रहे हैं या उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स अपनी भाषाओं में रील बना रहे हैं।
0: आप इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो हिंदी भाषा के जो संस्कृत के जो श्लोक हैं वो देवनागरी में हैं, तो कई लोग जब अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं तो आप देखें कि देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं
1: जी।
0: तो यह भी आजकल चलन में है, सबसे ज्यादा चलन में है कि कुछ भी ओम नमः शिवाय या कोई भी इस तरह का जो उनको पसंद है वो करते हैं। तो आप ये समझिए कि अब केवल कागजों में ही नहीं लिखे जा रहे, बल्कि जो है अब हमारे शरीर के ऊपर भी जो है देवनागरी लिपि में बहुत कुछ लिखे जा रहे हैं।
1: उसके अलावा अगर हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करें, तो हिंदी फिल्मों की बात करें, तो कभी कभार हिंदी फिल्में जो है काफ़ी वेस्टर्नाइज होती जा रही थी, एक समय ऐसा था, लेकिन अभी के समय में जैसी फिल्में बन रही हैं वो हमारे ग्रंथों पर आधारित है, हमारे जो है रिलीजन पर आधारित है, हमारे स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है ना, हमारे धर्म पर आधारित है। तो ये भी अपने आप में एक रेवोल्यूशन ही हम कह सकते हैं जो आ रहा है, जो देख रहे हैं हम।
0: बिल्कुल, आप देखिए समय के साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो धारावाहिक या फिल्में चलती हैं वो पौराणिक कथाओं पे।
1: जी, कोविड के समय जो उस समय के 80 के सालों में जो रामायण आता था उसे दोबारा चलाया गया था और लोगों ने उतनी ही दिलचस्पी के साथ उसे दोबारा देखा था।
0: जी, मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़े साहित्यकार मिले, उन्होंने मुझे बहुत ही रोचक बात बताई कि जब यहाँ रामायण का प्रसारण होता था तो अधिकांश घर में नॉनवेज नहीं बनता था, क्योंकि रामायण देखना
1: जी।
0: ये है आस्था अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति।
1: बिल्कुल, ये आप तो चलिए यहाँ पर एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार जी, प्रणाम आप दोनों को।
1: प्रणाम जी, कौन बोल रही है?
2: मैं हूँ, हम हैं नानी ब्रह्मानों से।
1: अच्छा नानी, बताइए कैसी है आप और क्या जोड़ना चाहती है आज के विषय को लेकर?
2: आपको लोग को सुन रही हूँ
1: जी।
2: देखिए, हम एगो छोकरी जन्म ले वाली शहर में।
1: अच्छा,
2: बस शहर की छोकरी तन को नहीं जानत हर कलकत्ता बच्चाई ना
1: जी।
2: तब फिर से अली सा नानी नला लगी नुबेर फॉल्स, जब अली सा नानी थाली उठल कत्या बच्चा हुए, जब बच्चा जब हमने ओ लोग के मुँह ताकब सा कुछ है कुछ बड़े थोवन सा, तो हमर माँ खातिर मामू ले रहल गो रामायण।
1: अच्छा,
2: तो रोज हमर रामायण पढ़े, बकर माँ तब बुने चल गल छोटे छोटे रही से, तो हमर माँ चल गल जब नाना रामायण लेके हवे रामायण रोज एगो रामायण पाठ करी, तीन गो लेकर रही तीन गो बेटी लेकर,

0: ti ham ni ke sunai na na ke che mar mangga wa ja ha ya ja ja ramayan ham ro ti ham mar ma ke ramayan le ke dekh ko ja ta sikle li chi tar ke hai le ke ke sikle li ram hai li ke ke
1: ji
0: ta kal le kal le apne mane ab od tak khub kuch re answer rajo embe se sunne ke bakir ka कमती मिला था आप तो सुनते सुनते सुनते थे आपने मने लगली सब लिखे सब पढ़े सब बच हम से ना जब बोली कराही हम बोली कुछ हाँ पराही नहीं जानो कुछ हाँ पापा बामर बाप तो कहा गया पापा पराही नानी बोला था पराही नो आज मैं नानी दिया तब कौन तब आपने मने रोज के रामायण लेके हम पर हमारी माँ तो एक आदमी है वही ना हम किसी मन कर रहा था कि नाना नानी बच्चिया लगाई आप तो घर जाने ला एको गांव की बार एको फल एक बस हुए एक केशनो करके चुरबा फलवा खाए के और उसने सीख ली लपकली कैसे हिंदी बच्चा के कैसे भोजपुरी बच्चा के और हम बड़ी खुशी ला भोजपुरी बच्चा के और हिंदी बच्चा के और सब लड़का से कहाँ जाएगा और कैसे हिंदी बचाईला।
1: बहुत धन्यवाद नानी अपने इन विचारों को हमारे साथ बांटने के लिए, अपने इस अनुभव को हमारे साथ बांटने के लिए। चलिए शेखर जी, हमारे जो है कार्यक्रम का समय भी काफ़ी कम रह गया है, और हिंदी को लेकर कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे इस भाषा को लेकर?
2: अभी जो है जो हमारे साथ जो सम्मानित महिला जुड़ी थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कलकतिया
1: जी
2: भाषा का। हाँ। ये शब्द जब मैंने सुना जब मैं सरिता बुद्धू जी से एक दिन बात कर रहा था तो उन्होंने कलकतिया भाषा का जिक्र किया था, तो मेरी बड़ी
1: मेरी भी दिलचस्पी थी कि इसे क्यों ऐसे कहा जाता है।
2: जो मतलब कलकत्ता से लोग आए थे हमारे गिरमिट प्रथा के अंतर्गत, तो इसलिए जो भाषा बोलते थे तो मतलब भोजपुरी का ही एक रूप जो है रहा है, रूप क्या समझिए कि उसी को एक अलग नाम से गिरमिटिया लोगों के समय में उस समय इस तरह से बोलते थे। तो देखेंगे कि भाषा की जो यात्रा होती है वह बहुत ही दिलचस्प यात्रा होती है, और यहाँ पर एक जो है डॉक्टर मनीलाल आए थे, और डॉक्टर मनीलाल ने जो है 1909 में एक द हिंदुस्तानी करके एक अखबार की शुरुआत की थी, और यह भारत से बाहर पूरे विश्व में हिंदी भाषा में निकलने वाला पहला अखबार था। ये एक बहुत ही रोचक बात थी। यानी देखिए क्या कहते हैं कि हम एक उदाहरण पेश करते हैं समाज के सामने में, और फिर धीरे धीरे उसी नींव पर जो है समाज का निर्माण होता है। कैसे मैंने आपको कहा कि एक अखबार है द हिंदुस्तानी, वहाँ से पत्र पत्रिका की शुरुआत होती है, उसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश पर जो है एक आंदोलन की ही शुरुआत होती है, और लोग अपने वेद के प्रति रामायण के प्रति आस्था थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि रामायण के साथ साथ और भी जो वैदिक ग्रंथों में बात कही गई हैं, जहां हमारे संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वे सब जो है लोगों को जानने का मौका मिला। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कह रहे थे कि मैं और क्या कहना चाहूँगा, तो एक स्वामी विवेकानंद जी से तो हमारे युवा वर्ग हमेशा जो है प्रभावित होते हैं। देखिए अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान होता है, कहते हैं कि हमारी भाषा हमारी पहचान हमारा गर्व, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरी भाषा से घृणा या नफरत करते हैं। यदि आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं तो आप उतना ही ज़्यादा दूसरे की भी भाषा का सम्मान करते हैं और उनकी संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। यही भाषा हमें सिखाती है। जब 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद हो रहा था, तब स्वामी विवेकानंद जी जो है उसमें भाग लेने के लिए गए, तो एक अमेरिकी पत्रकार जो है उनके पास आया और उन्होंने कहा कि हाउ आर यू स्वामी जी। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो उस पत्रकार को लगा कि हो सकता है कि स्वामी जी भारत से आए हैं तो उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने जब पूछा तो उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया। तब इस बार जो है उन्होंने जो है टूटी फूटी हिंदी में पत्रकार ने पूछा कि आप

0: देखो कैसा लग रहा है, ये कैसा देश है, तो स्वामी जी ने कहा कि आई एम फीलिंग वेल, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तब उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, तो फिर पत्रकार को ये अचंभित हो गया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब मैंने उनको अंग्रेजी में पूछा तो हिंदी में जवाब दे रहे हैं, जब मैंने हिंदी में पूछा तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं स्वामी जी, तो स्वामी जी की बात सुनिए। स्वामी जी कहते हैं कि जब तुमने अंग्रेजी भाषा में मुझसे सवाल किया तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं भी अपनी मातृभाषा में जवाब दूं।
1: जी।
0: जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया हिंदी में जब पूछा, तो फिर मेरा भी यह फर्ज बनता था कि आपकी मातृभाषा का मैं सम्मान करूं, इसीलिए मैंने आपको अंग्रेजी में जवाब दिया। यह है अपनी भाषा और संस्कृति का उद्देश्य और महत्व।
1: चलिए लगभग हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। डॉक्टर राजशेखर जी, कोई संदेश देना चाहेंगे सभी को जो इस समय हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं?
0: जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो खास करके मॉरिशस के लिए, कि जो सर शिव सागर राम गुलाम जी का उद्देश्य था, उनका जो संदेश था, वे जो चाहते थे कि देश जहाँ पहुँचे, देश वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है, वे भी चाहते थे कि अपनी भाषा को आप बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। बहुत ही कर्मठ इंसान थे, सभी जगह वे जाते थे और सभी संस्थाओं में और बच्चों को प्रोत्साहित करते थे, बच्चों के बहुत करीब थे। तो जो वे चाहते थे उनके उद्देश्य को हमें पूरा करना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि पूरा मॉरिशस जो है उन्हीं उद्देश्यों पर आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मॉरिशस देश जो है हिंद महासागर के नक्षत्र में एक चमकता हुआ सितारा अभी भी है, आगे भी रहेगा,
1: और
0: पूरे विश्व के लिए जो है यह एक उदाहरण के रूप में एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ देश है जहाँ सभी लोग, सभी भाषा के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर लगभग 13 से ज़्यादा भाषाएं लोग बोलते हैं, और भी लोग अलग अलग भाषाई क्षेत्रों से आते हैं और यहाँ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो ऐसे माहौल में एक यहाँ पर सद्भाव का माहौल है, यह बहुत ही सुखद एहसास दिलाता है।
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजशेखर जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हिंदी भाषा को लेकर इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ बांटने के लिए, और साथ ही जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम और टेक्निकल टीम का, हमारे प्रोड्यूसर निज़ाम जी रहे हैं और टेक्निक पर हमें फैज़ान का सहयोग मिला, साथ ही हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

का एक प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के लिए मॉरिशस में आया है इस संदर्भ में। इस दौरान SOS चिल्ड्रंस विलेज बुबासे में उनका स्वागत किया गया। इस दौरे का मकसद स्थानीय स्तर पर शुरू की गई उन पहलों को समझना है जो बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ SOS गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। चीन के 77वें गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह 1 अक्टूबर को होंगे मॉरिशस में। हालांकि इन समारोहों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। हिन फो लिन क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्ट

में इस अवसर पर इस अवसर को खास अंदाज में मनाया। इस मौके पर चीनी संस्कृति से सजी एक विशेष शाम का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती और मैत्री का संदेश भी दिया गया। समुद्री संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और अवैध मछली पकड़ने पर अधिक प्रभावी तरीके से रोक लगाना, यही वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। एल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में जहाजों की निगरानी दूर से और रियल टाइम में की जाती है। इसमें जहाजों की लोकेशन के साथ साथ उनकी पकड़ पर भी नजर रखी जाती है। हालांकि इन नियमों को लेकर मछुआरों में पूरी सहमति नहीं है। कुछ मछुआरे इनसे जुड़ी पाबंदियों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जता रहे हैं। इन चिंताओं को दूर करने और इस डिजिटल बदलाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही नियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, हम 4 महीने और 2 और 9 दिन के बाद दुनिया की 2 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति फिर मिल रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच 14 मई 2026 को मुलाकात हुई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन दौरे पर गए थे। इस बार अंतर सिर्फ इतना ही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत वॉशिंगटन में होगा, जो 23 से 25 सितंबर 2026 तक अमरीका की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर जा रहे हैं। दोनों राष्ट्रपतियों की मुख्य मुलाकात 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता अमेरिका चीन संबंधों से जुड़े अहम मुद्दों के साथ दुनिया में शांति और विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। हालांकि मुलाकात का पूरा विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का हम प्यार भरा स्वागत करते हैं। ये है आपका RM3 रेडियो मनोरंजन और लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये जो सफ़र है डेडिकेटेड है एक ऐसे एक्टर के नाम जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड है और बॉलीवुड का सबसे जाना माना चेहरा है। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे डेडिकेटेड है सलमान खान पर।

कभी प्रेम बनके रोमांस किया, कभी चुलबुल पांडे बनके दबंग अंदाज दिखाया, कभी बजरंगी बनके इमोशंस को टच किया और कभी अपनी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से बस इतना प्रूव किया कि स्क्रीन पर सलमान तो बस सलमान खान ही है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है सलमान खान के नाम, उनकी कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स आप तक

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

जी हाँ दोस्तों, अगर सलमान खान की फिल्मोग्राफी देखी जाए तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। आज हम उन्हें एक्शन और लार्जर देन लाइफ रोल्स के लिए एसोसिएट करते हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत रोमांस के साथ हुई, फैमिली एंटरटेनर्स के साथ हुई। मैंने प्यार किया सलमान खान की ऑलमोस्ट फर्स्ट फिल्म्स रही जहां पर वो एज हीरो नजर आए, और इसी फिल्म के साथ वो घर घर तक पहुंच गए। प्रेम का कैरेक्टर सिंपल था, इनोसेंट था और चार्मिंग भी था, और सलमान खान का नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस और ये जो कैरेक्टर था वो सबके दिल में बस गया। तो चलिए अभी के लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

और चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान की. आप भी हमारा साथ निभाइए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. नेक्स्ट आवर में उनकी कुछ और डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे. परी का साथ है शाम के 6 बजे.

डियर फ्रेंड्स आपका हम वार्म वेलकम कर रहे हैं। ये है आपका अपना प्रोग्राम आपके सितारे, और जिस सितारे को आज हम चुनकर लाए हैं उनका नाम है सलमान खान, या कह सकते हैं वन एंड ओनली सलमान खान। तो उनकी कुछ बातें आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे, उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, और साथ ही उनके कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

दोस्तों सलमान खान की फिल्म्स की अगर हम बात करें तो हम उनके फिल्मों के म्यूजिक को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके करियर के ऑलमोस्ट हर फेज में सॉन्ग्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। मैंने प्यार किया का रोमांस, हम आपके हैं कौन का फैमिली सेलिब्रेशन, हम दिल दे चुके सनम का इंटेंस रोमांस, तेरे नाम का हार्ट ब्रेक, वॉन्टेड वाला एटीट्यूड, दबंग का देसी स्वैग, और कह सकते हैं कि हर एक दौर में हमने उनके गानों को, उनकी फिल्मों के गानों को बहुत एंजॉय किया। तो आज इन्हीं गानों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सलमान खान स्पेशल। यह है आपके सितारे ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

और जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही देखते देखते अब हमारे इस शो का अंत आ चुका है। दिस वॉज अ स्पेशल ट्रिब्यूट टू आर सुपरस्टार द एक्टर द एंटरटेनर सलमान खान। मैं हूँ परी और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप भी हमारे हमसफर बने तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही चलते चलते एक बार फिर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन साथ निभाते रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन का।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ. हमारी धरोहर.
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा. आज हमने सुयाक पर चर्चा करब जा. सावान इलाका के पो सुयाक के नाम 1787 में देवल गल बा, 1787 में. ई जो न पोर्ट बा रिविया सावान, जहां समुंदर से मिलेला, हुआ पर पावल जाला. पो सुयाक नाम लिल दो फ्रांस जो न आगे मॉरिशस के नाम रहल, ओकर गवर्नर फ्रांसवा विकोंट दे सुयाक के नाम पर रखा गल बा. फ्रांसवा विकोंट दे सुयाक 1789, मतलब कि 1779 से 1787, 1787 तक लिल दो फ्रांस के गवर्नर रहलन. अपन मैंडेट के अंत में ई

0: दरगाह के उ अपन नाम देलन एकर से आगे बेदुसुयाक ब्रा दे मेयर दे ला सावान नाम से जानल जात रहल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एकर नाम कांटों दे ला सावान रखा गल सुयाक 1775 तक प्लेन विलियम्स पर निर्भर करत रहल और 1787 तक ग्रांपो पर भी 1803 में ग्रां सावान और पिचित सावान के विभाजन करा गल सुयाक के मृत्यु 1803 में अपन महल में हो रहल और एकर संगे ही मेजों दे सुयाक के रोशनी बुझकल समझकल हुई बा मेजों दे सुयाक ई उ गवर्नर के नाम रहल लेकिन उनकर नाम आज भी हमने के देश में दक्षिण इलाका में लेवल जाला और फ्रांस के सुयाक शहर में भी 1729 में सुयाक के तीन गो कॉन्सेशनियर रहल इमे रिविया डू पोस्ट रिविया ड्रागों रिविया डू टाबा और रिविया डेज एंगी भी शामिल रहल लेकिन बहुत समय तक सावान इलाका के ऐसे ही छोड़ देवा गल ओके नेग्लिजे कर देवा गल यहाँ पर जो निवासी लोग हवन जा वो लोग बहुत कमती रहत रहलन सा कहे कि यहाँ के जो इलाका बा वो थोड़ा उबर खबर रहल जोन एकमात्र निवासी यहाँ रहत रहल वो रहल एस्क्लाव मारों लोग और ई लोग के हमला के वजह से यहाँ कोई नहीं रहे कहे कि एस्क्लाव मारों के आसपास जे तू जेबा तो वो लोग समझन जा आप उनकरा पकड़े आवत हवा तो वो लोग हमला कर देवत रहलन सा अब उधर जिसे 1724 में रिविया जू पोस्ट के मिलिट्री पोस्ट पर ये लोग हमला करे लगलन सा जेकर बाद पड़ल ई इलाका के छोड़ देवे के खाली दुगो कॉन्सेशनिया के परिवार यहाँ पर 1731 तक रहल रहलन सा और 1771 में जमीन के कॉन्सेशनिया के संख्या अब बढ़े लगल और बेलोम्ब्र में बसेरा शुरू हुई लगल और पो सुया के विकास के विचार आल ताकि लकड़ी के व्यापार सकत पोटलुई तक होवे साथ ही खाना पानी के जो ढोवे के काम बा ओकर आवाजाही हिये से शुरू हो लगल और यहाँ पर कितने ऐसन दुर्लभ गांछी मतलब बहुत गौ पावे जाई होला गांछी के लकड़ी यहाँ खूब काटल गल लेकिन विकास तब होल जब बनारस में ईख के खेती यहाँ पर हो लगल ई खेती से पोसुया के इकोनॉमी के गति मिलल 1780 में लारक और लुडवी बहुत यहाँ पर बनल और ई पोसुयाक में ओकर जो व्यापार बा यहाँ से हुआ ले जाए के ई काम चलल सावन इलाका में एगो नाम प्रचलित हो लगल उबखत जेकर बड़ा परिवार हुआ पर बस गैलन सा और उ रहल जीजे से मौते जे 1787 में कॉन्सेशनिया बनल सुयक के पश्चिम में एगो नदी के नाम भी इनकरे नाम पर रखा गल से मौते और हुआ पर कितने नदी बा और से मौते ई सब के गिनती में जोड़ देवल गल सुयाक के जन ऐतिहासिक जगह बा जन हमने के धरोहर में गिनल जाला ई पर काल बतियाब जा और आपके जानकारी देव अब जा अभी खातिर इतना ही धन्यवाद नमस्ते
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर

वन और गैर कानूनी मछली मार गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी संघर्ष ये वेसल मॉनिटोरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। अल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर में दूर से लेकिन वास्तविक समय की निगरानी की जाती है, जिसमें जहाज़ों की स्थिति और मछली मार की ट्रैकिंग दोनों शामिल हैं। हालांकि मछुआरे इन नियमों को लेकर सहमत नहीं है, कईयों को कुछ शर्तों से आपत्ति है। अधिकारियों के अनुसार इन आशंकाओं को दूर करने और डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया तेज करने के वास्ते जल्द ही नियमों में संशोधन किए जाएंगे। ड्रग तस्करी की जांच के सिलसिले में हिरासत में ली गई एक फ्रांसीसी महिला का कहना है

0: कि वह एक पुलिस अधिकारी की मदद से आधी रात को सुरनाग पुलिस स्टेशन में अपने सेल से बाहर निकली और फिर उस अधिकारी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसका कहना है कि ये सब आपसी सहमति से हुआ था। MCIT इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कई सवाल उठते हैं। हिरासत में रखी गई कोई महिला अपने सेल से बाहर कैसे निकल सकती है और इस बारे में कानून क्या कहता है, इस पर हम फिर से पुनः वापस आएंगे। एक राष्ट्रीय कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क स्थापित करने की दिशा में मॉरिशस तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 में शामिल मेकानिज्म पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ सरकारी अधिकारी और कई अन्य साझेदार 4 दिनों की एक कार्यशाला के लिए एकत्र हुए। मकसद रहा देश में जलवायु से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाना। इस पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्रांकोफोनी संगठन का समर्थन प्राप्त हुआ है। मॉरिशस में गिनी गणराज्य के नए राजदूत मोरीबा आले ने इस सोमवार दोपहर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मविगो कुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के कई क्षेत्रों पर केंद्रित रही।
1: मॉरिशस और गिनी के बीच एक संयुक्त आयोग कायम किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है और प्रोग्राम्स कायम करने में आसानी प्रदान करना और समान परियोजनाएं कायम करना है। इस पहल से दोनों देशों को अपने अनुभव बांटने और सहयोग मजबूत करने का मौका मिलेगा। मोगिबा आले को ने कहते हैं, गिनी को मॉरिशस से बहुत कुछ सीखना है। मैं अफ्रीकी देशों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान और सहयोग पर विश्वास करता हूँ। मॉरिशस के पास कई सेक्टरों में अनुभव है, जैसे पर्यावरण, मत्स्य उद्योग, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन, कृषि, फाइनेंस आदि। हम चाहते हैं कि वो गिनी के साथ अपना अनुभव बांटें।
2: La pêche, l'économie bleue, comme le tourisme, comme l'agriculture, comme les finances, pourraient éventuellement partager l'expérience avec la Guinée, qui a également beaucoup d'expérience en matière minière.
1: मॉरिशस के लिए नामजद होने से पहले मोरीबा आले कोने दक्षिण अफ्रीका में गिनी गणराज्य के राजदूत थे। उन्होंने न्याय मंत्री का पद भी संभाला है।
0: पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं सालगिरह का आधिकारिक जश्न 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मॉरिशस में समारोह पहले ही शुरू हो चुका है। हिन फो ली क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्ट लुइस में इस मौके पर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें चीनी संस्कृति की झलक दिखाई गई, पारंपरिक प्रस्तुतियां हुई और मॉरिशस व चीन के बीच दोस्ती का संदेश दिया गया। प्रियंका की रिपोर्ट पर करुण लालू का विवरण।
3: ड्रम, लायन डांस और पारंपरिक नृत्य हिन फो ली क्वान सोसाइटी मॉरिशस के सबसे पुराने हक्का संगठनों में से एक है, जो 150 साल से ज्यादा समय से मॉरिशस में चीनी संस्कृति और विरासत की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। आमेन लिम्फाक ने कहा, चीन गरीब देशों की मदद के लिए तत्पर है। चीनी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में मल्टीपोलर विश्व का उल्लेख किया है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 77वीं सालगिरह के मौके पर संगठन ने अपने सदस्यों को इकट्ठा किया। पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का जश्न मनाया गया, लेकिन संस्कृति से परी चीन मॉरिशस का एक अहम साझेदार है। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा, मित्रता का मतलब उस वक्त मौजूद रहना है जब एक देश को मदद की जरूरत हो। 2019 में जब मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में शागुस के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग की थी, तो चीन हमारे साथ था। पेयिंग ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बढ़े हैं और ठोस सहयोग भी बढ़े हैं। मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को लेकर भी चीनी समुदाय की अहम भूमिका है। एक शाम जो 150 से ज्यादा सालों की विरासत, हस्तांतरण और योगदान को दिखाती है, साथ ही मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती के रिश्तों का जश्न भी मनाती है।

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि जोरदार चक्रवाती तूफान दुजो ने जापान में काफ़ी तबाही मचाई है। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों पर एक विशेष रिपोर्ट अदिति अवतार की ओर से।
1: जापान में जोरदार चक्रवाती तूफान दुजुआन के प्रहार से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। टोक्यो के आसपास हजारों घर बिजली सेवा से वंचित रहे। मूसलाधार बारिश के चलते कुछ इलाकों में बाढ़ उतर आई और भूस्खलन हुआ, जिससे 6 लोगों के लापता होने की भी खबर है। उनकी तलाश के लिए कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। आज सुबह दुजुआन जापान से दूर हटकर प्रशांत महासागर में पहुंचा, जिससे जापान में सभी चेतावनियां हटा दी गई। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस बुधवार से ईरान की सभी विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बैन की जा सकेंगी। साथ ही वॉशिंगटन ने उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी धमकी दी है जो ईरानी एयरलाइंस को सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रख रही हैं। ईरान की अर्थनीति को कमजोर करने के उपायों के तहत अमेरिका ईरान के ऊर्जा, शिपिंग, टेक्नोलॉजी, गोल्ड तथा डिजिटल एसेट सेक्टरों को भी निशाना बनाने का दावा कर रहा है। G7 देशों ने यमेनी हूती विद्रोहियों से सऊदी अरब के खिलाफ हमले रोकने की मांग की है और साथ ही रियाद के प्रति समर्थन जताया गया है। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में सऊदी अरब पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। इन देशों के नेताओं ने ईरान से हूती विद्रोहियों को गलत समर्थन देने से पीछे हटने को कहा है। साथ ही यूके ने सऊदी अरब को सैन्य सहायता पहुंचाए जाने की कटिबद्धता भी जताई है। अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड आज एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये संधि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान तय होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा की स्थायी जिम्मेदारी मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 प्रमुख न्यूज एजेंसियों CNN, पॉलिटिको और MS नाउ पर बैन लागू किया है, जिसके जवाब में कई अन्य मीडिया नेटवर्क्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को कवरेज देने से साफ मना कर दिया और इस मामले को अदालत में घसीटा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैन के पीछे इन मीडिया हाउसेस द्वारा फेक न्यूज फैलाए जाने का कारण बताया। दूसरी तरफ आज से व्हाइट हाउस ट्रंप TV की लॉन्चिंग कर रहा है, जो 24 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति को कवरेज देगा।
0: बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारी की ओर। आम हालत, पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज रात से प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह पूर्व दक्षिणों सरपातों पर बादल घिराएंगे और कुछ देर के लिए सामान्य रूप से थोड़ी वर्षा होगी। दिन में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सरपातों वाले इलाकों में बादल विकसित होंगे और रह रहकर बारिश होगी तथा अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। हवा रात के दौरान हल्की बहेगी और कल दिन के दौरान पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और कल दोपहर बाद धीरे धीरे खराब होता जाएगा। दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की लहरें उठेंगी। समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंट्रल पर सामान्य से थोड़ा ज्यादा 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, कल 23 सितंबर 2026 को इक्विनॉक्स होगा, यानी जब उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में यानी हेमिस्फीयर में दिन और रात दोनों का समय सामान्य अवधि का होता है। आज सूर्यास्त शाम 6:05 पर और कल सूर्योदय सुबह 5:59 पर।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम अब शोक समाचारों की ओर।

Shok sa qa sinje, Zhilbia Jason Street u kulime, Zhilbia Jason Street u kulime, 92 साल की 92 years old की श्रीमती गौरी गनु पैदा शंपादिया और जिन्हें पर्वत के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके बेटे तासैन गनु के घर ओकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टुमोरो एट 2:30 PM Avenue Rose Verde में 64 साल की 64 years old की श्रीमती रामबावती अनमोल पैदाश नाम दिगंबर और जिन्हें कविता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके पति श्री दनेश अनमोल के घर वैद्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तों की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमोरो 1:30 PM ओ एस ए स्कूल लेन बोनाक्यू में 65 साल के 65 years old के श्री नारद कैंताल जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:45 पर उनकी पत्नी श्रीमती शामिला कैंताल के घर बोनाक्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुमोरो एट 11:45 AM बालिसों रोजबेल में 90 साल की 90 years old की श्रीमती सुपामा दोगासामी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे राजेंद्र दोगासामी के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM बारन लेन बेलेरिव्यसेश में 62 साल के 62 years old की श्री धर्मराज ओजाइब जिन्हें संजय दत्त के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स कांपुरन पोस्ट डिफ्लैक में 61 साल के 61 years old की श्री विजय आनंद गजाधर जिन्हें भीम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे अविनाश गजाधर के घर पोस्ट डिफ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचक की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुमोरो एट 2 PM एवेन्यू मुताई लाबुट में 78 साल की 78 years old की श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदाश नाम चेदी और जिन्हें जेल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी गुरुवार को सुबह 11 बजे उनके घर लाबिच से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज ले सालीन की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन ऑन थर्सडे एट 11 AM डोमेन जुमूलैन गुडलैंड्स में 55 साल की 55 years old की श्रीमती देवी गोविंदन पैदाश नाम मुकैन और जिन्हें मालिनी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे योवन गोविंदन के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमोरो एट 1 PM मोदेजिया वाकुआ में 29 साल के 39 years old के श्री रिकेश बिलाव की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती आरती बिलाव के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM बालिसों रोजबेल में 90 साल की 90 years old की श्रीमती सुपामा दोगासामी पैदाशाम पाइनी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमोरो 10 AM एम पास सहाय रुथ रॉयल गुडलैंड्स में 91 साल की 91 years old की श्रीमती धुनवंती सहाय जिन्हें पति के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी

आज दिन के 2 बजे उनके बेटे गोई दामरी के घर गुडलैंड से उठाकर बुआगूज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई गई। अंतिम संस्कार के लिए क्रीमेटेड टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है। Your news on NBC Play.

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Nee so. शाम के ठीक 6:30 बजे हैं और वक्त है नई सोच का। दिन भर जो पुराना था उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अब शुरुआत है एक नई कहानी की, नई उम्मीद की। मैं हूँ आपका अपना दोस्त किरण और आप सुन रहे हैं नई सोच रेडियो मनोरंजन पर। जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म सर से लिया गया यह गाना आप सभी के नाम, जो इस वक्त ड्राइव करते वक्त या फिर घर पर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

यह शाम का वो समय है जब दिन थक जाता है लेकिन सपने नहीं। इस समय 6:40 हुए हैं और ये वक्त हुआ है अपनी सोच को एक नया मोड़ देने का। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम नई सोच में। आज मैं किरण आप सभी का साथ दे रही हूँ इस कार्यक्रम में, और अगला जो गज़ल चलेगा वह फिल्म डैडी से लिया गया। इस गज़ल की मांग अक्सर होती है और इसमें आवाज़ें हैं तलत अज़ीज़ का और दिलराज कौर का, कभी ख्वाब में या ख्याल में। ये गाना, ये गज़ल आप सभी को पसंद आएगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है।

आज तारीख है 22 सितंबर और मंगलवार की शाम है। इस वक्त आप थके हारे घर लौट रहे होंगे और आप में से बहुत लोग अभी इस वक्त रास्ते पर होंगे। और हर शाम जो होता है वह एक मौका होता है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। हमारा साथ रहेगा अभी से 7 बजे तक प्रोग्राम नई सोच में, और इसके बाद हम आपका साथ देंगे दिलों की आवाज़ में रात के 9 बजे तक।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: शाम के 7 बज रहे हैं और ये वक्त है दिन का नहीं बल्कि दिल का। जो बात आप दिन भर किसी से कह नहीं पाए, आइए उसे आज इस वक्त दिलों की आवाज में कहते हैं। और आपके मनपसंद प्रोग्राम दिलों की आवाज में आपके ही पसंद के गाने चलेंगे। कुछ ऐसे गाने जिससे दिल के तार दूसरे दिल के तारों को झंझकृत करके रख दें। पहला जो गाना है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, कहीं न जा। तो कहीं मत जाइए, रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े रहें। अभी से 9 बजे तक का हमारा सफ़र रहेगा और मैं आपका साथ देती रहूँगी। तो चलिए इस अगले गाने का एक साथ आनंद उठाते हैं।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: शाम के ठीक 7:10 हुए हैं और हमें इस वक्त आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं, प्यार के साथ आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी हैं जो हमें सुन रही हैं और पोम्पलोमूस से सचिन जी हैं, उधर वाकवा से हमें हमारा साथ दे रही हैं सुदेवी जी। और ये गीत आप अपने पूरे परिवार के नाम, अपनी दीदी ललिता के नाम, सुनीता, देवीना और केशनी, प्रणीता, पूरे रामरतन और कतौरू परिवार के नाम गीत नाम करना चाहती हैं। और जितने भी लोग हमें बस सुन रहे हैं, न मैसेज भेजेंगे न फ़ोन करेंगे, बस प्रोग्राम का पूरा आनंद उठाएंगे। अगला गाना आपके नाम, जो SP बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में होगी। न दिन की बात है न रात की, ये बात है दिलों के जज्बात की। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो है दिलों की आवाज़, और यह सिलसिला चलेगा रात के 9 बजे तक।

आप अभी भी हैं दिलों की आवाज़ में। अगर इस वक्त आप डिनर के लिए तैयार हो रहे हो या डिनर तैयार कर रहे हो तो हमारी ओर से आपको शुभ आहार। और आप में से बहुत लोग अभी घर वापस आ गए होंगे, जो कोई लोग अभी फंसे होंगे कहीं कहीं पर, ट्रैफिक अभी भी कुछ बनी रही होगी, तो आप थोड़ा सा और सब्र कीजिए, थोड़े ही देर में आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और कहते हैं जहां लफ्ज कम पड़ते हैं वहां एहसास ज़्यादा होता है, तो एहसासों की दुनिया में आप थमे रहिए। अगला जो गाना चलेगा वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है।

इस वक्त आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज रेडियो मनोरंजन पर और हमारे सिलेक्शन आपको पसंद आ रहे हैं ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है। इस वक्त हमें सुन रहे हैं रोशनुआ से दारेन, स्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा और अपाजू परिवार। आप सभी के नाम ये अगला गाना सुरेश वारकर की आवाज में, धड़कन जरा रुक गई है।

प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, यह फिल्म वो सात दिन से, वो सात दिन फिल्म से यह गाना लिया गया था। और इसी फिल्म को फिर से जब प्रस्तुत किया गया तो उसका नाम क्या है ये तो आपको पता ही होगा। इसमें अजय देवगन और एक बहुत ही मशहूर हीरोइन भी थी। कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है। और अगला जो गाना चलेगा अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म धड़कन से लिया गया। अक्सर इस दुनिया में दिल वाले मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं।

फिल्म कामचोर से लिया गया ये गाना था. अगला जो गीत चलने वाला है वो अरिजीत सिंह की आवाज़ में जानिसार, और ये गाना आप सभी के नाम जो कि बहुत प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. और अभी से लगभग 45 मिनट का हमारा सफ़र बाकी है, सुनते रहिए दिलों की आवाज़.

0: दिलों की आवाज, की आवाज,
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में अभी हमारा और लगभग आधे घंटे का सफ़र तय है और आप जिस प्यार के साथ हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना आप सभी के नाम किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सागर से लिया गया, सागर जैसी आँखों वाली।

रात्रि के 8:53 हुए हैं और वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। दिल की बातें तो बहुत सी बाकी हैं, पर आज के लिए इतना ही। जो दिल में है उसे कह दीजिए, कल का इंतजार मत किया कीजिए। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, इसी जगह, इसी एहसास के साथ। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए और दिलों को धड़कने दीजिए। शुभ रात्रि। ये थी दिलों की आवाज़।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
3: सब संगतियालो के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम यह तो मन पसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन दोनों चैनलों पर सब कुछ के स्वागत करते जा आज हम मंगल की रात मंगल 22 सितंबर साल 2026 भोजपुरी का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बज रहे थोड़ा मन करता नाचे के गावे के झूमे के कमरवा डुलाए के तो नंबर वा घुमाइया का जगो दे हुए जगो विद सैंक का जगो दे हुए जगो विद सैंक पर एसएमएस करिए जा टेलीफोने करिए जा का जगो दे हुए जगो विद सैंक पर टेलीफोने करिए ठीक बा थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के कोई की शादी बा जन्मदिन बा शादी की सालगिरह या कोई भी खास मौका तो झिझक के नहीं टेलीफोन करिया का जगह दे वो जगह सैंक पर बैल का गाना राधन राम साहब भोजपुरी बाजा बाजी बॉयज गीत गेले वन बहुत ही प्यारा सन गाना है लंगरो और एक गीत चलाते सर लाफलो का के विशाल विशेषर जी के नाम ओकर घरोली ओकर बेटा और सब विशेष परिवार के लिए जोन रहे लाफलो भाई विशाल विशेषर गीत खासम खास तोहर नाम और सब श्रोता लोग के नाम जो सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन

रात के 9:07 होते हैं और तू सुनते हो एमबीसी रेडियो और संगठन लोग देखते हैं ऐसा कि धीरे धीरे अब हमने गर्मी के मौसम में प्रवेश करते हैं ऐसा देख रहा दो दिन से खूब घमाका लग मौसम बदला था और दिन के काफ़ी घमाका अभी रात के वक्त भी उतना ठंडा नहीं करता है तभी ठंडा के मौसम जाता और अब गर्मी के मौसम आता और ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से बोला जाता कि साल बहुत बहुत गर्मी करी एक तरफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग और एनिनो के असर मौसम परिवर्तन तो चाइना पारिवारिक के गर्म के मौसम के सामना करेगी और बेशक आप इस तुलक संग गमत करेगी और अभी अपनी कुछ संगत याद होता साथ आप हवन भाई सुधीर राम रामनोरत और रहेलन थो सेफ क्योंकि मैं तो उसके पास तो उसे के पास रहे लंजा तब भाई सुबह रामनोरत है गीत तोहर खातिर तोहर घरोली खातिर और तोहर दुगो लड़का और सब रामनोरत परिवार के नाम और सुबह रामनोरत अपन एम चाय के सब संगतियाल के याद करत हवन सुबह रामनोरत एक्स एम जी आई स्टूडेंट हन एम जी आई मौका और याद 20 मई को संगत यार सब कोई संगे हंसते गए जाथन सली खुल रावत लंसा तो हमने के दोस्त सुधीर रामनोरत के नाम खासम खास है गे तो चला सुधीर रामनोरत कमरवा ढुलावा नाच गाव दुलिन के दादी के संगे भाई सुधीर दोस्त यहाँ नाचे के गावे के नाचे गावो भैया जिंदगी में हमेशा खुश रहा नचते गाते रहिया ए हे दुल्हन के दादी के बात सुना का बोला था थोड़ा सुधीर रामनोरत

जिन व्यक्ति दुनिया में नहीं बा ओके ढेर याद नहीं कर गया ओकर समय चला जाए के ओ खातिर ओ चल गल के जहां जाए के और शायद ओकर उतने दिन निकल जिए के तू रोब उदास होइब ता कुछ नहीं बदली जाए होला चल गल भी प्रैक्टिकल इन लाइफ जिंदगी चला जिए के अब जो मर जला था ओकर याद में निकल सब हमेशा रोते रहे कहे के जो हमने के आगे बा हम के परिवार ले कालो बाउलो खाती परी जिए के अब तू लोग के आगे रोवल कर बहुत उदास सब तो लोग के मूड भी खराब हो जाए और लोग उदास सही जानी ना सके तू को प्रियजन के खोई ले हवा जिंदगी में पर का कर बा दुनिया के ही दस्तूर है जे भी आलवा एक दिन परी जाए एक दिन हमने जाप सा बारी बारी से तो का कर बा जीरा इसी का नाम है जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ यह मरब सा यह जी अब सा और यहाँ से कहाँ जब सा जब मर गए इस तरफ फिनी हो गए भैया कहानी खत्म फुल स्टॉप तथा जी ला गाल नाच रामने के संगे संगे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और ढेर कोई उनके साथ देवा था ये बखत और आप हो रविश मंडू हेलो जी अगे तोहर माता पिता तोहर महारेखा तोहर भाई भौजी चीजों फॉर सब मंदु परिवार के नाम चाचा आत्माराम है गीत और खातिर और चाची ललिता कुशल तू हवा थ्रियोले से है गीत चली सतोब एस एस एस के सब संगत चालू खातिर वीरापेन रुसाई प्रतिमा केत सी शंकर और सौजू भाई तो चले एक साथ सुने

हालांकि देश के आजादी खातिर देह को लड़लन पर पहला व्यक्ति जो लड़न वो रहसा शिव सागर राम गुलाम और वो हमने के देश के पहला प्रधानमंत्री रलंजा प्यार से उनके चाचा बोला था ईसा और मॉरिशस के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रलन और जहां के मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन के रूप में भी उकरा याद कर जाता सर शिव सागर राम गुलाम के जन्म हो रहा 18 सितंबर 1900 में मॉरिशस के बैगीव जगह में और उनका परिवार भारत से मॉरिशस आ रहा इंडेंचर लिबर समुदाय से जुड़ा रलन बचपन में आर्थिक कठिनाई रहल बाकी पढ़ाई के प्रति उकर बहुत रुचि रहल रॉयल कॉलेज के पिप में पढ़तलन बाद में उच्च शिक्षा खातिर इंग्लैंड गईलन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मेडिसिन पढ़लन 1935 में मॉरिशस वापस आके डॉक्टर के रूप में काम करलन और धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन के राजनीति में प्रवेश भी करलन राम गुलाम के राजनीति में आवे के मुख्य उद्देश्य रहल मॉरिशस में आम लोग के राजनीतिक अधिकार मिले खातिर समाज में समानता बढ़ाई के और सर शिव सागर राम गुलाम उनकर राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ल 1958 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनलन 1958 में पोर्टविस के मेयर 1951 में चीफ मिनिस्टर और 1965 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनका नेतृत्व में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि वयस्क नागरिकन के मतदान के अधिकार लोकतांत्रिक विकास के महत्वपूर्ण हिस्सा रहल मॉरिशस के स्वतंत्रता के इतिहास में सर शिव सागर राम गुलाम में के सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहल 1960 के दशक में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के से मॉरिशस के स्वतंत्र करके बातचीत करके संवेदनशील प्रक्रिया तेज भइल अंत में 12 मार्च 1963 के मॉरिशस स्वतंत्र राष्ट्र बनल आज़ादी के बाद सर शिव सागर राम गुलाम स्वतंत्र मॉरिशस के पहला प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनन ये कारण से आज भी हमने हमेशा के याद करी रह सर और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर लन ऐसे सौ के जो मान्यता रहा कि देश के सबको के चेहरा शिक्षा मिले के और बेशक उनका समय में शिक्षा के विस्तार या अधिक लोग तक शिक्षा पहुंचे पर जोर दिलंजा यूनिवर्सिटी मॉरिशस के स्थापना 1965 में भय जो मॉरिशस के उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिलक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण भी कर लन सर शिव सागर राम गुलाम और उनका प्रेजेंस में हेल्थ केयर के महत्व में भी खूब परिवर्तन आल उनका सरकार के दौर में पब्लिक हेल्थ केयर सोशल वेलफेयर या एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया मॉरिशस में गरीब या सामान्य परिवार खातिर सामाजिक सुरक्षा के व्यवस्था भी मजबूत करन गल और सर शिव सागर राम गुलाम जिन हम के देश खातिर बहुत कुछ कर ले हवन और हम उनके हमेशा याद करब सर हमेशा हमेशा के लिए और 15 दिसंबर 1985 के सर शिव सागर राम गुलाम के निधन होल और अंतिम संस्कार पॉम्पलीमूस में भयल जहाँ आज उकर समाधि मेमोरियल मौजूद बा तो उकर पर गीत बनल बा भी उकर सौवेन सिंह के एनिवर्सरी के अवसर पर एनिवर्सरी पर विशाल मंगरू रीति जुड़न गीत गैलक बा हमने के चाचा सर शिव सागर राम गुलाम पर चल आज की रात श्रद्धांजलि के रूप में सर शिव सागर राम गुलाम के याद कब सब के चाचा रहल पेय दुरा नाशो ओके कबू नहीं भुलाब जा

भोजपुरी दल का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर आज प्रताप सिंह के साथ और अब थोड़ा सा बात कर अब से हमने कि बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में जो महीना हुआ था कर में जी मना फिल्म रिलीज हुई की बा बड़े पर्दे पर सब फिल्म सब देखे 2 अक्टूबर की रिलीज हुई दृश्यम द कंक्लूजन फिर वही तारीख के प्रेम कीटाणु फिल्म के नाम है दुगो फिल्म रिलीज हुआ था 2 अक्टूबर के एक दृश्यम दूसरा प्रेम कीटाणु 9 अक्टूबर के रिलीज होता उड़ता तीर 15 अक्टूबर के रिलीज हो जेला टू

फिल्म 16 अक्टूबर के प्रहार 16 अक्टूबर के ही रफ्तार दो फिल्म रिलीज हुआ था प्रहार और रफ्तार 6 अक्टूबर के वेंथवा अक्टूबर 23 अक्टूबर के पहला प्यार दूसरी बार फिल्म के नाम और लिवेंथवा अक्टूबर की फिल्म रिलीज होता मैं न रहा मेरा

घर में नया नया कलाकार मिली हमने की देखे के जैसे दृश्यम प्रेम कीटाणु उड़ता तीर जेलर दो प्रहार रफ्तार पहला प्यार दूसरी बार और मैं ना रहा मेरा तो जे कोई शौकीन बा बॉलीवुड के तो लोग सब टाइटल याद रखें सर अभी सुनब जाए गलू गीत मुकेश जी की आवाज में चुम्मा चुम्मा मांगा था और ये तो हमने चलावा सर सब संगतिया लोग के नाम बबासा के भाई हरी शहीद और खतीत काला छोटी पोलॉजी से हिरीश नारायण मिडलैंड से साइलेंट के उसे गीत चली कर बरका संगतिया वीरानंद दीनदयाल के नाम आशा जनू रहरन को तेज कर्मा कुमारी शुभम शुभम की मंगेतर दीदी आशा जीजाजी और सब जानू परिवार देवेन नदी वाला वैनकुवे कैनडा सेवन रवि बंगारू है गीत और नाम और सब बंगारू परिवार के नाम तो चले एक साथ सुने है ये जुलीसन गीत गीत तो आप बोलता चुमा अब भाई मुकेश जी बोलता वन चुमा के बारे में तो चले एक साथ सुने गीत तो मुकेश जी गावत वन चुमा

अब हमने तोरा तो लोग के सुनाव जाए वो कहानी और ये कहानी जो है बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये कहानी के शीर्षक है चिड़ै और मच्छी की कहानी। तो बहुत पुरानी बात है। एगो गांव में एगो सुंदर पोखरा रहल। पोखरा में तरह तरह की मच्छी रहतल और उसके किनारा एगो पेड़ पर एगो नन्हिका चिड़ैया के घोंसला रहल। चिड़ैया रोज सवेरे पेड़ से उड़ के पोखरा के किनारे आवत हल। वो पानी पिए दाना चुगे और फिर अपन घोंसला में चल जाता हल। और पोखरा में एगो मच्छी भी रहता हल। वो बहुत चंचल दयालु रहल। धीरे धीरे चिड़ै और मछली में दोस्ती हो गल। दोनों रोज एक दूसरे से बातचीत करत रहन सा। एक दिन बहुत तेज बरखा भइल। लगातार कई दिन तक पानी बरसल। पोखरा में पानी बढ़ गल और ओकर धार तेज हो गल। चिड़ैया अपन घोंसला में फसल चुगा लोग के लेके बहुत परेशान हो गल। मच्छी चिड़ैया के उदास देख के पूछलक, बहिन तू आज इतना उदास काहे हो, काहे परेशान हो? चिड़ैया बोललक, बरखा से पानी बहुत बढ़ गल बा। हमर घोंसला गिर जा के डर बा। हम अपन बचाव कैसे करब समझ में नहीं आवता। तो मच्छी बोललक, तू चिंता ना कर, हम तोहरा मदद करब। मच्छी पोखरा में रहत बाकी मच्छी लोग के बुलैलक। सभी मिल के पेड़ के नीचे जमा होइल। चिड़ैया भी अपन घोंसला के मजबूत करे खातिर सुखल टहनी घास या पत्ता लेके आल। मच्छी लोग पानी की धार से घोंसला के नीचे मिट्टी न बह जाए ये खातिर किनारा के आसपास के जगह पर नजर रखलन जा। कई दिन के मेहनत के बाद बरखा रुक गल। चिड़ैया की घोंसला बच गल और ओकर चूजा लोग भी सुरक्षित रहल। चिड़ैया खुशी से मच्छी के बोलक, सच्चा दोस्त ऊ ना है जे खाली खुशी में साथ देवेला, बल्कि सच्चा दोस्त ऊ है जो मुसीबत में काम आवेला। कुछ दिन बाद पोखरा में एगो मछुआ जाल लेके आल। ऊ पोखरा में जाल फेंकलक

आ बहुत सगरी मछली जाल में फंस गल चिड़ैया ऊपर पेड़ पर बैठल सब देखत हल उ तुरंत समझ गल कि ओकर दोस्त मच्छी के जान खतरा में बा चिड़ैया नीचे उड़ के गल और अपन चोंच से जाल के रस्सी कुतर दिलक बाकी चिड़ैया के भी बोलवैलक सभी चिड़ैया मिल के जाल के कई जगह कमजोर कर दिलन स मछली लोग लगभग जाल से निकल गेलन स सभी मच्छी पोखरा में वापस भाग गल मछुआ खाली जाल लेके रह गल मच्छी चिड़िया के धन्यवाद दिलक और बोलक आज तू हमनी की जान बचैला दोस्ती के असली मतलब आज समझ में आल चिड़ैया मुस्कुरा के बोलक दोस्ती में हिसाब ना होला जब दोस्त मुसीबत में होला तब मदद चहला करेगी ओकर बाद चिड़ैया और मच्छी की दोस्ती और गहरा होल दोनों एक दूसरे के हर दुख दुख सुख में साथ देवत हलन तो कहानी किसी की है संगतिया लोग की सच्चा दोस्त ऊ होला जो मुसीबत के समय काम आवेला ये कहानी से ये भी सीख मिलेला कि छोटा बड़ा जमीन पानी या अलग अलग जाति के होखला के दोस्ती में फर्क ना पड़े अपन भरोसा दया और सहयोग सबसे ज़रूरी है तो तू भी याद रखिया कि दोस्ती में हमेशा चलना एक दूसरे के साथ दे के खासकर मुसीबत के समय में ऐसा में चला सुन अब जा अगला गीत यशवी रतन गैले वन मच्छी हम खाइला हम तो विजाई भैया आई तो गीतवा के टाइटल है मच्छी हम खाइला गीतवा गैले वन यशवीर सिरतन और है गीत मंगले हवन रतन निहाल खोबे से करपत्नी करुणा पापा विजय ज्ञान उचित्रा विश्राम और दाल बेसी और रेहाना हासिल रानी फीलिंग से गीत मंगले हवन ओकर खाला रीता और खाला रेणुका खातिर तो चल एक साथ सुने है गीतवा मच्छी हम खाइला यशवीर सिरतन की जुबानी और हे गीत चलावते सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम

0: हमने के शास्त्र में वेद में पुराण में उपनिषद में कहल गल बा कि जब हमने कोई के सहायता करी रा सा तब भगवान बड़े प्रसन्न रह भगवान के आशीर्वाद हमने पर रहेला एक आते जहां ले सकबा हमेशा एक दूसरे के सहायता करे चाहे पर बदले में वो तो हर सहायता करी या ना करी पर तू हमेशा दयालु बनिया करुणा के सागर बनिया और जहां ले सकबा एक दूसरे के मदद करिया एक कृपाला पुण्य सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड हाउ कैन आई हमने के बड़ा आदमी लोग बोल लग पा हमने के देवता देवी लोग बोल लग पा शास्त्र में लिखल बा पर आजकल सब कोई लिखा थे कर रहा था ये खातिर हमने के बड़ा दुख सह के हों कि नहीं अगर सहायता कर बा तो भगवान तो और सहायता करी हों कि नहीं तगला गीत खुशी के दिन नीरज को मधु गीत आगे ले वन और गीत हमने चलाते इस खासम खास इस सत्संग चालू खातिर जय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से वन कद्दू बेटा बाल गोपाल दादी इंदिरा चिंताराम बेटा चंदन बहुप्रिया सब चिंताराम परिवार सरोनी जानकी सी सहाय कर बेटा बहु सब सी सहाय परिवार के नाम अनीता अफ्रीकन फ्लैग से हवन और चल अनीता से बात करब जा हेलो अनीता नमस्ते अनीता जी नमस्ते
1: नमस्ते भाई जी कैसे हैं आप
0: हम ठीक हैं अनीता जी तू कैसे हुआ
1: हम ठीक हैं
0: मच्छी और इतनी की कहानी कैसी लोग कर मच्छी अच्छी रहेंगे
1: मच्छी और चिड़ै के कहानी तब एक खूबे निमन बा खूबे जोड़ी
0: सीख बा दिखला मच्छी कैसी
1: आप तो आपके सब सब डायलॉग बहुत अच्छा बा
0: एता
1: डायलॉग नहीं हां सीखे
0: के हां हां
1: सिखावे ल जा
0: ढेर कुछ के मनोरंजन भी होला शिक्षा भी होला साथ में
1: हां चाहे ना हमने रेडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखेला
0: है कहानियां तू जाना था जन बोली कहानियां नहीं
1: नहीं नहीं कबू नहीं
0: जोड़ी कहानियां
1: जब तो जब आप कहानी सुनावे लगा हमने के मालूम नहीं है
0: हाँ।
1: कि कौन कहानी है आपसे सीखेला गया
0: हमने खुद खुद कहानी रहा सा इंटरनेट पर से कहानी
1: अच्छा
0: लगे आशा करे सर कि सब हमने के जो कहानी है सबके दिमाग में जाला और इंसान कुछ न कुछ सीखेला
1: रेडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखी
0: बहुत धन्यवाद और अभी तोहर लगे लेता हूँ कैसे यहाँ तो बड़ी गर्म करता शुरू कर दे रहा
1: गर्म नहीं निमन गर्म उतना नहीं
0: दिन के गर्म कर रहा दिन वहाँ के
1: नहीं ठंडा वो उतना नहीं
0: दक्षिण में खूब गर्म कर लगे मुजोन सगरो मुजोन हो रहा था दक्षिण में
1: आयो बाप अभी देख बता शुरू हमने लगे हमने के लगे तब बेज बा
0: तू लामे लग रहे ला ना
1: हाँ तब बहुत गरम
0: बहुत गरम अब ये लामे चीव मौजा लग बा कि दोस्त आंचे में बड़ी गरम करी है खूब गरम ऐसे गरम कबू ना देख लें सर पहली बार ऐसे गरम हुई
1: हमरा के तो तैरा दिला
0: ना तब भगवान की पूजा कर सर इंद्र भगवान बरसाए पानी हर पर अवली गई है
1: चाहे ना पानी
0: खोसेफ में इतनी दिखता हुआ मैं वाकुआ में कैसे पानी सुखाता बाप रे बाप फेकुआ भी वहाँ यज हो रहा वहाँ पर ही
1: वाकुआ में सुनने रहने
0: की टेलीविजन में पास से गलत हाँ तो चाहे ना करे

0: के पूजा पाठ इंद्र भगवान के प्रसन्न कर वरुण भगवान पर पानी बरसाए। नहीं तो आज के दिन कैसे बिता रही क्या बोले था?
1: अच्छा से बीतर
0: परिवार लोग लड़का लोग सब कोई अच्छा हुआ
1: सब कोई अच्छा
0: रोज आवेलन सा कौन गीत सुन
1: रेशम की साड़ी
0: गीता मन में कब से तो मन के बात जान गई रहा
1: जोहर खातिर जोहर सभी टीम खातिर हम सभी परिवार खातिर हमारे दोस्त खातिर
0: और अनिता जी तो खुशी है रेशम की साड़ी पहने के
1: रेशम की साड़ी
0: नहीं पहने के
1: हाँ तो आगे के लिए तो हमें बहुत रहल ना मामा के रहल
0: आगे रहल कांजीवरम
1: कांजीवरम हमारे साड़ी हो रहा कांजीवरम और बनारस के साड़ी
0: एक गुलाम धोल तुलसी के साड़ी
1: अभी तुलसी के साड़ी
0: नहीं दिख रही है तुलसी के साड़ी से जुड़ी जुड़ी से आगे में ओसरा डाल के और अनुपमा के साड़ी
1: सब बनब
0: सब लामोद बना
1: हाँ सब रिक्लाम करे
0: ना सर देखब बुझाला कितना महंगा पड़ी सब लाइन में सस्ता बस में है और वहाँ के जब रिविजन में जानो पहने बड़ी जोड़ी जोड़ी है सोना से भी जोड़ी
1: खूबे जोड़ी अभी सोना के पहने
0: अभी उतना कोई नहीं पहने रहा
1: नहीं
0: तो बोलब
1: सुने
0: वही रहा रेशम की साड़ी के खातिर मांगते हुआ
1: हमारे सब परिवार दोस्त के खातिर तोहर खातिर रेडियो मनोरंजन और रेडियो सभी टीम के लिए आपको बहुत बहुत कुआल
0: बहुत धन्यवाद ओके बाय बाय
1: भाई
0: ललिता चाची ललिता कैसे अमर जोड़ी चाची कहाँ रह लगी चाची
2: हेलो नमस्ते बेटा
0: हाँ चाची कैसे
2: अच्छा सब कुशल मंगल
0: आयो अम्मा नहीं रख रहे खाती चाची सब अम्मा का अचार डाल दे रहे हम बनी अम्मा खाती और समाचार अच्छा ना
2: सब कुशल मंगल बा बेटा तू और समाचार
0: बाप हम यहाँ तो बड़ी गर्म करता तो हर बगल ठंडा गरम गरम ठंडा
2: अरे
0: बोला तो चाची कौन गीत सुनब
2: डालिया बेटा सुभावती दुमन के
0: कौन गीत
2: नाकों के फुलिया
0: नाकों के फुलिया सुभावती दुमन
2: गिरल जाला
0: ओ देख हाँ और के गई रख बस सुभावती दुमन
2: सुभावती दुमन हाँ बहन सुदेवी
0: हाँ बोला
2: यानी छोटी दीदी दादी प्रभावती आत्माराम भैया और शुक्लाल मौसी खातिन आ तोहरो खातिन बेटा
0: और शुक्लाल मौसी कैसे अच्छा बा ना
2: अच्छा हवन अच्छा हवन
0: थोड़ा बहुत सुनाला निमन से थोड़ा बहुत
2: हाँ
0: हाँ सुनाला हाँ बस कबू कबू जब बच्चा लन तो टेलीफोन कर बता कबू कबू मान जाए टेलीफोन
2: हम कहते ना बेटा राजू भीरी रखेला
0: वो खाते
2: हाँ
0: और आज के दिन कैसे बीता चाची
2: सब अच्छा बीतल बेटा तनी हवा हवा रहला
0: हवा रहल तो हर बगल है
2: हाँ हवा रहल
0: नहीं तो दिन के दक्षिण में बड़ी गर्म करे रहल
2: हाँ
0: बुझा जैसे देशाम चल बा उसे ऑफिस से गीतवा के बोल रहे थे चाची गीतवा के कौन कौन गीत मांग लिया सुम्बावती दुमन
2: के नाकों के फुलिया
0: नाकों के फुलिया अरे चला दो अब सर चाची ओके अरे शुभ रात्रि चाची नमस्ते तभी बागतू बागदू गाना चली गो रंभा राम तोल के रेशम के साड़ी और नाक के फुलिया सुम्बावती दुमन के आवाज में सुना चाहो

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
5: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
6: रात के 10:08 होता है तू सुना तो रेडियो मनोरंजन 94.6 98.2 FM पर और रेडियो मोशन 719 किलो यानी AM और FM पर दोनों चला था कार्यक्रम भोजपुरी तड़का अजय प्रताप सिंह सेतालु के साथ भोजपुरी तड़का ए कमरवा डुलावा नाच गावा और बहुत साल पहले मॉरिशस में कुछ तूफान आ रहा लोगों नाम रन होलांडा उले फुक हम जनेवरी एमजॉय में शायद 4-5 में रहते तूफान आ रहा होलांडा ते होलांडा तूफान खूब तबाही कर ले रहा और एकर बाद मॉरिशस में एक महीना तक ब्लैकआउट रहा और स्कूल सब बंद रहा तो उले फुक रहा तूनी मिनवी अब तूनी मिनवी कौन चिया तो देर को बता लुगाओ पियन देन किल्ला करी खोजा na na na na na na na lugaru aaye hola ba piyon den ke lakri khoje lugaru ghar ke paache lugaru machan par ha ta lal mati ki jo gaon rahal wahan par admi log bolat hai san jisan lugaru aata raat ke ta lugaru kab kutta ke roop mein kab admi ke roop mein ghar mein pravesh karta aur log logan ke dara hue tai kahe

तारू के बात रहल उ समय सब कोई डरत जैसे 6 बजे तक सब कोई घर के भीतर हिल जाता कुल प्यंदन की घोंची प्रोदत आंगन में तक लुगारू भूतूत नहीं आई अब कहां तक सच है बात बोले की मुश्किल बा पर खिमे फैल रहा लिपोक जब उलंदा तूफान आ रहा तब कर बाद जब तबाही मचल चारों अंधेरा रहा सांसे लुगारू आवत हल तो हमने की कुछ संग चाबा भी थो सेफ के पास रहेलन और हमने के संगे नाचतवन गावतवन भाई सुबीर रामनुरत बोलता गीतों के बरिये पसंद बा लुगारू के गीत तो चला भाई सुबीर रामनुरत है गीतों तोर खातिर तो के चाह संग संग के टेलीफोन के घंटी बजल हर घड़ी चुरू हो गल लुगारू आई हो लबा पियन देन के लकड़ी खोज तो सुबीर रामनुरत है गीत खासम खास तोर खातिर अभी लुगारू के डर नहीं बाए ऐ लुगारू सब भाग गल सुधीर रामनरत मेरे दोस्त ये गीत खासम खास तो हर नाम

0: भोजपुरी दल का कार्यक्रम चलेगा लेंदी से लेकर दिमाग से रात के 9 बजे से 11 बजे एमबीसी रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर और सब कोई नाचता गावता झूमता इनके संग संग मरवा डुलावता को संग क्या बलाइन देखो से मिलब जा हेलो जब लाइन नीचे बच गई हेलो हेलो
1: हेलो जी नमस्ते
0: नमस्ते भैया तोर नाम
1: संजय गोकुला से
0: हां संजय भैया कैसी समाचार एकदम चकाचक बड़ा जोर का मठ हुआ था बुझा था
1: होता होता
0: और बोला अगला गीत के करते
1: मौसम कैसे
0: यहाँ यहाँ गर्म करा था भैया को मौसम गर्म
1: गर्म करी थी
0: अभी आम लेक्सिक से मिली तो हर बगल आम मिला था कि नहीं
1: मिला था
0: आम मिला था हाँ और बोला अगला गीत के करते चल लाली सिनेमा देखे के कर खाते के कर खाते अभी काम में हुआ
1: नहीं
0: घर ही हुआ जहाँ संगत्यारो को याद करते हुआ
1: हाँ
0: चल रहता हाँ बोला था सब संगत्यारो खातिर और
1: नाइट
0: शिफ्ट में
1: आप के लिए भी आपके परिवार के लिए भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फोन कर ला जा बहुत धन्यवाद और चल लाली सिनेमा गीतवा भी चलाओ सर है गीतवा के बाद अभी एक जोड़ी छोकरी से मिला जा अय और जोड़ी छोकरी लोग के कभी बा मॉरिशस में एक से खूबसूरत छोकरी लोग जोड़ी जोड़ी बा कोनो प्रीति जिंटा लिखा बा कोनो रानी मुखर्जी लिखा बा कोनो मीनाक्षी लिखा बा जोड़ी छोकरी से प्यार करी अरे भैया गीतवा हम नहीं बोलते कुनार हीलाल गीतवा गए 11 चला संगे संगे गाओ सर गीतवा में नाचब जाली 1 2 3 चला गीतवा गाओ अब जा Allez, ça.

ऐसे बदला ओके कैसे समझा ओके कोई ना कोई दे हमको चोली छपरी से प्यार करीला कतिर हम रोज जीला छप ओके कैसे बदला ओके कोई ना कोई बताए दे हमको चोली छपरी से प्यार करीला एहे ऐसे ही जोड़ी छोड़ी से प्यार करते रहिए और गीतवा गाते रहिए हाय देखा ऐसे ही नाचा गावा झूमा फजर फजर जब मुखराज दिखेला कैसे बतावा दिन रात में चलेला फजर फजर जब राजो दिखेला अच्छा

जरूर याद रखिए द बिगेस्ट ग्रैंड लाइव भोजपुरी कॉन्सर्ट लगी है शाम दी 26 सितंबर को रात के 7 बजे लोकेशन है ब्लिस बैंक्वेट हॉल अर्सेनल और वहां पर ही चली जलसा के रात बा कॉन्सर्ट कुणाल हीराल की प्रोडक्शन में जी हां कर में धेमना कलाकार भाग ले प्रीसेल टिकट है ₹500 और आडो है ₹700 और बहुत सारा कलाकार कर में भाग लिए जाए जरूर रहिए आई जुन कॉन्सर्ट चली और दिसंबर ली एक में ढेर मना कलाकार लोग भाग लेवता जैसे रंभाराम तोहल बा और रंभाराम तोहल नीरज गुप मधु किशोर खिमिया कुणाल हिरीलाल रोशन सरासिंह और कृषि मनिक और नील के स्पाइक भी डीजे वकील डीजे अभी डीजे एनी नो एज रेस्ट्रिक्शन सब कोई सक आई और बेशक जलसा के रात फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट इस आमदी 26 सितंबर के जरूरी है जय रात के 7 बजे ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल में द

अभी चल प्रोग्राम के आगे बढ़ाओ जा और भाई संजय हरिचंद के गीत चलाओ जा कर पत्नी कर बेटी और सब कर परिवार खातिर चल लाली सिनेमा देखे है गीत चलाओ तो सच जा कोई नाइट शिफ्ट में काम करता और बहुत प्यार से उनके सुनाता जितना ड्राइवर दो सुख सुनाता थे कोई मेट्रो स्टेशन में काम करता पुलिस विभाग में मेडिकल विभाग में अस्पताल और क्लिनिक में बेकरी में थे कोई गर्मा गर्म रोटी पका हुआ था तो ढेर कोई रात की सिलाई कर रहा था कपड़ा सीख रहा था और ढेर कोई ढेर लेकर लोग रात के रिविजे कर रहा था एन से पेशाक एन से एस सी एच एस सी के एग्जाम्स आवा था तो लेकर लोग रिविजे करता साथ में हमने के साथ दे होता जितना अध्यापक स्टूडेंट्स तक सुना था तो गीत के नाम चल लाली सिनेमा देखे

हाँ मौका मिलते जरूर जाइए सिनेमा देखे जुड़ी जुड़ी फिल्म जनरल सिनेमा में इतने जाते रहे रा रात के 10 बज के आधा हुआ था और हमने के साथ देखा दिल बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहे खातिर ढेर पैसा नहीं चेहरा खुश रहे खातिर अगर तोहर परिवार तोहर साथ बा तोहर पत्नी तोहर पत्नी तोहर लड़का तोहर माँ बाप यही काफी बा रोटी कपड़ा और मकान चेहरा और खुश इंसान तब होला जब

के प्यार मिलेला अपनापन मिलेला त कबो पत्नी तोहर पर चिल्ला दे या पति चिल्ला दे त अमेदी नहीं होया ये घर घर के कहानी है सब कुप में ऐसे होला है नहीं सोचा काय तोहर कुप में कब कबो झगड़ा होला पति पति बात में पति नाराज हो जाला पत्नी नाराज हो जाला ये सब होला शादीशुदा जिंदगी में ये सब होला चेहला कॉम्प्रोमाइज शादी को कॉम्प्रोमाइज तो चेहला समझे के एक दूसरे के है छोटा छोटा बात में हो जाला तकारी में नमक दस्सी पर गल या तेल दस्सी पर गल तब पत्नी से चिल्ला दिला तकरी मतलब नहीं बाकी तू पत्नी से प्यार नहीं करेला और पत्नी को कलछुल से धरा दिलक या बेलना से धरा दिलक तो ये मतलब नहीं बाकी तू से प्यार नहीं करेला प्यार में नोक झोंक होती रहेला तो चल बिश्न अब जा खुशी के दिन गीत गीत नीरज गुप मधु गई देवन खुशी के दिन और गीत चलाते थे सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम खास हम खास स्वीट एंड लवली रेहाना जी के नाम आप ऑन फिनिक्स से बहुत प्यार से सुनता है ओए डॉक्टर अंजू बीएम के साथ जुड़ल बैक ऐसे डॉक्टर जी गीत तोरो नाम डॉक्टर अंजू और स्वीट एंड लवली रेहाना हसनानी के नाम चल एक साथ सुने खुशी के दिन

खुशी के दिन रोज के रहेला जब तोहर जेब में पैसा रहेला त रोज के खुशी के दिन बा रोज के गमत करबा हां कि नहीं और हम तो बोला मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान ए हे हे हे बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान और गांधी जी के तीन गो बंदर गांधी जी क्या बोले बुरा मत देखो बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो तो जरूर जिंदगी में बुरा चीज ना देखिया ना सुनिया ना बोलिया हमेशा मीठी बोली बोलिया सबके दिल जीतिया ठीक बा काहे इतना घमंड हो ढेर को बोला पन अमर इतना पैसा बा अमर इतना भरा लुटो बा अमर बैंक बैलेंस बा सब कुछ पर ही छोड़ छाड़ के जाए कि भैया दो दिन के जिंदगी बा खाली हाथ आए सर खाली हाथ जाप सर कुछ देने के आए सर कुछ देने के जाप सर अगर हमने के साथ को न चीज जाए तो हमने के पुण्य हमने के अच्छा कर्म और जब भगवान के जाप सर तो वहाँ न्याय हो या तभी चलो गमत करे मजा कर ले मेरी जान गीत अनुराधा जी के नाम सुनंदा भी चाहते हो तो वन नंदा हवन पाई से हेलो शुभा हवन पोर्ट्रेट से शुभा पॉम्पले मुझसे और मधु मधु उनके साथ देव तो लाहौजा से हेलो मधु जी बहुत बहुत प्यार के साथ मधु है गीत तुहर फियान से अजय खदेर इंदिरा लौता ने गीत तुहरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और कमला दीनू है गीत आरोही खदेर और एक गीत चलावती से जितना कोई की नींद नहीं लगाता कोई करवट बदलाता इधर कोई उधर करवट बदलाता कोई बोलता प्रताप जी बड़ी गर्म करता और दक्षिण में देख कोई अपन घर में आज पहली बार की पहुंच जाते दले उनसे और बोलते उनसे भाई गर्म शुरू हो गल बा भी पहुंच जाते देख कोई एकन डाल के हमने के सुनाता ए हे हे चला मजा कर रहा गीत सुनब जा एकन थोड़ा सुन जोरी से डाल दिया अपन और ढेर ठंडा नहीं डल दिया है गो का तो से जिक्र में डाल दिया वह में डाल दिया और पहुँच जाते चलता वो चारों बगल टाइसन में गीत है तो लोग सब कोई खातिर जन रात की हमने की सुनाता है मजा कर ले मेरी जान अनसुया जी क्यूबिप से हवन हेलो है गीत तो चाहते दिव्यानी खातिर दिव्यानी हवन में बैग से

0: कैरेट जिकेमनी गाजर बोइला स उगो सब्जी भी है गो फल भी है और इस स्वास्थ्य खातिर बहुत ही लाभदायक है बहुत ही पौष्टिक तत्व बा गाजर के सलाद बनेला सलाद काहोत गाजर के लासुप बनेला और काहोत के हमने दाल में या दाल ऑंची में डाल के पकाईला स रापे करके अच्छा है आंख खातिर और काहोत के ऊपर हलवा गाजर के हलवा भी बनेगा और गातो भी बनेगा काहोत से कर विभिन्न प्रकार के मिठाई भी बनेगा और गाजर के जो नहा उसक बा ओके इसने वो खाए गाजर उखरला ज़्यादा में से ओके सफ़ा से धो के सक बा खाए कंचा का सलाद बना के और भुंजल काहोत है काहोत तारल और भुंजल काहोत बिखाल जरा और ये गाजर जो ने कुछ सब्जी है और ये कुछ फल भी है ये 365 दिन हमने के लोकल बाजार में मिल रहा कोनो भी बाजार में जेबा तो है ये थोड़ा मिली और इकर प्रयोग करिए जा जरूर ये बहुत अच्छा है लासों देखा तेरे भी कुछ संगत या लाइन पे और से मिल अब जा कैसे को दे बिजो बिच पर हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते
1: नमस्ते
0: हमने के संगत या प्रेमिला कैसे कैसे बा
1: अच्छा अच्छा
0: नमस्ते और सब ठीक ठाक
1: हाँ सब ठीक ठाक
0: तो और राजू के बोली मां जोर बा कमती कर दे प्रेमिला प्लीज
1: क्या बोला
0: राजू के बोली में ढेर जोर बा कमती कर दे रहने से कब से बच्चे
1: होगा होगा
0: आली बोला आज के दिन कैसे बिताल प्रेमिला
1: आज के दिन बिताल तो नहीं दुखी दुख के घर
0: हाँ यो कहा होगा बोला था
1: नहीं परिवार में
0: मृत्यु हो रहा है नहीं बा परल जाए के मरनी में कितना बरिस के रलन जा इतना जैन है कौन चल बीमारी एक्सीडेंट
1: बीमारी
0: कब को जैन जैन अभी चल जा देसन दुख बुझाला ना
1: हाँ अपन परिवार है परल जाए के दंडे जा
0: बीमार रलन ढेर दिन से तो भगवान को आत्मा की शांति दे सके रखो उतने दिन कहाँ रहे रहते रन
1: दूर रहे बनते
0: हाँ और अगला गीत के कर खातिर बोले थे
1: करे याद में दादा है शिवदत्त जी के योगी तो है ना
0: विनोद शिवदत्त के कौन गीत
1: शिवदत्त के जाए
0: जाए के बाद किसी है उगी था ना बाते आता है विनोद शिवदत्त के धे मना गीत बा तू बोलिया कौन है बाप दादा लोग के बोली नहीं छोटा से बड़ा आदमी बन गया
1: अंतिम
0: जल्दी जल्दी नहीं चला नहीं
1: दूर जाए की है बड़ी
0: कौन सी लेके आल हवा हाँ कौन सी लेके

0: आप साल की तो परिवार की याद में आली बहुत धन्यवाद प्रेमिला बॉन्क आज बोलते हैं देखा जिंदगी में आली से एक दिन परी जाए की बारी बारी से हाँ ने कहूँगी नहीं कोई यहाँ पर ही हमेशा अमर नहीं बा पर दुख बुझाला पर का कर बा परेला को आज की
1: परिवार
0: ही आयो हाँ पूजा में गरलन हो रात के पूजा में गरलन रात के आवतलन बस साक्षी नौकर लकर माँ भी हाँ, भी आईसीयू में बा बर बेचारी 40 साल के आयु में मृत्यु होगा हाँ तो कब
1: भगवान के आगे कुछ नहीं
0: कब कब लिखा रहेला उससे जाने ला कब कब कोई के है जीवन और मृत्यु हमने के हाथ में नहीं बा हाँ कि नहीं
1: आप जब से जैसन बात बोला था तो
0: नहीं सच्चे है ए, हमने के
1: जितना जितना समझावा था सबके के हाँ। एगो पंडित हुए हो आप
0: भी बहुत धन्यवाद तमनी पढ़ी ला सा रिसर्च करी ला सा पुस्तक में इंटरनेट पर
1: सोशल अच्छा अच्छा बात सिखावा तो सबको जिलियन जाता अपन जिंदगी में बहुत अच्छा अच्छा
0: सिखियन सा तब ना देर को है कान से डाल के हो कान से निकाल देवे नन सा आले बहुत धन्यवाद प्रेमिला जैसे प्रमीरा बोलन होकर परिवार के सदस्य चगबा हम के सहानुभूति सपाची सह सह कौंदरियोंस पर देख दुनिया में सब कोई एक दिन परी जाए कि बारी बारी से जब हमने के जन्म होला तो वही दिन भगवान लिख देवेला कि हमने की मृत्यु कब हो ये हमने नहीं जानी रहा सर पर भगवान जाने रहा वो पंडितों नहीं जानी है इतना बड़ा पंडित ही नहीं जानी पर जब समय आवेला तब पर हम रोई ला सा विलाप कर ला सा कहें तेल फलना व्यक्ति इतना निमन रहल पर जब अगर समय रहेला जाए के तब पर ला सब कुछ छोड़ छाड़ के जाए के गरुड़ पुराण में लिखल बा कि जब अगर व्यक्ति की मृत्यु आवेला तब यमदूत आवेला और अपन पास से वो हमने के प्राण लेके जाला भगवान लगे और वहाँ न्याय होला ये शरीर तो नश्वर है मोटल है ये शरीर पांच तत्व से बनल है और अंत में पांच तत्वों में मिल जाला कौन सी लेके आल होगा कौन सी लेके जाप सा खाली हाथ आ रही सर यहां से खाली हाथ ही जाप सा

जलसा लाल बा किशोर किमिया के गावल है गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दे रहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग के फोन कॉल्स और SMS खातिर शुक्रिया। रात के 11 बजे सुन बजा सुनहरे पल प्रोग्राम नितुषा के साथ और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे दे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के इसी समय रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर अजय प्रताप सिंह के साथ प्रोग्राम चली भोजपुरी तड़का। तो कल रात तक हमने की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह सितारू की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू और गॉड ब्लेस नमस्ते शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम, नमस्कार श्रोताओं, हमें यकीन है कि आप सब बिल्कुल कुशल मंगल हैं और रेडियो मॉरिशस पर चलिए नीतू आपका स्वागत करते हुए आपको हम ले चले हैं हसीन वादियों में। ये है सुनहरे पल कार्यक्रम। आज एक ऐसे नाम से आपसे रूबरू कराएंगे जो हिंदी और मराठी सिनेमा के दर्शकों के दिलों में कई दशकों से बसे हुए हैं। आप हैं सचिन पिलगांवकर। याद आया कौन? एक नन्हे चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कैमरा के सामने आने वाले सचिन ने अपनी मासूमियत, नेचुरल एक्टिंग और मेहनत के दम पर सिनेमा की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग तक अपने हुनर को सीमित नहीं रखा, बल्कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, सिंगिंग और टेलीविजन के क्षेत्र में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो चलिए, उनके प्यारे प्यारे गाने आज इस सुनहरे पल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

सचिन पिलगांवकर का जन्म 17 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। उनके परिवार की जड़ों का संबंध गोवा से था।

और उनके पिता शरद पिलगांवकर फिल्म प्रोडक्शन और बिजनेस से जुड़े हुए थे। सिनेमा का माहौल उनके आसपास था, लेकिन सचिन की असली पहचान उनकी अपनी प्रतिभा से बनी। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उन्होंने मराठी फिल्म हाँ माझा मार्ग एकला से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी फिल्म जर्नी शुरू की। उनकी परफॉर्मेंस को इतनी सराहना मिली कि उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। बाद में अजब तुझे सरकार के लिए भी उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह सचिन उन गिने चुने चाइल्ड आर्टिस्ट्स में शामिल हो गए जिन्होंने 2 नेशनल अवार्ड्स जीते।

चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में सचिन ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनका बचपन ही फिल्म सेट्स पर गुजरा और उन्हें अपने दौर के बड़ी बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। ज्वेल थीफ, मंजली दीदी, ब्रह्मचारी, चंदा और बिजली और मेला जैसे हिंदी सिनेमा के प्रोजेक्ट्स में उनकी उपस्थिति ने उन्हें दर्शकों तक पहुंचाया। इस दौर में उन्होंने एक्टिंग की वो बुनियादी समझ हासिल की जो बाद में उनके एडल्ट करियर में बहुत

चाइल्ड आर्टिस्ट से एडल्ट एक्टर बनना आसान नहीं था। बहुत से बच्चे सिनेमा में छोटी उम्र में मशहूर होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद उनके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। सचिन ने इस बदलाव को सफलता से पार किया। 1970s में उन्होंने एडल्ट एक्टर के रूप में अपनी एक नई

इनिंग्स शुरू की और गीत गाता चल, बालिका बधू, अखियों के झरोकों से और नदिया के पार जैसे फिल्मों में लीड रोल्स के जरिए अपनी रोमांटिक और इमोशनल इमेज बनाई। वैसे गीत गाता चल सचिन के करियर की एक बहुत यादगार फिल्म बनी। साफ सुथरी कहानी, मधुर संगीत और उनकी सादगी भरी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके बाद बालिका बधू और अखियों के झरोकों से ने उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया। उनके अंदाज में सादगी थी, एक नेचुरल चार्म था और उनकी एक्टिंग में ओवर एक्टिंग के बजाय सिंप्लिसिटी नजर आती थी। फिर आई नदिया के पार, जो सचिन के करियर की सबसे यादगार हिंदी फिल्मों में से एक मानी जाती है। गांव की पृष्ठभूमि, पारिवारिक रिश्तों, प्रेम और भावनाओं से जुड़े इस फिल्म में सचिन ने एक सिंपल और रिलेटेबल यंग मैन का किरदार निभाया। फिल्म की लोकप्रियता ने उन्हें घर घर में पहचान दी।

सिर्फ रोमांटिक हीरो के रूप में ही अपनी पहचान नहीं बनाई, उन्होंने बड़े हिंदी प्रोडक्शंस में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स भी किए। शोले, त्रिशूल, सत्य पे सत्ता जैसे फिल्मों का हिस्सा बनना उनके करियर की वर्सिटैलिटी को दिखाता है। शोले जैसे लैंडमार्क फिल्म में उनकी मौजूदगी ने उनके फिल्मोग्राफी को और खास बनाया। सचिन पिलगांवकर की कहानी का दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मराठी सिनेमा। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। 1980s के दौर में उन्होंने मराठी फिल्म्स डायरेक्ट करना शुरू किया और एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर के रूप में भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया। वैसे सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर की जोड़ी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि सिनेमा में भी एक क्रिएटिव पार्टनरशिप का उदाहरण रही है। दोनों ने मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साथ काम किया और टेलीविजन पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई।

वैसे टेलीविजन के बदलते दौर में भी सचिन ने खुद को बदलते समय के साथ ढल लिया। तू तू मैं जैसे कॉमेडी प्रोग्राम के साथ उन्होंने टीवी ऑडियंस को एंटरटेन किया। उनकी टेलीविजन जर्नी ने उनकी पॉपुलैरिटी को फिल्म ऑडियंस से निकालकर घर घर के टेलीविजन व्यूअर्स तक पहुंचाया। म्यूजिकल गेम शो चलती का नाम अंताक्षरी से जुड़ी उनकी पहचान ने भी उनकी वर्सटैलिटी को सामने रखा। सचिन का हुनर सिर्फ हिंदी और मराठी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने कन्नड़ा और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया। 2007 में उन्होंने कन्नड़ा फिल्म एक दंता का डायरेक्शन किया, जो उनकी मराठी फिल्म नवरा माजा नवसाचा का रिमेक थी। ये उनकी फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस और रीजनल सिनेमा के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि उन्होंने समय के साथ अपने रोल्स और इमेज को बदलने से कभी परहेज नहीं किया। यंग रोमांटिक हीरो से लेकर मैच्योर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टीवी पर्सनालिटी तक उन्होंने अलग अलग फेजेस को एक्सेप्ट किया। उनकी एक्टिंग ने ये दिखाया कि एक कलाकार की क्रिएटिविटी उम्र के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि नए रूप में सामने आ सकती है।

अवार्ड्स की बात करें श्रोताओं, तो सचिन के करियर में नेशनल फिल्म अवार्ड्स का खास स्थान है। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में दो नेशनल फिल्म अवार्ड्स उनके करियर की शुरुआती बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर मराठी अवार्ड से भी सम्मान मिला। 2010 में वी शांताराम स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सचिन की जिंदगी से एक बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिलती है, टैलेंट को सिर्फ एक फील्ड तक बंध कर नहीं रखना चाहिए। एक्टिंग मिली तो एक्टिंग की, डायरेक्शन का मौका मिला तो डायरेक्टर बने, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली, राइटिंग में भी अपना योगदान दिया और टेलीविजन के नए मीडियम को भी। उनका करियर एक कंटिन्यूस जर्नी रहा है श्रोताओ, चाइल्ड आर्टिस्ट से लीडिंग मैन तक, लीडिंग मैन से डायरेक्टर तक, फिल्म मेकर से टेलीविजन पर्सनालिटी तक और फिर मच्यो कैरेक्टर एक्टर तक। सिनेमा बदलता रहा, ऑडियंस बदलती रही, टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन सचिन पिलगांवकर ने अपने आप को हर नए दौर के साथ रीइन्वेंट किया। आज सचिन पिलगांवकर को सिर्फ एक एक्टर के रूप में याद करना उनके पूरे करियर को समझना नहीं होगा। वो एक कंप्लीट एंटरटेनर और मल्टीफैसेटेड फिल्म मेकर है।

हिंदी सिनेमा हो या फिर मराठी सिनेमा, उनकी डायरेक्टोरियल और एक्टिंग अचीवमेंट्स और टेलीविजन पर उनका काम, ये सब मिलकर उनकी एक बहुत लंबी और विविध कला यात्रा बनाते हैं। सचिन की कहानी असल में सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने बचपन में कैमरा को अपना दोस्त बनाया और फिर पूरी जिंदगी सिनेमा को अपनी कर्म भूमि भी बना दिया। 6 दशकों से ज्यादा के सफर के बाद भी उनका नाम इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग के कई पहलुओं को भी अपनाया। और शायद इसलिए सचिन का सफर एक खूबसूरत संदेश देता है कि कला की कोई उम्र नहीं होती। अगर सीखने की लगन, मेहनत और क्रिएटिविटी जिंदा हो तो एक कलाकार अपनी जिंदगी में बार बार नई इनिंग्स शुरू कर सकता है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: you.
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: एमबीसी रेडियो 24 hours a day।
1: स्पेन के एक दूरदराज इलाके के सरहद ढांचे को मजबूत किया गया है जिससे बड़े पैमाने पर हो रहे गैरकानूनी सीमा पार को काफी हद तक रोक दिया जा सके। इससे पहले ही दिन में हजारों लोग समुद्र और जमीनी रास्तों से वहां पहुंच गए थे। पानी में कम से कम 19 लाशें मिली। स्पेनिश डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने बताया कि गृह मंत्रालय के हवाले से अंदाजा है कि 24 घंटों के अंदर 49,000 से ज्यादा लोग गैरकानूनी तरीके से मोरक्को से सरहद पार कर गए हैं। अमेरिका ने नए सिरे से ईरान पर नई पाबंदियां लगानी शुरू की हैं। एक व्यक्ति और 5 कंपनियां प्रतिबंध से ताल्लुक रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाज कंपनियां मध्य पूर्व में उड़ानों को रद्द कर रही हैं। लंबे युद्ध के बाद विमानन क्षेत्र को दोबारा गति मिल रही थी कि अब अरब मुल्कों में फिर से रुकावटें पैदा हो गई हैं। गजा में हमास के लिए समझौता। गजा की शांति परिषद ने कहा कि हमास ने एक रोड मैप की मंजूरी दी है जिससे गजा से इजरायली ताकतें फारिग होंगी और हमास का निशस्त्रीकरण होगा। हमास ने शर्त रखी कि इजरायल को भी इस रोड मैप का पालन करना पड़ेगा। उसने बताया कि वो तब तक कदम नहीं उठाएगा जब तक इजरायली पक्ष की स्वीकृति न हो। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में एक खान में एक धमाका हुआ। 34 लोग जान से गए हैं। घटना के वक्त 40 लोग स्थल पर मौजूद थे। सभी मरहूमों के परिवारों को 5,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक जांच शुरू की गई है। स्पेन और फ्रांस के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लगी जंगल की आग फिलहाल काफी हद तक काबू में आ गई है। हालांकि दोनों मुल्कों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि आग ग्रीस और इटली की तरफ भी फैल सकती है। तेज हवाओं और भयंकर गर्मी की वजह से ग्रीस से लेकर यूके तक कई जगहों पर लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं आग को और तेज फैला सकती हैं। इन हवाओं की वजह से आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रीस की मुख्य भूमि के साथ साथ क्रेट और पेरिस द्वीपों पर लगी आग से निपटने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। एक वृहद विस्थापन कार्रवाई शुरू की गई है। भारत में मानसूनी बारिश की वजह से अनेक राज्यों में नुकसान हैं। आसाम में बाढ़ की वजह से 78 लोगों की जान गई है। आने वाले 3 दिनों के लिए भी तेज वर्षा का अनुमान है।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो